आइए अब आप सभी को एक कहानी के माध्यम से आत्मिक शांति की ओर ले चलती हूँ। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में गए। वहाँ एक युवक ने उनसे पूछा, भगवान मैं कई मंदिरों में गया, अनेक साधुओं की सेवा की, ध्यान किया, लेकिन अब भी मुझे शांति नहीं मिलती, क्या कारण है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक से कहा, इस दीपक को देखो, ये तब तक नहीं जल सकता जब तक बाती भीतर न हो और बाती में तेल न डाला जाए। ठीक वैसे ही जब तक तुम्हारी शांति की खोज बाहर है, तब तक वह कभी स्थायी नहीं होगी। असली दीपक तुम्हारे भीतर है, बस उसे प्रभु प्रेम और आत्मचिंतन से जलाना है। युवक मौन हो गया और यहीं से उसकी आत्मिक यात्रा प्रारंभ हुई। और इस कहानी के बाद एक और निर्गुण, मन रेतु काहे न धीर धरे।

प्रभु से जुड़ने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं। बस 5 मिनट मौन बैठें, सांसों को देखें, अपने मन की गति को महसूस करें और धीरे धीरे ओम शांति शांति शांति इसका जाप करें। हर दिन ये छोटा सा अभ्यास आपको भीतर के मंदिर तक ले जाएगा, जहां ईश्वर सदा विराजमान है, और इस ध्यान के साथ अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करें। साथ ही साथ सुनिए प्यारा सा भजन।

आइए अब जानते हैं कि भारतीय दार्शनिकों एवं संतों के अनुसार आत्मिक शांति का मतलब क्या है। गौतम बुद्ध के अनुसार शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। महात्मा गांधी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पहले स्वयं के भीतर वो शांति विकसित करनी चाहिए जो वह संसार में देखना चाहता है। संत कबीर के अनुसार जहां खोजो तहां नाहीं, जहां नाहीं तहां पाइया। मतलब शांति बाहर खोजने पर नहीं, भीतर उतरने पर मिलती है। आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवो अहम शिवो अहम। मतलब मैं मन बुद्धि या अहंकार नहीं, मैं तो शुद्ध शिव स्वरूप आत्मा हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जब मन शांत होता है तब ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। यानी सभी का मानना बस एक ही है, जब मन हमारे वश में होता है तो हमारा सब कुछ अच्छा होता है।

आइए अब आपको ले चलते हैं पाश्चात्य संस्कृति की ओर, जहाँ पे आत्मिक शांति के कुछ विचारकों का विचार मैं आपसे साझा करूंगी। मार्क्स आरेलियस के अनुसार, जो स्वयं से संतुलन में रहता है वो पूरे ब्रह्मांड से संतुलन में होता है। लाओत्सु के अनुसार, जो कि ताओ दार्शनिक है, मौन एक महान शक्ति का स्रोत है जो आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रण में रखता है। इकहार्ट टोल के अनुसार, आप शांति अपने जीवन की दिनचर्या को पुनर्व्यवस्थित करके नहीं, बल्कि ये समझ कर पाते हैं कि आप सबसे गहरे किस स्तर पर हैं। अर्थात आत्मिक शांति का जो जुड़ाव है वो कहीं अलग से नहीं, हमारी खुद की सोच और हमारी मना स्थिति पर निर्भर करता है।

शांति कोई लक्ष्य नहीं, ये एक अवस्था है आत्मा से जुड़ने की। जब हम भगवान की ओर देखते हैं तो भीतर की हलचल एकदम शांत हो जाती है। आत्मिक शांति हर धर्म और आध्यात्मिक परंपरा का मूल उद्देश्य है। सभी धार्मिक ग्रंथ, चाहे वे वेद हों, कुरान हो, बाइबल हो या फिर गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटक या जैन अवेस्ता, आत्मिक शांति के लिए ईश्वर से एकता और आंतरिक संतुलन की बात करते हैं।

आइए अब आपको धार्मिक दृष्टिकोण से शांति के महत्व की ओर ले चलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार वेद, उपनिषद, भगवद गीता आदि में लिखित कुछ वाक्य आत्मा और परमात्मा की एकता में निहित होती है शांति। भगवद गीता के 6 अध्याय के 15 दोहे में लिखा है, युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामधि गच्छति। यानी ध्यान में लीन योगी जब मन को स्थिर करता है तो वह परम शांति को प्राप्त करता है जो भगवान में स्थित होती है। उपनिषद के अनुसार शांति ही शांति ही शांति ही। ये त्रिविध शांति पाठ आत्मा, शरीर और मन के संतुलन की अभिव्यक्ति है। कुरान शरीफ के अनुसार अल्लाह पर संपूर्ण भरोसे और तस्लीम यानी समर्पण में है शांति। कुरान पाक के सूरा 13 में लिखा है, जान लो दिलों को सच्ची तसल्ली अल्लाह के जिक्र से मिलती है। सलाम शब्द ही शांति का प्रतीक है। इस्लाम का मूल संदेश भी शांति में जीवन है। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और प्रेम में है शांति। बाइबल के 14 अध्याय में लिखा है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसी संसार नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। रोमन्स के अनुसार जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए तो परमेश्वर से मेल मिला और उसके द्वारा शांति। बौद्ध धर्म तृष्णा का अंत और निर्वाण की प्राप्ति है शांति। धम्मपद में वर्ष 5 में लिखा है, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, क्षमा से वैर समाप्त होता है, यह सनातन नियम है। और बुद्धवाणी के अनुसार जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया वही सच्चे विजेता हैं और उन्हें ही आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यहूदी धर्म यानी तनाख के अनुसार यहोवा अर्थात ईश्वर के साथ चलना और धर्मानुसार में जीवन जीना ही है आत्मिक शांति। तू उसे पूर्ण शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर स्थिर है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। अब आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी की ओर ले चलती हूँ। नाम सिमरन यानी ईश्वर का स्मरण और गुरु की वाणी पर चलना ही है आत्मिक शांति। गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार मन शांत होवा वाजेनाद अर्थात जब मन शांत होता है तभी भीतर का दिव्य नाद सुनाई देता है।

तो अभी आपने जाना कि धर्म के अनुसार आत्मिक शांति क्या है। हिंदू धर्म में ध्यान, योग, आत्मा परमात्मा की एकता है आत्मिक शांति। इस्लाम में अल्लाह के जिक्र व तवक्कुल से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास व प्रार्थना से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छाओं के अंत और ध्यान से प्राप्त होती है आत्मिक शांति। सिख धर्म के अनुसार गुरुवाणी, नाम सिमरन, सेवा से प्राप्त होती है आत्मिक शांति। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा, संयम और आत्मानुशासन से प्राप्त होती है आत्मिक शांति। यहूदी धर्म के अनुसार ईश्वर पर विश्वास और धार्मिक जीवन से प्राप्त होती है आत्मिक शांति। तो आइए एक आत्मिक शांति की ओर ले चलते हैं आपको इस भजन के माध्यम से।

तो आज हमने जाना कि सभी धर्म हो या कोई भी हो, कहीं से भी, सभी एक ही बात करते हैं और एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। ईश्वर हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और जब भीतर का द्वार खुलता है तो आत्मिक शांति ऐसे बरसती है जैसे गर्मी में वर्षा। आज का मंथन। शांति का मतलब संघर्ष का अभाव नहीं है, बल्कि इसका मतलब संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की क्षमता है, जो हमें आध्यात्म के माध्यम से आसानी से प्राप्त होती है। जब हम ईश्वर के निकट जाते हैं तो हमारा मन चित्त पूरी तरह से शांत होता है, और उसके बाद हम अपने दिनचर्या को, जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत करते हैं।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
4: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग ड्यूड को करेगा सूट। ज्ञान स्थली बीट्स नॉन स्टॉप, जहाँ गाने बजेंगे बैक टू बैक, मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5, सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM।

0: दिल क्या करे, तो दिल ये करे कि भैया आज का जो बदली वाला मौसम है ना, वो उठ करके देख ले। और ऐसा करने से दिल की हेल्थ को बड़ा फायदा होने वाला है। अब आप सोचेंगे दिल की हेल्थ को कैसे फायदा होने वाला है? भाई दिल से जब खुशी होती है तो क्या आपको लगता नहीं कि दिल की हेल्थ को भी फायदा होता है? ऑब्वियस सी बात है, होता है भाई, दिल की हेल्थ को भी फायदा होता है। और ये फायदा आपको आज भरपूर मिलने वाला है। जिस तरह से मौसम है, सारे में ही बदली है, और फिलहाल दूर दूर तक अभी तो ऐसा कोई आसार नहीं है कि आज सूरज निकलेगा भी, और ऐसा लगता है दिन भर ऐसा ही ज़बरदस्त सा मौसम बना रहने वाला है। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू आर लिसनिंग

सो चलिए बढ़ते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं क्या है आज का थॉट ऑफ द डे। सो आज मंडे है और मंडे स्पेशल थॉट कुछ कहना चाह रहा आपसे। क्या कह रहा है आज का थॉट? दरअसल आज का थॉट कह रहा है कि उम्र रहते उड़ान नहीं भरी, उम्र रहते उड़ान नहीं भरी तो एक दिन इस शांत और सुरक्षित पिंजरे से प्यार हो जाएगा। उम्र रहते उड़ान नहीं भरी तो एक दिन इस शांत और सुरक्षित पिंजरे से प्यार हो जाएगा और वही तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। उम्र रहते उड़ान नहीं भरी तो एक दिन इस शांत और सुरक्षित पिंजरे से प्यार हो जाएगा और वही तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। किस पिंजरे की बात कर रहा है? वही जिसे हम अंग्रेजी में कंफर्ट जोन भी कहते हैं। कुछ ना करना और सोचना कि ठीक है ठीक है। करने के लिए ये नहीं है कि आप कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ को पाने के लिए अपना पूरा वक्त अपना पूरा टाइम लगा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने हमेशा ये कहा है कि ज़िंदगी के जितने पहलू हैं, रिश्ते हैं, घर हैं, दोस्त हैं, आप खुद हैं या आपके अड़ोस पड़ोस के रहने वाले, सारी ही चीज़ें हम करते हैं और करना भी ज़रूरी है और करते रहना भी चाहिए। ये खूबसूरत ज़िंदगी की निशानी है। लेकिन लाइफ में अपने लिए कुछ ना करना, बैठे रह जाना नहीं हो पाएगा, लग नहीं रहा होगा। इन सारी बातों से निकलना, क्योंकि अगर इससे आप नहीं निकले और आपने कोशिश नहीं करी अपने एक वक्त तक, तो उसके बाद ये शांत और सुरक्षित पिंजरा जो है ज़िंदगी का, ये इससे आपको प्यार हो जाएगा और आपकी सबसे बड़ी हार यही होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपने बिना कोशिश किए हुए सब कुछ मान लिया होगा और वही फिर आपकी लाइफ बन करके रह जाएगा। सो ऐसा कहना है आज के इस थॉट ऑफ द डे का। आई होप कि आज का ये थॉट ऑफ द डे आपको ये रियलाइज करा पा रहा है कि आखिर किस तरह से उम्र पे, वक्त पे और मिल रही अपॉर्चुनिटीज पर किस तरह बढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए। क्योंकि डर के साए में कोई चीज़ करते रहना बहुत दिन तक आप नहीं कर सकते हैं। और डर के साए में रहना ही क्यों है? अक्सर हम इसलिए डर जाते हैं कि कोई रिज़ल्ट ऐसा ना आए जो हम नहीं चाहते हों, जिसे हम गलती बोलते हैं। तो भाई बिना गलती के तो कुछ भी नहीं होता है। गलती से ही शुरुआत होती है और गलती ज़िंदा इंसान की निशानी है। गलती आपके करने के निशान है, ट्राई एंड एरर वाली जो बात आती है। इसीलिए उम्र रहते वक्त रहते अपनी चीज़ों को लेकर उड़ान भरिए, करिए जो करना है। अदरवाइज इसी शांत और सुरक्षित पिंजरे से जब प्यार हो जाएगा तो ज़िंदगी भर उससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। और ये कहना आज के थॉट ऑफ द डे का। मुझे उम्मीद है कि आज का ये थॉट ऑफ द डे आपको बता रहा है, क्योंकि आपने किसी भी एज में जिस दिन आपको लगा है आपने करना शुरू कर दिया और आपकी लाइफ में वो चेंजेस आए हैं। कल मैंने धीरज के बारे में बताया था, जो कि बरेली के थे, 44 साल के थे। अगर आप उनको देखिए उनकी बिफोर की फ़ोटो, तो किसी बहुत अधेड़ से कम नहीं लगेंगे। और आज अगर देखिए तो आप कहेंगे कि 25 साल का नौजवान फेल है उनके आगे। बात सिर्फ धीरज की नहीं है, बात यह है कि जिस दिन आपको रियलाइज़ हो रहा है उस दिन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, उसी दिन से क्यों नहीं हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने रियलाइजेशन पर रेस्पॉन्ड करना बंद किया, एक बार रियलाइज़ हुआ छोड़ दिया, दो बार रियलाइज़ हुआ छोड़ दिया, तीन बार रियलाइज़ हुआ छोड़ दिया, कई बार हुआ छोड़ दिया, एक वक्त ऐसा आएगा कि रियलाइज़ होना भी बंद हो जाएगा। जैसे होता ना, हर चीज़ का सिस्टम अलर्ट करता है, फिर अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, हम भी किसी को कितना मौका देते हैं, किसी को एक मौका देते हैं, दो, तीन, चार, छः, दस, उसके बाद धीरे धीरे करते वो चीज़ें मन से जा रही होती है। उसी तरह लाइफ भी हमसे पहले बीप दे रही है, अलर्ट दे रही है, लेकिन अगर हम नहीं मान रहे तो छोड़ देती है। सो आज का थॉट तो यही कहता है

कि वक्त रहते उड़ान भरिए, नहीं तो अपने इस कंफर्ट जोन से कुछ ना हो पाने वाली, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा वाली लाइफ में आपको रहना पड़ जाएगा, क्योंकि उससे आपको प्यार हो जाएगा और वो शांत और सुरक्षित लगेगा आपको, और यही आपकी सबसे बड़ी हार होने वाली है। ज़िंदगी कुछ करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि जैसा कि एक अंधी दौड़ है या रैट रेस जिसे बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है आप अपने लिए क्या करते हो, इवन अपने हेल्थ के लिए क्या करते हो, अपनी हॉबीज़ के लिए क्या करते हो, अपने को रोज़ शांत करने के लिए क्या करते हो, अपने को हील करने के लिए क्या करते हो, अपनों के करीब जाने के लिए क्या करते हो, अपना वक्त कैसा गुजारते हो, अपनों को वक्त कैसे देते हो, कुछ भी हो सकता है। यही बात है और यही कह रहा आज का थॉट ऑफ द डे। एंड आई होप कि आपको आज का थॉट ऑफ द डे समझ में ज़रूर आया होगा, और आप भी वक्त रहते अब जो भी जब भी रियलाइज़ होगा, बिना उसको छोड़े अब आप उस पर कोशिश करना शुरू करेंगे, उस पर एक्शन लेना शुरू करेंगे, और एक दिन आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, जब भी समझ में आया मैंने किया और आज मेरी लाइफ बदली है। बदलता कब है? जब कोई चीज़ चलता है। मौसम अगर ऐसा ही रहे, बादल खिसके ना, हवा चले ना, तो क्या लगता है ये जो कई ऋतु हम देखते हैं अपने एक साल के अंदर, ये सब देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पेड़ अपनी ग्रोथ रोक दे तो क्या पेड़ हमेशा बदला हुआ नज़र आएगा, कुछ फल देगा, कभी सूखेगा, कभी फिर से हरा भरा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वैसे ही रुक जाएगा। हर चीज़ अगर रुक जाए तो ठहर जाए, बट नेचर में कभी रुकना आता ही नहीं है। नेचर हमेशा चलते रहने का नाम है, क्योंकि नेचर ने हर किसी की एक उम्र तय की हुई है, इवन इस पृथ्वी की भी है, जितने भी करोड़ साल है, जब भी है, धीरे धीरे करके वो अंत की तरफ ही जा रही है। जो भी पैदा हुआ है, जो भी आया है, उसकी अपनी एक उम्र है, और शायद यही हमको बात समझनी पड़ेगी। बस यही एक उम्र है, उम्र नहीं है, बस यही एक उम्र है। सो मुझे लगता है ये थॉट ऑफ द डे आपको ज़रूर आज ये फील कराने वाला है कि हाँ, आपको भी अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आकर के अब अपने लिए कुछ चीज़ें ज़रूर करनी होगी, और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ करके आप देखिए, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ की बदलेंगी, डेफिनेटली वादा कर रहा हूँ। फिलहाल इस गाने को सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर बताते हैं कि आपके मैसेजेस में आज अपने मंडे स्पेशल सावन वाले महीने में क्या कुछ लिखा है।

0: हाँ जी, सलाम इश्क, सलाम इश्क और सलाम इश्क। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और चलिए, अब वक्त आया है क्योंकि आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। और उसी एप्लीकेशन पर आप जो कुछ लिखते हैं वो हम तक सीधे आ जाता है। सो फिलहाल क्या कुछ लिखा है आपने और क्या कुछ कह रहे हैं आप चैट बॉक्स पर आकर के, आइए हम आपको बताते हैं।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा।

हाँ जी, तो फिलहाल आपने जो लिखे हैं मैसेजेस उन तक हम चलते हैं, यानी चैट बॉक्स पर हम आ गए हैं और काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं, क्या बात है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। और फिलहाल नागेश्वर ने विश किया आरजे कांशा को हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच नागेश्वर। सबलू जी हैं सांता क्रूज से, मुंबई से लिखते हैं, नई नई सुबह, नया नया सवेरा, सूरज की किरणें और हवाओं का बसेरा, खुल गई आंखें तो भगवान करो याद, मुस्कुराता रहे हमेशा चेहरा तुम्हारा खास, क्या बात है। और लिखा है गुड मॉर्निंग आरजे नान जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। सविता दुबे जी लिखती हैं सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात नागेश्वर, गुड मॉर्निंग। प्रीति जी ने भी लिखा है प्रेरणादायक थॉट, थैंक यू सो मच। साथ ही सविता जी अपनी बात कहती हैं, हर किसी को उड़ान भरना जरूरी है, बहुत सही बात कही सुविचार ने, थैंक यू सो मच। महेंद्र जी लिखते हैं नमस्कार अदनान सर जी, नमस्कार, आपको भी स्वागत है महेंद्र जी आपका गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। प्रीति जी लिखती हैं सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से लिखती हैं गुड मॉर्निंग आर जी सर, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड महेंद्र जी को थॉट ऑफ द डे पसंद आया, थैंक यू सो मच। नागेश्वर रहते हैं लिखते हैं कि समय रहते अगर बुरी आदतें और गलत काम नहीं छोड़े तो दिन प्रतिदिन उन्हीं गलत कामों में धंसते जाएंगे और उन्हीं गलत कामों में उलझे रहेंगे। वक्त रहते किसी भी मोह को त्याग देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा लालच भी इंसान को डुबो देती है। महेंद्र जी लिखते हैं हम वैसे ही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं, इंसान का दिमाग एक ज़मीन की तरह होता है, आप इसमें जैसा बीज यानी कि विचार बोएंगे वैसे ही फसल यानी कि नतीजे पाएंगे। जब हम अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अपने आप सही दिशा में जाने लगता है, बिल्कुल सही बात कही। सबलू जी लिखते हैं कि ऊंचा उड़ना ये बताता है कि आप अपने लक्ष्य पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी में हार कभी नहीं माननी चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए, थैंक यू। एंड हमारी रेखा कुशवाहा जी भी गोंडा से ही आ गई हैं, गुड मॉर्निंग आपको भी, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड आप सबका वेलकम करते हैं जो इस वक्त मौजूद हैं फ्रिक्वेंसी पर और आप सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, इसके अलावा आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। आप सभी का आरजे अदनान वेलकम करते हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो आज जैसा कि भाई दिन था मंडे वाला, वैसा ही आज का थॉट भी रहा। थॉट ने आकर के हमको बताने की पूरी कोशिश की है कि अब जो है ये वीक, ये मंडे अपनी उन चीज़ों को लेकर चलने वाला है जिसको लेकर के अभी बहुत हम ज़्यादा ही इत्मीनान में आ गए थे, लेकिन अब शायद वक्त है कि जब इसको शुरू किया जाए, है ना। तो चलिए ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, अगर आप कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं मेरी पूरी दुआएँ आपके साथ है। और वैसे भी मॉर्निंग में मैं, मुझे लगता है कि दुआएं ज्यादा लगती है।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

सुनो, बज के 16 मिनट हो गए हैं और मंडे वाला शो है, शो चल रहा है गुड मॉर्निंग गुंडा, और आपके मॉर्निंग जॉ का आरजे अदनान है संग आपके। फिलहाल इस गाने को सुन लेंगे हम साथ में और उसके बाद वापस से आएंगे, और आने के बाद आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है गुंडा में और क्या कुछ बनने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। यानी मंडे स्पेशल अपडेट आप तक बस आने ही वाली है आपके मॉर्निंग वाले शो में। सो बी रेडी एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गुंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, तो भाई जिस चीज़ का आपको इंतज़ार बेसब्री से रहता है, यानी आपको मिल जाए अपडेट्स, सो फिलहाल हम आपको देने वाले हैं कि क्या चल रहा है गोंडा में, यानी कि आपकी सिटी अपडेट्स। सो लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो अब आपको बताने वाले हैं कि आज सिटी से क्या क्या अपडेट आ रही है जो आपकी सिटी अपडेट में शामिल है, और क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। तो चलते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ। सो पहली अपडेट जो है वो है 363 विद्यालयों को चूंकि आखिरी चेतावनी दी गई है। हम आपको बता दें कि ज़िले के 215 जो हाई स्कूल और 148 इंटरमीडिएट स्कूल्स ने अभी तक अपना जो संस्थागत प्रोफाइल है वो लॉक नहीं किया है। इसे माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देश की अवहेलना मानते हुए DIOS ने संबंधित प्रधानाचार्यों को अंतिम चेतावनी जारी की है। DIOS ने कहा है कि जिन विद्यालयों ने सोमवार तक प्रोफाइल लॉक नहीं किया उन्हें आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र बनने की पात्रता से वंचित माना जाएगा। दूसरी अपडेट की तरफ चले तो ऑफकोर्स जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गोंडा का बस स्टेशन, उसको लेकर के आ रही है। सो फिलहाल बताया ये जा रहा है कि ज़िले में ये बस अड्डा जो है PPP मॉडल पर बनने वाला है। सो PPP मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल पर जो है वो एक स्मार्ट बस अड्डे के बनाए जाने की बात कही गई है। सो फिलहाल गोंडा समेत 18 बस अड्डों के पुनर्विकास के लिए निविदा जारी की है, और निविदा का जो प्रोसेस है पूरा होने के बाद इसका जो निर्माण है वो शुरू हो जाएगा। सो नए बस अड्डे को करीब 90 साल की लीज पर एक निजी कंपनी डेवलप करेगी और उसको चलाएगी भी। इससे जो भी यात्रियों को हवाई अड्डे की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएँ मिलेंगी। सो प्रमाइसेस में वातानुकूलित रेस्टोरेंट होगा, प्रतीक्षालय, फूड कोर्ट, ये सभी अवेलेबल कराए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स जैसी फैसिलिटी भी दिए जाने की बात सामने आ रही है। सो मल्टी लेवल पार्किंग और 24 घंटे CCTV की निगरानी की जो है वो व्यवस्था होगी। जो दिव्यांग और बुज़ुर्ग होंगे उनके लिए रैंप, लिफ्ट और व्हील चेयर जैसी फैसिलिटी भी होगी। सो प्रमाइसिस में सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। सो निजी कंपनी इसको चलाएगी। आपको बता दें कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया है कि निजी कंपनी बस अड्डे का निर्माण करेगी और संचालन करेगी, यानी उसको डेवलप करेगी और उसको चलाएगी। सो परियोजना के तहत जो भी हमारे यात्री हैं उनको परिवहन के साथ में खरीदारी और खान पान की एक अच्छी फैसिलिटी मिलने की बात बताई गई है। सो इससे शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो बेहतर होने की उम्मीद बताई जा रही है। बस अड्डे के लिए लगभग 7,200 वर्ग मीटर की जो ज़मीन है वो अवेलेबल है, और इसमें तकरीबन 2,000 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण है जिसे निर्माण से पहले हटाया जाएगा। सो ये गोंडा के बस स्टैंड से लेकर के जुड़ी एक बड़ी अपडेट थी जो कि आप तक मैंने पहुंचाई, और इसके बाद जो आ रही है वो रोड सेफ्टी को लेकर के आ रही है। सो काफ़ी वक्त से अधूरी पड़ी ज़िले की दो जो मेन सड़कें हैं उनके बनने को अब रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल राज्य सड़क निधि से दोनों परियोजनाओं के लिए 1,39,00,000 रुपये की एक्स्ट्रा किश्त जो है वो जारी की है, और धनराशि मिलने के बाद जल्द काम शुरू होगा। सो दोनों सड़कों का जो निर्माण है वो पूरा होने से आसपास के करीब 50,000 लोगों को आने जाने में फ़ायदा होगा। सो प्रांतीय खंड के महाराजगंज ग्रंट में छोटकी सोहिवा जो संपर्क मार्ग है इसमें 1,37,00,000 रुपए स्वीकृत हैं, जबकि 80,82,000 रुपए जारी किए गए हैं। शासन ने 33,35,000 रुपए की दूसरी किश्त जारी की है। इसके अलावा 9,00,000 रुपए का जो अनुरक्षण काम है उसके लिए रखे हैं। और दूसरी तरफ रेनुआ दौलतपुर ग्रांट अलीपुर मार्ग को चौड़ा करने के लिए और उसके सुंदरीकरण के लिए 25,53,00,000 रुपए जो हैं वो स्वीकृत हैं। इसमें 23,16,00,000 रुपए पहले से ही जारी किए जा चुके हैं, और 5 साल के अनुरक्षण के लिए 59,13,000 रुपए जो है वो निर्धारित है। सो इस परियोजना में 1,77,00,000 रुपए जो है बचे थे, अब शासन ने 1,06,00,000 रुपए जो है वो और जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है मंडल के पूरे 95 ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाने की बात। मंडल यानी अपने देवीपाटन मंडल जिसमें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती आता है। सो देवीपाटन मंडल के 3 जिलों में बिजली की जो आपूर्ति व्यवस्था है उसे बेहतर करने के लिए
95 वितरण ट्रांसफार्मरों की जो क्षमता है वो बढ़ाई जाने की बात सामने आ रही है। सो माध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक हैं उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है और मंजूरी मिलने के बाद जो इससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं उसमें क्षमता वृद्धि का काम जो है वो शुरू करा दिया गया है, जिसमें गोंडा, बहराइच और बलरामपुर के जो कंज्यूमर्स हैं इनको बार बार होने वाले फॉल्ट और बिजली आपूर्ति में बाधित होने की जो प्रॉब्लम है उससे राहत मिलने की बात बताई गई है। सो डैशबोर्ड पर इन ट्रांसफार्मरों की जो सिचुएशन है वो बहुत ही गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई थी। इसे देखते हुए देवीपाटन जोन के अधिकारियों ने ऐसे ट्रांसफार्मर्स को चिन्हित करके उसकी क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव जो है वो निगम को भेजा था। सो देवीपाटन जोन के जो मुख्य अभियंता हैं उन्होंने बताया कि प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और गंभीर श्रेणी के चिन्हित सभी 95 ट्रांसफार्मर्स की जो क्षमता है वो बढ़ाई जाने की बात बताई गई है। सो अधिकारियों के मुताबिक गोंडा प्रथम खंड के 1, गोंडा द्वितीय के 14, गोंडा तृतीय करनैलगंज में 15 और मनकापुर में 23 ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बलरामपुर के तुलसीपुर में 10 और बहराइच के कैसरगंज में 29 ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी। देवीपाटन मंडल में कुल 95 ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि होगी। इसमें 16, 25 और 63 केवीए क्षमता वाले जो ट्रांसफार्मर हैं वो शामिल है। क्षमता वृद्धि से हज़ारों जो कंज्यूमर्स हैं इनको राहत की बात बताई जा रही है। इसके अलावा ऑनलाइन की जा रही है इसकी निगरानी। जी हाँ, सो अधिकारियों के मुताबिक देवीपाटन जोन के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के करीब 55,000 ट्रांसफार्मर हैं। इनमें 8,000 पर डीटी यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मीटर लगे हैं जिनकी AMISP डैशबोर्ड के जरिए ऑनलाइन निगरानी हो रही है और निगरानी में 95 ट्रांसफार्मर ओवरलोड मिले हैं। सो इनके क्षतिग्रस्त होने के खतरे को देखते हुए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने क्षमता बढ़ाने की जो मंजूरी है वो फिलहाल दे दी है। सो इस तरह से ये जो अगली अपडेट थी ये बिजली विभाग से थी और हमने आपको बताया कि किस तरह से 95 ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाई जाने की बात भी कही गई है। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट है वो है आज सुबह 10 बजे की नगरपालिका परिषद के जो सभागार हैं वहाँ जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा सुबह 11 बजे ज़िला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में सिलाई ट्रेड के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। एंड इसके बाद अगर हम बताएं अगली अपडेट की तरफ, सो अगली अपडेट जो है वो एक ही हफ्ते में 5 रुपये जो चीनी के दाम बढ़े हैं उसको लेकर के भी आ रही है। सो चीनी के दाम में अचानक जो उछाल है उससे लोगों का थोड़ा सा बजट जो है वो बिगड़ने लगा है। सो एक ही हफ्ते के अंदर ही चीनी के दाम करीब 4 से 5 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं। पहले 48 रुपये किलो बिकने वाली चीनी जो है वो 52 से 53 रुपये तक किलो बिक रही है और इससे जो है आम कंज्यूमर्स की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। सो किराना बाज़ार में इन दिनों चीनी के दाम में तेज़ी जो है वो देखी जा रही है और दुकानदारों के हिसाब से एक हफ्ते पहले तक की अच्छी गुणवत्ता की चीनी जो है यानी कि अच्छी क्वालिटी की वो 48 रुपये किलो के आसपास बिक रही थी, अब दाम बढ़ करके 52 से 53 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। सो फिलहाल बताया है कि और भी चढ़ सकते हैं दाम दुकानदारों के हिसाब से। बाज़ार में मांग और थोक की कीमतों के हिसाब से चीनी के भाव में उतार चढ़ाव हो रहा है। आने वाले दिनों में मांग बढ़ने पर कीमतों में और बदलाव की जो संभावना है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल 52 से 53 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई है और कीमत ने आम लोगों की चाय की चुस्की और मिठास को थोड़ा सा महंगा और ज़रूर कर दिया है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल आ रही है विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया है। सो जी हाँ, कृषि संकाय की तरफ से नशा मुक्ति विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम जो है वो चलाया गया जिसमें स्टूडेंट्स ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया है और कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरविंद कुमार शर्मा ने किया भी। उन्होंने कहा कि देश का युवा जो है वो देश का भविष्य है, उन्हें नशे से दूर रह करके इस देश को बनाने के लिए और कृषि क्षेत्र के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। सो फिलहाल ये अगली अपडेट रही जो कि हमने आप तक पहुंचाई। सो आई होप कि आज गोंडा अपडेट में आपको काफ़ी कुछ आपके काम का मिला होगा जो कि ज़रूर आप जिस पर गौर करेंगे। और जाते जाते आपको हम ज़रा मेडिकल कॉलेज के बारे में बता दें कि आज किन किन डॉक्टर्स की कौन कौन से विभाग में ड्यूटी लगाई गई है।
सो मेडिसिन विभाग में आज आपको मिलने वाले हैं डॉक्टर अभिजीत, आर्थो विभाग में डॉक्टर पीएन सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में कोविड बिल्डिंग में आपको डॉक्टर महिकीर्ति सिसोदिया, डॉक्टर कविता सिंह, डॉक्टर अनीशा गुप्ता, जनरल सर्जरी ओपीडी में डॉक्टर आतिफ मोहम्मद, डॉक्टर प्रदीप चौधरी, डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी, मनोरोग विभाग में आपको डॉक्टर नूपुर पॉल, डॉक्टर अजहर खान, डॉक्टर यामिनी अग्निहोत्री आज मिलने वाले हैं और साथ ही डॉक्टर नेहा यादव, चर्म रोग विभाग में डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर अभिषेक यादव, डॉक्टर रिपि सिंह, बाल रोग विभाग में डॉक्टर आफ्ताब आलम, डॉक्टर स्वप्निल, दंत रोग विभाग में आपको डॉक्टर सुरेंद्र गौड़, डॉक्टर पूजा भारती, कान कला गला कान नाक कला और इस विभाग में आपको डॉक्टर आजम हनफी, डॉक्टर पीएन रॉय, डॉक्टर आरएन पांडे, डॉक्टर अश्विनी कौशल और नेत्र रोग विभाग में डॉक्टर अरविंद कुमार विश्वकर्मा आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम जिला अस्पताल की बात करें, जिला महिला अस्पताल की, तो यहाँ ओपीडी नंबर एक में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा सिन्हा और डॉक्टर दीपिका सेठ मिलने वाले हैं। ओपीडी नंबर दो में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माधुरी त्रिपाठी आपको मिलने वाली हैं। ओपीडी नंबर थ्री में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस दयाल आपको मिलने वाले हैं। ओपीडी नंबर चार में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एन के सिंह मिलने वाले हैं और सुरक्षा क्लिनिक में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि शर्मा आपको मिलने वाली हैं। सो फिलहाल ये रही गोंडा अपडेट जो कि हमने आप तक पहुँचाई। आई होप कि आपको काफ़ी जान करके अब खुशी भी हो रही होगी कि भाई आने वाले वक्त में जल्द ही गोंडा को बस अड्डा मिलने वाला है, जिससे कि बस स्टैंड को लेकर के जो प्रॉब्लम्स थी उसका फ़िलहाल कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा जैम की प्रॉब्लम भी है, शहर के बीचों बीच है, जिसकी वजह से बस स्टैंड की तरफ जाने वाली सड़क पर बहराइच रोड से अगर आप जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ता है, क्योंकि जगह ना हो पाने की वजह से वहीं पर खड़ी बसेस की वजह से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। और साथ ही साथ अब इसको चूँकि शिफ्ट करके नए PPP मॉडल पर बनाए जाने की बात सामने आ रही है, और साथ ही साथ आप अपडेट में भी जान गए हैं कि भाई सुबह 10 बजे से नगरपालिका सभागार में भी जन सुनवाई होने वाली है। सो इस तरह की कई सारी अपडेट्स जो हैं वो आरजे अदनान आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि भाई आपसे जुड़ी भी कोई ऐसी बात हो सकती है जिसका आपको इंतज़ार और शायद पता ना चले, तो इसलिए आप सुनते रहा करिए अपना मॉर्निंग वाला शो, क्योंकि इसमें आरजे अदनान लेकर के आते हैं सिटी अपडेट जो कि होती है आपके काफ़ी ज़्यादा काम की। फिलहाल बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में आरजे अदनान के साथ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।
5: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
6: Yeah, wanna feel that? Come on, girl.

0: हल्का हल्का सा ये समा तो है, ऑफ कोर्स मौसम देखकर तो यही लगता है कि भाई आज का समा जो है सच में काफ़ी ज़्यादा ही अलग है। फिलहाल आइए चलते हैं आपको एक छोटी सी बात बताने के लिए जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली है। आप सोचेंगे हम अक्सर ऐसी बातें क्यों ले आते हैं जो सोचने पर मजबूर करें, भाई यही तो इंसान को इंसानियत की तरफ रखता है। अगर हम इसको भूल जाएंगे, ऐसी बातों को सोचना ही भूल जाएंगे, तो फिर हम कहाँ प्रोग्रेसिव हो पाएंगे। सो फिलहाल चूँकि हम कुछ कुछ बातें ऐसी आपको बताते रहते हैं जो कि पेरेंटिंग से रिलेटेड होती है, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हम सिर्फ एक बात, एक स्टेटमेंट कह देते हैं कि भैया आज की जनरेशन कितनी अलग हो गई है और अब जो आ रहे हैं वो न जाने कहाँ होंगे। तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इन जनरेशन को देखने वाले, इस जनरेशन को गाइड करने वाला कोई और नहीं बल्कि हम और आप हैं। सो किस तरह से एक बेहतर गाइडेंस होती है, क्या होता है, ये इस बारे में हम आपको बताने की कोशिश करते रहते हैं। फिलहाल एक छोटी सी बात के ज़रिए आपको समझ में आएगा कि बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाए जिससे कि आपके घर का छोटा सा बच्चा भी जो है वो समझदारी से चीज़ों को समझ जाए।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

एक माँ ने कहा कि मैंने 21 दिनों तक अपने बच्चे को नहीं डांटा और तब समझ में आया बदलने की ज़रूरत उसे नहीं बल्कि मुझे है। सो मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो थकान

भागदौड़ और तनाव में मैं कई बार उन्हीं पर चिल्ला भी देती थी। फिर रात को बस एक ही बात सोचती थी, काश मैंने अपने बच्चों को नहीं डांटा होता, मैं थोड़ा सा शांत रहती। सो एक दिन मैंने खुद से एक छोटा सा वादा किया कि अगले 21 दिनों तक गलती होने पर पहले खुद को संभालूंगी, फिर अपने बच्चों पर रिएक्ट करूंगी। यकीन मानिए कि ये मेरे बच्चों से ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था। पहला हफ्ता मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मेरे बच्चे मुझे बार बार टेस्ट करते रहे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं था कि मैं सच में उन्हें नहीं डांटूंगी। एक दिन मेरे बेटे के हाथ से कांच का गिलास टूट गया, वो घबरा गया, वो जल्दी जल्दी से टुकड़े छुपाने लगा। मैंने बस इतना पूछा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर धीरे धीरे मेरे पास आया। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरी उसे डांट नहीं बल्कि मेरे साथ की उसको ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद वो खुद मेरे पास आकर बोला, मम्मा मुझसे गलती हो गई। उसी पल मुझे समझ आया, बच्चे गलतियां नहीं छुपाते हैं, बच्चे हमारे रिएक्शन से डरते हैं। यानी हम जो बच्चों की गलती पे जिस तरह चिल्लाते हैं, हैरान होते हैं या उनको बुरा भला कहते हैं, बच्चे उस चीज़ से डरते हैं, इसलिए वो छिपाते हैं। तीसरे हफ्ते तक घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा, नियम वही थे, सीमाएं भी वही थी, लेकिन डर की जगह बच्चों को भरोसा आ गया था। सो 21 दिनों में ना मैं परफेक्ट बनी ना मेरे बच्चे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बदल गई कि अब बच्चे मुझसे डर कर नहीं भरोसा करके बात करते हैं। सो इन 21 दिनों ने मुझे एक बात समझ में ज़रूर आई कि डांट बच्चे का जो व्यवहार है कुछ देर के लिए बदल सकती है, लेकिन शांत रहकर दिया गया भरोसा उसका जो दिल है वो हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। सो पेरेंटिंग जो है बच्चों को बदलने की नहीं बल्कि खुद को थोड़ा थोड़ा बदलने की होती है। सच तो ये है, इसमें हम बच्चों को नहीं बदलते बल्कि खुद को ट्रेन करते हैं कि हमें बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उन्हें उनसे बात करनी है। सो कहीं ना कहीं ये बात बहुत ही प्यारी है और बात समझ में आती है कि हाँ, बच्चा गलती करता है तो मारने या डांटने की बजाय अगर हम सीधे कंसर्न दिखाए, उसके लिए चिंता जाहिर करें, तो बच्चा बताने लग जाता है, उसको यकीन होने लग जाता है। और दुनिया भर के बच्चे अगर कोई छिपाता है तो वो बस इस डर से कि हमारा रिएक्शन कैसा होगा, हम चिल्ला देंगे, हम मार देंगे या हम डांटेंगे या हम कुछ बुरा भला कहेंगे, बस ये डर जो होता है इस वजह से बच्चे छिपाते हैं। अदरवाइज़ बच्चों को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हर बार ऐसा लगता है कि हाँ, ये बात हमको खुद समझनी होगी, बच्चों को नहीं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी हर चीज़ों को समझ रहे हैं, वो जैसे हैं वो वैसे ही होते हैं। बच्चों की तो ज़िंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन हम काफ़ी फेजेस देख चुके हैं और हम खुद भी उन सारे फेजेस से निकल चुके हैं, तो हमको लगता है कि शायद इन बातों को समझने की ज़रूरत हमें खुद है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: इतिहासों ने सरहदों को याद रखा, लेकिन इन्होंने दुनिया को सुनाई सरहदों के पीछे की कहानी। जी हाँ, कैसे भारत पाकिस्तान के दो दोस्तों ने बंटवारे से जुड़ी 200 कहानियों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, आइए आज अब आपको बताने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

एक ऐसी कहानी जिसको सच में आप सुनकर हैरान होने वाले हैं कि किस तरह से उन 200 कहानियों को हमेशा के लिए अमर कर दिया जो बंटवारे से जुड़ी थी। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं संदीप दत्त, जो कि भारत के लुधियाना में पले बढ़े, और दूसरे हैं फैसल हया, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में पले बढ़े। सो दोनों कभी मिले ही नहीं। अब आप सोचेंगे जब मिले नहीं तो दोस्ती कैसे। चलिए हम बताते हैं कि आखिर दोस्ती कैसे। देखिए, ये लोग मिले नहीं, फिर भी इन दोनों यंगस्टर्स ने मिल करके ऐसा काम किया जिससे दोनों देशों के लोग अपनी साझा जो याद थी और इतिहास से दोबारा जुड़ सके। सो इन्होंने क्या किया कि बंटवारे से जुड़ी 200 से ज़्यादा कहानियों को सहेजा। ऐसे करोड़ों लोग थे जिनके लिए भारत का बंटवारा सिर्फ इतिहास की घटना नहीं थी, बल्कि ये वो दिन था जब उन्हें अपना घर, अपने लोग और अपना बचपन हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। सो फेसबुक के अमन की आशा ग्रुप के जरिए जो है संदीप और फैसल की बातचीत शुरू हुई। दोनों दोस्त बने और इसी दोस्ती से बोलती खिड़की की शुरुआत हुई। ये एक ऐसा मंच बना जहां भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से बंटवारे के गवाह अपनी यादें और अपनी कहानियों को साझा कर सके। सो इस पहल के लिए जो इंस्पिरेशन मिली वो संदीप जी को मिली। इन्होंने अपने उर्दू शिक्षक से मिली जो कि खुद बंटवारे के दौर से गुजर चुके थे। वो अक्सर अपने स्टूडेंट्स से कहते थे कि मैंने कई युद्ध देखे हैं और यकीन मानिए, युद्ध में तबाही और मौत के अलावा कुछ नहीं होता। और उनकी यही बात जो है वो संदीप के दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। हर हफ्ते बोलती खिड़की पर एक नई कहानी साझा की जाती थी, किसी की दादी की कहानी जिन्हें 12 साल की उम्र में अमृतसर छोड़ना पड़ा, और कुछ परिवारों की कहानी जो 1947 में बिछड़े हुए अपने दोस्तों को तलाश रहे थे, और कुछ ऐसे लोगों की कहानी जो दशकों के बाद सिर्फ एक साझा याद के सहारे फिर से एक दूसरे तक पहुंच पाए। सो 6 सालों में संदीप और फैसल ने बंटवारे से जुड़े 200 लोगों की कहानियां दर्ज की, लेकिन इस दौरान जिन लोगों से उन्होंने बात की थी उसमें से कई इस दुनिया से चले गए थे, खास करके कोविड महामारी के दौरान। लेकिन उनकी सहेजी हुई हर कहानी हमेशा के लिए चूंकि अनमोल बन गई। और उनका मकसद कभी ये तय करना नहीं था कि कौन सही था कौन गलत। ये सिर्फ इतना चाहते थे कि जो लोग इन यादों को अपने साथ लिए जी रहे हैं उनके जाने के बाद उनकी कहानियां जिंदा रहे। आज ये कहानियां ऑक्सफोर्ड से जो है वो प्रकाशित एक बुक है जिसका हिस्सा है। सो ये हमें याद दिलाती हैं कि भले ही सरहदें खींच दी जाए लेकिन कहानियां हमेशा लोगों को जोड़ कर रखती है। और तभी ये संदीप और फैसल की कहानियां बनी। मतलब सच में जिन्होंने भी युद्ध देखे हैं, जिन्होंने भी वो पेन सहा है, वो हर कोई यही शख्स कहता है कि दुनिया के किसी भी कंट्री में जहां पे युद्ध की मार झेली है लोगों ने यही कहा था कि युद्ध सिर्फ बर्बादी लेकर के आता है। यहां तो बात ये नहीं है कि किसने किस बात पे क्यों किया, लेकिन बात यह है कि उससे हुआ क्या। इसका असर बहुत गहरा होता है और शायद इसको आपने सुन करके कहीं ना कहीं अब समझ पा रहे होंगे आप भी कि हाँ, कुछ यादें हमेशा हमेशा के लिए दिलों में रह जाती हैं। और स्पेशली वो यादें जब आपको सारी दुनिया ही कह सकते हैं छोड़ना पड़े। एक तो होता है कि हम कुछ बेहतर करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन एक होता है कि नहीं, आपका सब कुछ कहा जाए कि यहाँ से ख़त्म है। तो ज़रा सोचिए कहीं और जाने का क्या हाल होता होगा।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: शादी के बाद पहली बार बहू रेसिपी बुक देखकर खाना बना रही थी। सास बोली,
1: अरे बेटा ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों रखा है?
0: मम्मी जी, बुक में लिखा है कि सब चीजें को मिलाकर एक घंटा फ्रिज में रखें।

0: अब मुझे लगता है कि भाई सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है फिलहाल वो हम सब के साथ है और जो अक्सर आ जाती है वो है काहली की, यानी कि आलस की बात है। और ये आलस जो है वो घेर ही लेता है। क्या आपको भी घेरता है? ऑफकोर्स चौतरफा घेर लेता है भैया, कुछ भी करने चलते हैं ऐसा लगता है। ठीक है, जहाँ इतना वक्त लिया वहाँ और वक्त लेकर के हम इस काम को शुरुआत इसकी कर ही देंगे और इस तरह से हमारा काम हो ही जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी लोग तरीके अपना रहे हैं, कुछ ऐसे भी स्टेप्स हैं जिनको अगर फॉलो करें तो बहुत इजीली चीज़ें चेंज हो जाती है और ये काहली भी दूर हो जाती है। सो चलिए आज क्यों ना इस मंडे से अपनी इस काहली को दूर करने के लिए कुछ चीज़ों को जानते हैं और आज ही इसे अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो दिन की शुरुआत है वो इतनी ज़्यादा छोटी होना चाहिए कि आपका दिमाग किसी भी चीज़ को मना ना कर सके। प्रॉब्लम वहीं से शुरुआत हो जाती है जहाँ से दिमाग खुद कहता है कि नहीं, ये तो काफ़ी मुश्किल है, ये तो काफ़ी बड़ा है, इसको कैसे होना है। तो ये प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी जहाँ पर आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, यानी इतनी बड़ी कोई चीज़ लेना भी नहीं है, रखना भी नहीं कि सच में दिमाग जो है वो मना कर दे। एक बहुत ही छोटा सा आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, एक पुशअप से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है कि सवाल ये नहीं कि आप करते क्या है, लेकिन आप उठते क्यों हैं सुबह। जब आपका जवाब क्यों में क्लियर होता है तो आपकी जो कोशिश है वो आसान हो जाती है। इसके अलावा 80% पेट भरना भी, यानी खाने का बहुत बड़ा असर होता है हमारी काहली में, हमारी लेजीनेस पर। सो ज़रूरत से ज़्यादा खाना जो है वो हमारा ध्यान, हमारी एनर्जी और हमारी जो कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी है उसको कम कर सकता है। सो इसलिए कई बुज़ुर्ग लोग पूरी तरह से पेट भरा हुआ महसूस करने से पहले खाना बंद करने का जो है वो कोशिश करते हैं, जिससे कि उन्हें एक्टिव और ऊर्जावान बने रहने में मदद मिलती है। इसके अलावा 25 मिनट का काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। शुरू करने से पहले एक बहुत ही आम सा जो है कोई भी चीज़ आपको अपनानी है, एक गहरी सांस लेना है, एक छोटा सा कोई भी सेंटेंस खुद से बोलना है, या कोई भी ऐसी काम आप कर सकते हैं जब कोई स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, मतलब छोटा सा कुछ भी ऐसा स्टार्ट का नया सोच सकते हैं। मान लीजिए कि आप कुछ शुरू करने जा रहे हैं तो गहरी सांस लेना आपने आदत बना ली, या फिर आपने आदत बना ली कि आप आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारा आसपास का माहौल होता है, हमारे कमरे का, हमारे घर का, या जहाँ हम कार्यस्थल पर बैठते हैं, अगर वहाँ पर साफ़ सफाई होती है, बहुत चीज़ें सलीके से होती है, तो सारा चीज़ें अपने आप बेहतर रहती है। गंदगी जो है वो तनाव को बढ़ाती है, फोकस कम करती है, और प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए हमको ये चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, टाल मटोल का क्या होता है कि अक्सर ये डर को छिपाने के लिए होता है या ख़त्म करना, इन सारी चीज़ को छोड़ना होगा और टाल मटोल इसको हटाना होगा। सो फिलहाल क्या कर सकते हैं जब कुछ सब सही होने से पहले, शुरुआत कैसे करना है? सो सही सिचुएशन का इंतज़ार नहीं करना होता है। पहली बात, आज का जो दिन है आपकी वही परफेक्ट शुरुआत है, आपके पास जो है उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारी टाल मटोल सिर्फ डर है जो आपके पेशेंस का दिखावा कर रहा है। अच्छा, डेली प्रोग्रेस किस तरह से देख सकते हैं? वर्कआउट, मेडिटेशन है, रीडिंग है, इसके बाद है फोकस वर्क, जिसमें आप अपनी फोकस वर्क पर काम कर सकते हैं। सो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है यही चेंज लेकर के आती हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा चाहिए भी नहीं होता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ जो हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, अपनी डेली लाइफ में, वो हमें बहुत कुछ दे कर के जाता है, हम पर काफ़ी ज़्यादा असर डालता है, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल ऐसा आपको भी लग सकता है और ऐसा है भी, क्योंकि ये बात सच है कि अगर हम देखें तो पाते हैं कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि भैया ये जो कुछ भी हम लोग करते हैं ये हमारी लाइफ बन जाता है, यानी डेली लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं यही हमारी लाइफ है, यानी हमारी आदतें ही हमारी लाइफ है। सो जब ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं फिर आदतों में ही हमको चेंजेस भी लाने होते हैं, क्योंकि हमारा यहीं से सारे चेंजेस स्टार्ट होते हैं, यहीं से सारे चेंजेस ख़त्म होते हैं। तो इसलिए आदतों को बदलना बहुत ज़रूरी है, और आदतों को वो एक साथ नहीं बदला जा सकता, ये एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिया जाए और उसके बाद चीज़ों को बदला जाए। सो ये बदलाव बहुत टिनी स्टेप्स से आने वाले हैं, इस बात को और ध्यान रखेंगे तो शायद हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा अपनी आदतों में बदलाव लाना, है ना। सो क्या आप रेडी हैं अपनी आदतों में बदलाव लाने के लिए?

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग जॉक का आरजे अतान। और देखिए काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं चैट बॉक्स पर, चलिए भाई जो नहीं पढ़ पाए थे वो अब हम जा रहे हैं पढ़ने। सो किसने कहा क्या कुछ लिखा है ये सब कुछ बताने वाले। महेंद्र जी लिखते हैं राजस्थान से, नमस्कार अदनान सर जी, नमस्कार, आपको भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। प्रीति जी बहराइच से हैं, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका भी प्रीति जी बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। गीता श्रीवास्तव जी हैं, गुड मॉर्निंग आर्जी सर, गुड मॉर्निंग टू यू, थॉट ऑफ द डे पसंद आया महेंद्र को, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ इरशाद जी मौजूद है हथियागढ़ गोंडा से, थैंक यू। एंड रेखा जी ने बोला है थैंक यू सो मच फॉर सर गोंडा की इन्फॉर्मेशन दिया, नहीं तो पता ही नहीं चल पाता है, कोटा में गोंडा को बहुत मिस करते हैं। और राइट, कोई बात नहीं, आपका गोंडा आपके संग हमेशा रहेगा, बस आपको बने रहना होगा अपने 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। जी के फ्रॉम राजस्थान, गुड मॉर्निंग। एंड धर्मेंद्र जी, सर जी गुड मॉर्निंग, और साथ ही साथ लवली टेस्टी गाना चल रहा है, अच्छा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको गाने लवली और टेस्टी दोनों ही लग रहे हैं। एंड महेंद्र बोलते हैं कि सर ये तो मैं करता हूँ 25 मिनट के काम के बाद 5 से 6 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उससे मुझे लगता है कि मेरा काम पूरे दिन मन लगा रहता है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके अंदर ये आदत है तो ये आप बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इट डज़ वर्क, ये बहुत अच्छे से काम करता है, ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल चलिए आज का शो कैसा रहा, आज की बातचीत कैसी रही, हमको ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त बस हो ही चल रहा है, लेकिन आज का शो कैसा लगा ये तो खैर आप ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, एंजॉय करते रहिएगा और बने रहिए अपने 89.6 FM के स्टूडियो पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।
10: ओह, कितना सुहाना मौसम है किरण, जिधर देखो उधर हरियाली है, कितना सुंदर और सुहाना लग रहा है।
11: अगीता दीदी, ये मौसम हम सब के मन को मोह लेता है।
12: वो देखो मोर, कैसा मन मोहक नृत्य कर रहा है।
13: मेरा मन भी मोर की तरह इस मौसम में नाचने को कर रहा है।
14: लेकिन किरण दी, कोई ऐसा गाना हो जाए जिस पे हम सब नाच उठें।

0: आज तो गर्मा गर्म पकौड़िया और चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाए।
1: अरे आज तो सावन का सोमवार है भाई, मैं और किरण तो व्रत हैं। आज हम कूटू के आटे की पकौड़ी खाएंगे और भोले का भजन करेंगे।
2: पहले भोले का भजन क्यों? पहले गणपति बाबा का भजन होना चाहिए था।

0: वाह किरण दीदी, मजा आ गया।
1: देखो किरण, आदिकाल से हिंदू रीत रिवाजों में सबसे पहले गणेश पूजा का विधान है।
2: शादी हो या कीर्तन भजन हो, कोई भी शुभ काम हो तो हम गणेश जी को नहीं भूलते।
0: अरे इस सावन के महीने में तो शिव जी का महत्व ही है। मेरा मन शिव भजन सुनने का कर रहा है। वैसे आज सावन का सोमवार भी है,
3: तो एक शिव भजन भी सुना दीजिए किरण दीदी।

0: अरे ये कोयल की आवाज कहाँ से आ रही है? कितना मीठा बोल रही है। कुहू, कुहू, कुहू।
1: पेड़ पौधों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने इन्हें साबुन पानी से नहला धुला दिया हो।
2: सच में सब कुछ ताजगी भरा लग रहा है।
3: और पुरवाई तो ऐसे चल रही है मानो हवा के साथ सभी पेड़ पौधे सिर हिला हिला कर सावन आने की खुशी मना रहे हैं।
0: किरण, वो देखो कांवड़िए इधर ही आ रहे हैं। भोले को स्नान कराने के लिए ना जाने कितने कितने मील पैदल जल लेकर जाते हैं और भोले को स्नान कराते हैं।
1: चलो चलो कांवड़िया से भी वार्तालाप करते हैं, देखें वो कितनी दूर तक जाएंगे।
2: अरे उन्हें भी कोई गीत सुना दीजिए ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिल सके।
0: तो चलो कांवड़ियों को गीत सुनाकर उनकी थकान मिटा देते हैं।

0: अरे वो देखो, कमला काकी आ रही हैं।
1: कमला काकी बड़ी तैयारी में लगी हैं, क्योंकि फौज से उनका बेटा जो आने वाला है।
2: तो काकी बहुरिया सावन में मैके जाने वाली होगी?
3: नहीं, अब क्या जाएगी मैके? इतने दिनों बाद उसके पति देव आ रहे हैं, तो वो मैके नहीं जाएगी। नहीं नहीं,

0: नाग पंचमी कब है समता दीदी?
1: बस जल्दी ही आने वाली है। क्यों श्वेता, कुछ बचा कुचा खिलाने वाली हो क्या?
0: खिलाएंगी तो बस गीता दीदी और किरण दीदी।
2: क्यों भाई, हम दोनों ही क्यों? तुम दोनों क्यों नहीं?
3: क्योंकि आपका चना यानी चने की घुघरी बड़ी स्वादिष्ट बनती है। मेरे मुंह में तो पानी अभी से पानी और पानी आ रहा है।
2: अच्छा, तो खुद भी बच गई चना खिलाने से। अरे भाई ठीक है, मैं ही खिला दूंगी तुम सबको चना।
0: वैसे नाग पंचमी को क्या बनाएंगी, तो मैं भी अपने आप को थोड़ा तैयार कर लूंगी।
2: नागों की पूजा के लिए खीर, पूड़ी, कचौड़ी, चने की घुघरी, कद्दू की सब्जी और भी बहुत सारी चीजें।
1: वाह, मुंह में पानी आ गया।
3: वैसे सावन में नागपंचमी को मेहंदी का बड़ा महत्व है।
0: लाल लाल मेहंदी और हरी हरी चूड़ी से जब सबके हाथ सजे दिखाई देते हैं तो मन को अपार खुशी मिलती है।
2: तो किरण, अब फटाफट मेहंदी वाला गाना जो तुम अक्सर गाती हो इन सबको भी सुना दो। और वो देखो, सुनहरी चाची, सन्नो जीजी, सभी तो इधर आ रही हैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए।

0: सुनहरी चाची के धान के खेत एकदम लहलहा रहे हैं। और चाची, अब की बार आपके खेत का चावल हम सब मिलकर खाएंगे।
1: अरे सुनो जिजी, लैया चने का भूजा और लहसुन की चटनी कब खिलाएंगी?
2: अरे बहनी, घरे आओ तो जौन कहो तौन खवाब दे, तब एक नहीं कई ठौ गनवा सुनवाई दे।
0: तो जिजी को एक और गाना सुनाना चाहिए, तो सुनो जिजी।

0: किरण दीदी, कोई सावन में मैके जाना चाहती है और कोई नहीं जाना चाहती है। भाई सावन का पूरा महीना शिव जी के अलावा बहन बेटियों का भी तो है।
1: बहन बेटियों से ही तो मायके की रौनक होती है।

0: आप जरा टाइम पूछो उनसे,
1: मेरा क्या
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: हुकई से खेलन जईबो सावन मां कजेरिया, बदरिया घेरिया इलनन

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9861-976-9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

शोना, मुझे भी तुमसे कुछ है कहना, और क्या कहना है बता देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यही गोडा शहर की धड़कन पर। आपकी अपनी आशमति मौजूद हैं आप सभी के साथ। घड़ी में वक्त हो चला है 12:10 बाय स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया है अपने फेवरेट वाले FM पर आपका अपना वाला शो ज्ञानस्थली लाइव, जो ऑफकोर्स आपकी आशमति लेकर आती है मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे। तो आज के दिन में खास क्या होने वाला है, यूं तो मैं आपको बहुत सारी यूनिक चीज़ें बताया करती हूँ दिन रात सुबह शाम, मतलब दोपहर में, उसी को काउंट कर लिया। एंड इस यूनिक चीज़ों में आज स्पेशली कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जो थोड़ा सा हटकर है, यूनिक नहीं है लेकिन आपकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। आपको भी पता है कि आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन है, जिसके हाथ में फ़ोन है उसके हाथ में पावर है बहुत सारी चीज़ों को करने का, लेकिन इसके अलावा उसके पास खतरा भी उतना ही ज़्यादा मौजूद है। आजकल हमारा पूरा डेटा हमारे फ़ोन के अंदर मौजूद रहता है, हमारी आइडेंटिटी, हमारे बैंक अकाउंट, हमारी फ़ोटोज़, हमारी पर्सनल चैट एंड ना जाने क्या क्या हम अपने फ़ोन के अंदर रखते, इवन पासवर्ड्स तक। हम अपने बैंक लॉकर का पासवर्ड भी अपने पास रखते हैं, अपने फ़ोन के अंदर डाल के रखते हैं। कहीं का भी पासवर्ड हमें डालना होता है तो हम सीधे उसको नोटपैड में रख लेते हैं, ये सोच कर कि चलो आगे याद आएगा, आगे काम आएगा। बट क्या हो अगर यही चीज़ें आपके लिए सबसे बड़ा ख़तरा साबित हो जाए। साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है आए दिन। मैंने पिछली बार भी दो बार ये सीरीज चलाई हुई है कि किस तरह से मार्केट में नए नए फ्रॉड्स आते रहते हैं और उन फ्रॉड से आपको बचना चाहिए। तो आज उस सीरीज़ को तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हाँ मैं आज आपको ऐसी जरूर कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसमें कुछ टिप्स होंगी, सेफ्टी टिप्स होंगी, कुछ मिथ्स होंगे, कुछ फैक्ट होंगे, और ऑफ कोर्स आपके फोन के अंदर जो फोटोज हैं उनको लेकर के बात की जाएगी। स्पेशली वो फोटोज जो हम सोचते हैं ना कि वायरल कैसे हो जाते हैं। जी हाँ, मेरे दिमाग में भी बहुत बार ख्याल आता है कि जब हम वायरल कर नहीं रहे हैं, सामने वाला फोटो कहीं को दे नहीं रहा है, अचानक से कोई भी फोटोज वायरल कैसे हो जाती है, कैसे पता चल जाता है लोगों को, बताएंगे लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पर। तो अपने नोटपैड को ले लीजिए, अपने पेन कॉपी को ले लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज कुछ टिप्स में बातें होंगी जो आपको स्पेशली बचाने के लिए होंगी, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए होंगी कि अगर आप इंटरनेट पर हैं, मौजूद हैं, आपका डेटा इंटरनेट पर है, तो किस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के अपनी प्राइवेसी, अपनी लाइफ और अपनी सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं। फिलहाल लेते छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, और ये सेम हाल उनका है, किनका, जो आपके साथ आकर के फ्रॉड करते हैं। उनका भी दिल आपके बिना नहीं लगता, उनका दिन आपके बिना गुजरता ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पैसे भी तो आप ही से बनाने होते हैं ना, ब्लैकमेल भी तो आप ही को करना होता है। अगर वो होंगे ही नहीं, अगर आप नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, उनका काम नहीं होगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? और इसी चक्कर में न जाने कितने लोग हर वक्त इंटरनेट पर न जाने कितने लोगों के शिकार बन जाते हैं। कभी आईडीज हैक हो रही हैं, कभी उनके फोटोज़ वायरल हो रहे हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए, या फिर कहें तो साइबर क्राइम से बचने के लिए, कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जो हम अपने ध्यान में नहीं रखते हैं। उसे ही आज डिस्कस करने वाले हैं आपके अपने शो ज्ञानस्थली लाइफ में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो जॉकी उन्नति, और ऑफकोर्स मौजूद हूं आप सभी के साथ। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। बात करेंगे आज हम साइबर क्राइम से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट, कुछ मिथ और कुछ ऐसी बातें जो आप शायद अनदेखा कर देते हैं, जिसमें स्पेशली बच्चों से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। आपको बता दे भैया कि साइबर क्राइम में जो सबसे ज़्यादा क्राइम अगर किसी के साथ होता है तो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जी नहीं, हर वक्त उन्हें ब्लैकमेल नहीं किया जाता, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो समझ से परे होती हैं, जो पेरेंट्स समझ तक नहीं पाते। कई बार 13 साल का बच्चा बात करना बंद कर देता है, 13-12 साल का बच्चा है, किसी से बात नहीं करता। पहले वो खेलता था, कूदता था, बहुत सारी चीज़ें करता था, अचानक से अगर वो खामोश हो गया है तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश कोई करता ही नहीं। लोगों को लगता है कि बच्चा समझदार हो रहा है, बट एक्चुअल में हो इसका उल्टा रहा होता है। या तो उसे खुद से नफरत हो चुकी है इस बात को सोचकर कि बाहर वाले लोग कितने अच्छे दिख रहे हैं। आपने इंटरनेट पे देखा होगा, ये सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं, इवन बड़ों के अंदर भी दिखता है, फोमो हो जाता है। जब भी हम इंटरनेट पे जाते हैं, किसी की बेहतरीन पिक्चर्स देखते हैं, किसी को देखते हैं, तो लगता है कि भैया सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है, कितने सुंदर सुंदर लोग हैं, कितनी चमक दमक वाली इनकी ज़िंदगी है, हाई फाई क्लास है, इधर घूम रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कितने महंगे महंगे ब्रांड्स खरीद रहे हैं, और उनकी फ़ोटोज़ को कितने सारे लोग लाइक कर रहे हैं, कितने सारे फॉलोवर्स हैं। और ये फोमो ना एक इंसान को हो ही जाता है, स्पेशली अगर आप थोड़े से भी ओवरवेट हैं, यानी कि आपका वजन बढ़ा हुआ है, तो आपको ऑनलाइन डराने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। इतने सारे लोग मिल जाएंगे ये कह करके, ये मत खाओ ऐसा हो जाएगा, वो मत खाओ वो हो जाएगा, ब्रेड मत लो, ये मत लो, वो मत लो, चावल मत खाओ, रोटी मत खाओ, दाल मत खाओ, न जाने कितनी ही बातें आपको सुना दी जाएंगी और आप उन्हें सच भी मानने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर बेचने का काम करते हैं। जैसे ही आप आईने में जाकर खुद को देखते हो, भले ही आपने अपना 5 किलो वजन कम किया हो, बट आईने में जाकर देखते हो कि अरे नहीं यार, वो वाला ज़्यादा अच्छा था, वो कितनी खूबसूरत दिखती है, उसकी फ़ोटोज़ को कितने सारे लोग लाइक करते हैं, मैं अपना वज़न कम कर लूँ, मैं और सुंदर दिख जाऊँ, मैं और अच्छा मेकअप खरीद लूँ, या फिर मैं और अच्छे कपड़े पहन लूँ, तो लोग मुझे भी लाइक करेंगे। और ऐसा नहीं होता है, तो हमें होता है फोमो, और यही फोमो से बच्चे भी ट्रिगर होते हैं। यानी कि अगर 13 साल का बच्चा अचानक से खामोश हो जाता है, तो हो सकता है इसकी सबसे बड़ी वजह उसकी फ़ोन में छिपी हुई हो। अगर आप उसे बात करोगे तो वो आपसे बताएगा कि यार उसे अपना ही ज़िंदगी पसंद नहीं है, उसे वो खुद पसंद नहीं है। रीज़न ये है कि बाहर के जो लोग हैं, या फिर इंटरनेट पर जो लोग उसे दिख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कमाल के दिख रहे हैं, उनकी लाइफ इतनी अच्छी दिख रही है, लगता है कि भैया लाइफ में कुछ है ही नहीं, सिर्फ मज़े ही मज़े हैं, सिर्फ एक मेरी लाइफ है जो फुल ऑफ स्ट्रगल्स है, जिसमें ना शक्ल अच्छी है, ना मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, ना मेरे बाल अच्छे हैं, ना दोस्त अच्छे हैं, ना जाने कितनी ही बातें उसके दिमाग में उस वक्त चल रही होती है। ऊपर से हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं हो रहा है, कंपेयर हो रहा है उसके अंदर भी, इवन आप खुद भी अपने घर पर कर रहे होते हो। कई बार हम बच्चों को कंपेयर कर देते हैं कि अरे देखो यार, तुम्हारे चाचा का लड़का कितना अच्छा नंबर लाया, तुम्हारे मौसी की बेटी को देख लो, तुम्हारी मामी की बेटी को देख लो, कितने अच्छे नंबर लेकर पास हुई है, कितनी सुंदर दिख रही है, तुमको देखो ना, तुम गोरे हो, ना तुम ऐसे हो, ना तुम कितने पतले हो, कितने मोटे हो, हर एक बात को हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और बच्चे को यहीं से टारगेट करता है साइबर क्राइम, यानी कि वो लोग जो ऑनलाइन बैठ कर क्राइम कर रहे हैं। जब बच्चे को घर में प्यार नहीं मिलता है, तो आपने देखा होगा कि बच्चे बाहर प्यार ढूंढना शुरू कर देते हैं, और ये बात सच है। अगर घर में माँ बाप से प्यार नहीं मिल रहा है, माँ बाप उसकी चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, बार बार कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा बाहर वाले बखूबी उठाना जानते हैं। वो बाहर से बच्चे को चॉकलेट टॉफ़ी देते हैं, वो उसको प्यार वाली मीठी मीठी बातें करते हैं, उसको लगता है यार मम्मी पापा ज़्यादा तो ये अंकल आंटी मुझे प्यार कर रहे हैं, ये बाहर का जो इंसान है ये मुझे आकर प्यार कर रहा है, और वो उसकी बातों में आ जाते हैं। यहीं से ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट होती है, और ब्रेन वॉशिंग सिर्फ आपके सामने बैठकर नहीं होती, ऑनलाइन भी की जाती है। इसीलिए बच्चे अपने घर से दूर जाने लगते हैं, माँ बाप से कटने लगते हैं, बातें नहीं बताते, कुछ शेयर नहीं करते। और आपने देखा भी था, एक वक्त था जब ब्लू व्हेल गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा था। ब्लू व्हेल गेम कहा जाता था कि उन लोगों को टारगेट करता है जो सुसाइड करना चाहते हैं, जो उस गेम को
खेलता है, जो उस गेम के अंदर जाता है, उसे वो अलग अलग टास्क कराता है और ऐसे मैनिपुलेट कर रहा होता है कि बच्चे वो टास्क करने पे मजबूर हो जाते हैं और टास्क करते करते करते करते आखिरी स्टेज में उन्हें कह दिया जाता है कि छत से छलांग लगा दो। अब इतने ज़्यादा मैनिपुलेट हो चुके बच्चे, छत से छलांग लगा भी देते थे। हालांकि अब ये सच है कि नहीं भैया, लेकिन उस वक्त ब्लू व्हेल गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, एक खौफ बैठ चुका था और इसके पीछे की वजह यही है कि माँ बाप सही से बात अपने बच्चों से नहीं कर पा रहे हैं। तो कोशिश करें कि बाहर वाले आकर के इससे पहले आपके अपने बच्चे को ब्रेन वॉश करें, काबू कर लें, कब्जा कर लें, आप उन पर थोड़ा ध्यान दें। अगर वो आपसे बात करते करते एकदम खामोश हो चुका है तो क्यों हो चुका है? बीमार है ज़रूरी तो नहीं, हो सकता है बाहर कुछ और उसके अंदर चल रहा हो, बाहर की वजह से उसके अंदर कुछ और चल रहा हो, कोई इसको ब्रेन वॉश कर रहा हो, कोई इसको परेशान कर रहा हो, या फिर किसी ने तो उसको ब्लैकमेल किया है। बच्चों को ब्लैकमेल करना भी बहुत आसान होता है अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है या 25 साल के आसपास भी कोई इंसान क्यों ना हो, 40 साल के लोगों को भी एक ब्लैकमेल किया जाता है। कोई भी रैंडम कॉल आ जाती है इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और बच्चे को नहीं पता या फिर आपको नहीं पता वो कॉल किस चीज़ की है, आपने बस उठा ली है और बस उठाकर आपने इतना 2 सेकंड में ही देखा है, 2 सेकंड की वीडियो कॉल, और उसमें सामने से कोई एक लड़की, कोई एक लड़का आ गया है जिसने शायद कुछ भी नहीं पहना हुआ है और वो आकर अब आपकी फ़ोटोज़ ले चुका है और आपसे कह रहा है कि अब तुम मुझे 20 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हारी इस चीज़ को वायरल कर दूंगा। ना जाने कितनी ही बातें हुआ करती हैं। बच्चों से कहा जाता है कि मैं तुम्हारी ये फ़ोटोज़ मम्मी पापा के पास भेज देंगे और बच्चे इसी बात पर घबरा जाते हैं कि ओ माय गॉड अब क्या होगा अगर मेरे माँ बाप ऐसी पिक्चर्स देख लेंगे जो मैंने कुछ किया भी नहीं है, शायद मेरी गलती भी नहीं थी, मेरी गलती बस इतनी थी मैंने कोई कॉल उठा ली है। और इतने में ही उसे लगता है उसके माँ बाप कभी उसकी बात ही नहीं सुनेंगे और ये फैक्ट तभी आते हैं कि बीच में दरार तभी आती है जब हम अपने बच्चे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते या उसे यकीन दिला देते हैं कि अगर तुमने कोई कांड किया, तुमने कोई गलती की, तुमको यहाँ पर हम पीटेंगे पहले, सुनेंगे बाद में। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो साइबर क्राइम में आपका बच्चा भी हो सकता है, ख्याल रखिएगा, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आजकल जो सबसे ज़्यादा टारगेट पे रहते हैं वो आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 12, 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे होते हैं। तो पहला सेगमेंट में तो भैया यही था कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, वो क्या देख रहे हैं इंटरनेट पर इसका खास ख्याल रखें। बच्चे इंटरनेट पे कुछ भी देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एडल्ट चीज़ें इंटरनेट पे आने लगी हैं, इंस्टाग्राम पर वो क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, हर एक चीज़ पर कोशिश करें कि आप नज़र रखें, ध्यान रखें कि आपका बच्चा जो कंज्यूम कर रहा है वो उसके लिए हेल्दी हो। सिर्फ खाने की बात नहीं है, जो चीज़ें वो सीख रहा है वो भी उसके लिए हेल्दी होनी चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में हो, अदरवाइज साइबर क्राइम तो बैठा ही है, हाथ फैलाकर बाहें खोल कर किया और स्वागत है तुम्हारा। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, इस म्यूजिकल वाले ब्रेक की उस पर आते हैं, तब तक के लिए आप अपना POV, अपना थॉट ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इंटरनेट पर जो ये बच्चे जा रहे हैं ये कितने सेफ है, और जो मैंने कहा वो आपको किस हद तक सही लगता है बताइएगा जरूर। एंजॉय करते रहिए श्रेया और हिमेश रेशमिया की आवाज़ में तेरा मेरा मिलना। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9286098197 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइफ में। मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ। और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम बात कर रहे हैं आपके साइबर क्राइम के बारे में, या फिर कह लो साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अभी तक हमने बच्चों के बारे में बात की कि बच्चे क्यों इतने ज़्यादा टारगेट बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते हैं सही और गलत के बीच में जो एक छोटी सी लाइन होती है ना, उसको नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते हैं। और अगर उन्हें घर पे प्यार नहीं मिलता तो बाहर प्यार ढूंढने लग जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने बाहर अपना पहला कदम किसी की प्यार के लिए निकाला है, बस वहीं से उनका फ़ायदा उठाना शुरू हो जाता है। इवन आपको बता दूँ, एक केस ऐसा भी आ चुका है साइबर एक्सपर्ट्स के पास, जहाँ पर उनकी बच्ची किसी ऑनलाइन फ्रेंड से बात कर रही थी। प्यारी सी बच्ची थी और वो बच्ची जिससे बात कर रही थी वो भी बहुत प्यारी थी। उसकी फ़ोटोज़ बहुत क्यूट क्यूट सी थी, डीपी बहुत प्यारी सी थी, लड़की थी। माँ बाप को लगा दोनों लड़की लड़की हैं, बट ना ना ना ना ना, दोनों लड़की लड़की नहीं थे। वो आदमी जो उस बच्ची से बात कर रहा था, 14 साल की बच्ची से जो अब बात कर रहा था, वो 45 साल का एक आदमी था, ना कि 16 साल की कोई लड़की। अब आप समझ रहे हैं कि आप इंटरनेट पर किसी से जब बात करते हो तो आपको भी नहीं पता है कि वो इंसान जो इस फोटो के पीछे है, जो इस प्रोफाइल के पीछे है, वो कैसा दिखता है, वो कौन है, और न जाने उसने कितनी बातें शेयर कर ली होंगी। सोचिए, एक 14 साल की बच्ची अपने स्कूल के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने घर के बारे में, उसकी पसंद के बारे में, नापसंद के बारे में, हर एक चीज़ को शेयर कर रही होगी, राइट? बस ये समझ कर ना कि उस जिससे वो बात कर रही है वो एक लड़की है, मेरे उम्र की है, हम उम्री है। और पता चलता है कि वो हम उम्री है ही नहीं, वो 45 साल का एक आदमी है जो 14 साल की बच्ची से बात कर रहा है एक लड़की बनकर। स्ट्रेंज, राइट? बिल्कुल भी नहीं, ये स्ट्रेंज नहीं है, ये एक दो किस्से नहीं है, ये ऐसे ही किस्से चलते रहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्क्रीनशॉट्स की। वही स्क्रीनशॉट जो अक्सर हमारे फ़ोन के अंदर भरपूर मात्रा में पड़े रहते हैं, 1000, 2000, 3000, मेरे फ़ोन में खुद भी हैं 1500 के करीब। बट आपको पता है ये स्क्रीनशॉट आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की भी ताकत रखते हैं। जी हाँ, स्क्रीनशॉट्स इस दुनिया की सबसे ख़तरनाक चीज़ है। यूँ तो आप जो भी फ़ोटोज़ लेते हो वो कभी भी प्रॉपरली डिलीट नहीं होती। आप अपने फ़ोन से डिलीट कर देते हो, रिसाइकल बिन से डिलीट कर देते हो, लेकिन डेटा में वो कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर रहती हैं। इसीलिए फ़ोटोज़ बहुत सोच समझ कर लेनी चाहिए। अगर आपने कोई फ़ोटो ली है, आपने सेव किया है, तो यकीन मानो वो कभी भी डिलीट नहीं होगी, वो अपना निशान छोड़ कर रहेगी। हो सकता है जो बहुत जानकार इंसान हो वो डेटा निकाल भी ले। इसीलिए कहती हूँ पुराने फ़ोन्स मत भेजो। आप लोग पुराने फ़ोन्स उन इंसानों को बेच देते हैं जो साइकिल पर आते हैं, फ़ोन नया देते हैं या फिर नए फ़ोन को ले लेते हैं, पुराने फ़ोन के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, और आप कहते हो यार क्या ही हो जाएगा, 1000-2000 मिल जाएंगे, इस फ़ोन के तो 200 रुपये भी नहीं मिलने वाले थे, उसने मेरे को इतना दे दिया, ये काफ़ी है। लेकिन वही फ़ोन आपकी ज़िंदगी तबाह कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका डेटा वहाँ से निकाल लिया जाता है। जी हाँ, गाज़ियाबाद में एक ऐसा ही ग्रोह पकड़ा भी गया था जो यही काम कर रहा था। उसके बाद हज़ारों फ़ोन थे पुराने, और उस पुराने फ़ोन से वो सबकी ईमेल आईडी, सबके पिक्चर्स, सारी चीज़ें निकाल निकाल के लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। प्लस कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जा रहे थे जो लोगों को टारगेट कर रहा था हैक करने के लिए। इसलिए पुराने फ़ोन्स भी मत भेजिए। आप जो स्क्रीनशॉट्स रख रखे हैं वो हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बातें हों जो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। और स्क्रीनशॉट्स बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं, ये बात सच है, क्योंकि इंसान का दिमाग पिक्चर्स पर बहुत ज़्यादा यकीन करता है। और जैसे ही कोई स्क्रीनशॉट ऑनलाइन जाता है, उसको वायरल होने में सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, और आपको भी नहीं पता है कि आपकी ज़िंदगी फिर किस किस के हाथों में होती है। वो आपको देखते हैं, कमेंट करते हैं, चलते फिरते फिर आपको कमेंट मिलते हैं, आप गली से निकल जाओ, लोग आपको देखकर कहने लगेंगे कि अरे ये तो वही थे ना। इसलिए स्क्रीनशॉट भी मत लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का क्या, मैं तो सीधा सा इतना कहूँगी आपसे कि जब आप ऑनलाइन जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आपका कैमरा ऑन है, आप फ़ोन के ज़रिए किसी से जुड़े हुए हो, तो ऐसी कोई हरकत करो ही मत जो लग सकता है कि हाँ इसका इस्तेमाल करके कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ये चीज़ें दिन ब दिन सामने आती जा रही हैं, इसके बाद भी ये चीज़ें लगातार होती जा रही हैं। आज भी लोग
ऑनलाइन जाते हैं, अपने पार्टनर्स पर, अपने दोस्तों पर भरोसा रखते हुए वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, वो कुछ ऐसे मोमेंट शेयर कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, ये सोच कर कि ये इंसान मेरा बहुत भरोसेमंद है। और यही भरोसे वाला आदमी जब इसका भरोसा टूटता है या उसके असली रंग सामने आते हैं या आप किसी कारणवश कह देते हैं कि नहीं अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, तो यही भरोसे वाला इंसान जिसके साथ अभी तक आपने बहुत खूबसूरत लम्हे बिताए थे वो उन्हीं लम्हों को नुमाइश में लगा देता है, लोगों को भेज देता है, ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। हाँ, आपको लग सकता है कि ये सारी बातें सिर्फ एक बड़े बड़े शहरों में होती हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ होती हैं, बट ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके घर के बगल में रह रहे मिश्रा जी के साथ भी हो रहा हो, तिवारी जी के साथ भी हो रहा हो, वर्मा जी के साथ भी हो रहा हो, किसी के साथ भी हो सकता है। कंपनीज फ्रॉड करती हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े लेवल पे फ्रॉड होता है, लेकिन छोटे छोटे लोगों को भी नहीं बख्शा जाता है। बराबर टारगेट पर होते हैं आप क्या फोटो डाल रहे हैं, हर एक चीज़ नोटिस की जाती है, हर एक चीज़। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फ़ोटो डाली है, उसमें आपका आइडेंटिटी शो हो रहा है, आइडेंटिटी में आपका DOV है, तो आपका DOV ले लिया जाता है। आपके पास कोई चीज़ रखी हुई है, आपका लैपटॉप खुला है, आपके लैपटॉप में किसी का ईमेल खुला है, तो वो उस ईमेल को भी हैकर निकाल लेता है। जी हाँ, आपकी एक एक छोटी छोटी फोटोज़, आपके छोटे छोटे लोकेशंस मैटर करते हैं। कई क्राइम बस इसलिए होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप अपने बच्चों के साथ एक हैप्पी हैप्पी फ़ोटो लेकर, एक फैमिली फ़ोटो लेकर पोस्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम पर और लोकेशन डाल देते हैं कि हम इस लोकेशन पर हैं, हम पार्क में हैं, हम यहाँ हैं, वहाँ हैं, और इसी का फ़ायदा उठाकर किडनैपिंग, क्राइम, इन सब को बढ़ावा मिल जाता है। तो एक छोटा सा फ़ोन कितना कुछ कर सकता है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, लेकिन इससे बचना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ इस छोटे से ब्रेक के उस पर। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शो ज्ञानासी लाइफ, अपनी आशुति के साथ। आज बात कर रहे हैं हम साइबर क्राइम और आपकी सिक्योरिटी की, यानी कि आपकी सेफ्टी की। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

हाँ जी, तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। और ऑफ कोर्स आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, ये गोंडा शहर की धड़कन पर। अभी तक आपको हमने जानकारी दी साइबर क्राइम के बारे में, और अब बात करेंगे कि कैसे खुद को बचा कर रखना है। ये भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो भैया अपने फ़ोन के अंदर पासवर्ड लगाना शुरू कर दो। ना ना ना ना, ऐसा हमारे घर में ताने ज़रूर मारे जाते हैं कि पासवर्ड का मतलब है तुम्हारे फ़ोन के अंदर कुछ तो काला है, दया दाल में कुछ काला है। बट ऐसा नहीं होता है। पासवर्ड आपकी सुरक्षा के लिए होता है और आप उसको लगा सकते हैं। स्पेशली अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, प्लीज़ अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाना शुरू कर दो। और इसके अलावा एक और चीज़ याद रखो, आप इंस्टाग्राम का पासवर्ड लगाते हो, आप व्हाट्सएप पर अपने सिक्योरिटी के पासवर्ड्स लगाते हो, आप फेसबुक पे भी लगाते हो, बट पासवर्ड लगाते क्या हो ये मैटर करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं अपना फ़ोन नंबर, अपनी एनिवर्सरी की डेट, अपनी बर्थडे की डेट, अपने कुत्ते की बर्थडे की डेट, ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। एक्चुअल में कभी डालना ही नहीं था। पासवर्ड का मतलब होता है एक ऐसा पासवर्ड आपको याद रखना है जो बहुत टफ हो, जिसमें अक्षर हो, अंक हो और कुछ ऐसे साइंस हो जो आपको पता होने चाहिए। जी हाँ, वो डॉलर वाले, वो ब्रैकेट वाले, वो एट वाला, कोई भी ऐसा साइन ज़रूर हो, स्पेशल साइन हो, उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो, यानी कि 1, 2, 3, 4, कोई भी एक नंबर डालिए, कैपिटल लेटर रखिए, स्मॉल लेटर रखिए, मिक्स कीजिए सबको, और उसके बाद अपना पासवर्ड बताइए। कभी देखा है गूगल को आपको डेट ऑफ बर्थ भेजते हुए या आपका सीधा सीधा नाम भेजते हुए, वो हमेशा पासवर्ड भेजता है तो आपकी समझ से परे होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पासवर्ड का मतलब ही ऐसा होता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन कीजिए प्लीज़। जी हाँ, ये ऑथेंटिक होता है, यानी कि आपको बताता है चीज़ें कौन चला रहा है। आपके इंस्टाग्राम पर भी टू फैक्टर होता है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपके इंस्टाग्राम को लॉग इन कोई करने वाला है, उससे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है, उसको ऑन कीजिए। किसी को भी अपना पासवर्ड ना बताएं, ये चीज़ आपको एटीएम पर अक्सर देखने को मिल जाती है, किसी से भी अपने पिन को साझा ना करें। सुना है लाइन? हाँ, ये वही लाइन होती है। अक्सर साइबर क्राइम वाले, एटीएम वाले भैया लोग, दीदी लोग चिल्लाते रहते हैं कि किसी से भी अपना पासवर्ड साझा ना करें, किसी को भी अपना पिन कोड ना बताएं, और इन चीज़ों का ख्याल रखें। आप क्यों नहीं ख्याल रखते हैं बताइए, बताइए क्यों नहीं आप ख्याल रखते हैं? रखना चाहिए ना। आपको नहीं बताना कौन कितना भरोसेमंद है, कब उसका भरोसा आप पर उठ जाए। आजकल वैसे भी भरोसे बहुत जल्दी उठते हैं, इतना जल्दी कुछ नहीं उठता, इतना जल्दी एक डंबल भी नहीं उठता है जितना जल्दी एक भरोसा उठ जाता है। इसके अलावा किसी भी ऐसी लिंक पर क्लिक ना करें जिसमें आपकी गट फीलिंग आ रही हो कि भैया इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपके दिमाग में पहला थॉट किसी लिंक को लेकर ये है

डिलीवरी नहीं दी है। और वो कहता है अगर सर आपने डिलीवरी नहीं दी है तो प्लीज़ मैं एक OTP भेज रहा हूँ, आप बता दीजिए वो OTP क्या है। और हमें इतना ख्याल आता ही नहीं है कि जो हम OTP बताने जा रहे हैं जब हमने कुछ ऑर्डर किया ही नहीं है, तो ये OTP आ किस चीज़ की रही है। आप OTP बता देते हैं, अगले मिनट आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। उसके बाद आपको समझ में आता है कि वो डिलीवरी वाले भैया डिलीवरी वाले नहीं थे, वो तो निकालने वाले थे, वो तो सब लेके चले जा चुके हैं, डेबिट कर चुके हैं। तो ऐसा ना करें। इसके अलावा आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। जी हाँ, कोई भी आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके अपने फ़ोन का ही सॉफ्टवेयर जो चल रहा है उसका नया अपडेट आ चुका है, तो उसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। अपडेट करने का मतलब होता है कि आप अपनी सिक्योरिटी में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। जितनी चीज़ें सॉफ्टवेयर आपकी अपडेट होते हैं उतना ही इन्हें हैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनीज हर बार मेहनत करती हैं इसके और ज़्यादा बेहतरीन बनाने की। तो ये ना करें। और प्लीज़ अपने मम्मी पापा के फ़ोन में भी जाके देख ले क्या उनके सारे ऐप्स अपडेटेड हैं, और अगर नहीं है तो कर दीजिए, वाईफाई देकर कर दीजिए, इससे पहले कि मम्मी आपको आके सुनाने लग जाए कि मेरा डेटा कहाँ गया पूरा, पी गए तुम, क्योंकि मेरी मम्मी सुना देती हैं ऐसा। तो भैया इन चीज़ों का ख्याल रखें, किसी भी अनचाहे अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। आपको नहीं पता है कि जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है क्या वो सेफ है, और कई बार फ्रेंड रिक्वेस्ट के तहत ही आपके साथ ब्लैकमेलिंग होती है। तो ख्याल रखिए इस चीज़ का। छोटी छोटी बातें काफ़ी होती हैं ये जानने के लिए कि आप साइबर क्राइम से बचेंगे या नहीं। फिलहाल आइए, वक्त हो गया है आपके चैट बॉक्स में चलने का, और चैट बॉक्स में जो मैसेजेस आए हैं उनको देख लेते हैं। महेंद्र जी लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून अतिमाम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं ग्यारहसी लाइफ में। राम भवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून, कुल इन्फॉर्मेशन लिखा है, थैंक यू सो मच एंड गुड आफ्टरनून टू यू। महेंद्र जी लिख रहे हैं, ये बात सही है मैम कि पुराने होने पर मोबाइल को अनजाने को ना बेचें। जी हाँ बिल्कुल, किसी को भी अपना फ़ोन ना दें। हाँ, आप उसे सेफली डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं कंपनी के ज़रिए, अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो उसे कहीं रख दीजिए, बट साइकिल वाले भैया को ना बेचें, कबाड़े में ना बेचें, रद्दी वाले को ना बेचें, नहीं तो आपका फ़ोन आपकी पूरी ज़िंदगी का चिट्ठा खोल के किसी और के सामने ज़रूर रख देगा। इसके अलावा हमारे साथ और भी हमारे लिसनर जुड़ी हैं, जो लिख रहे हैं, डियर यूनिटी मैम आपको मेरा नमस्कार, थैंक यू सो मच, और मुझे आज एक नया नाम मिला, उन्नति से यूनिटी हो चुके हैं हम। मैम आई सरप्राइज टू यू, जी हाँ आप आती हैं और हम सरप्राइज हो जाते हैं। फिलहाल आपका आना हमें बेहद अच्छा लगा, कैसी हैं आप, एंड लिखा है गुड अवेयरनेस एंड गुड प्रेजेंटेशन, गुड प्रोवाइड योर मैम, थैंक यू सो मच, अवेयर जानकारी बहुत ही बढ़िया है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल घड़ी ने वक्त कर दिया है कि अब आपसे वक्त हो चला है विदा लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साइबर क्राइम के लिए अवेयर रहिए, आपके साथ ऑनलाइन क्या हो रहा है इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। आपको छोड़ के जाती हूँ इस गाने के साथ, लेजी लम्हे, क्योंकि आज का मौसम और आज का मंडे हमेशा से लेजी लेजी ही फील होता है। सुनते रहिए।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है।

0: कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी, हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
0: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में, और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
6: बिल्कुल। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप सवर जाता है।
0: बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है, और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है कि आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
6: अरे मतलब बच्चे का भविष्य स्कूल से भी पहले ही शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
6: अच्छा, तो क्या जन्म के बाद?
0: नहीं, उससे भी पहले।
6: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, आखिर कब से?
0: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चे को भी जीवन का मजबूत आधार मिलता है, यानी एक मजबूत शुरुआत होती है।
6: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ के स्वास्थ्य और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, जब हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की जन्म की ओर ले जाता है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
6: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर जोर दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। हाल ही में संपन्न हुए पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर ही नहीं बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
6: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
0: बिल्कुल, और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
7: धन्यवाद आरजे जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
8: नमस्कार श्रोताओं,
7: आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार।
0: सेहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच में माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण होता है?
8: बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है, वह कम बीमार पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल भी कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना ही नहीं रहता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसके शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी बेहतर होगी।
7: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
8: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसका शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वस्थ और पोषण पर ही निर्भर करता है।
6: अच्छा, यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
8: बिल्कुल सही कहा।
0: सेहतिया जी, आपने पोषक तत्वों की बात की। आजकल एक शब्द और सुनने को मिलता है, एनीमिया, यानी कि खून की कमी। आखिर ये समस्या कितनी गंभीर है?
8: यह बहुत गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उन्हें खून की कमी है। वो कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
6: ओ, इसलिए हमेशा उन्हें थकान रहती है।
8: बिल्कुल, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिला में हो तो जोखिम भी और बढ़ जाता है।
0: और किस तरह का जोखिम?
8: समय से पहले परसों हो सकता है, कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है, और परसों के समय अगर ज़्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
6: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोरी महसूस करना होता है।
7: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। एनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं है बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अगर माँ एनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
0: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बच्चा भी चुकाता है।
7: बिल्कुल, इसलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
6: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए। क्या तैयारी उससे पहले से भी जरूरी है?
8: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है और उसे आयरन की कमी नहीं है तो भविष्य में गर्भावस्था भी अधिक सुरक्षित रहती है।
7: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
8: आपने बिल्कुल सही कहा।
0: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध होता है?
8: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फोलिक एसिड, आयोडीन और DHA जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही पोषक तत्व आगे चलकर बच्चे की सीखने, समझने याद रखने और नई चीजें सीखने की क्षमता की मजबूत नींव रखते हैं।
6: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले 1000 दिन। आखिर इसका मतलब क्या है?
7: पहले 1000 दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल तक का होने का समय। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर मानते हैं। इसी दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेजी से विकास होता है। अगर इस पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले तो बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
8: टीकन जी, अब श्रोताओं को ये भी बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
7: सबसे जरूरी चीज है बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक सुरक्षा का कवच होता है। ये उसे कई संक्रमणों से बचाता भी है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या कोई भी दूसरी चीज नहीं देनी चाहिए।
2: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
8: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, फल, अंडा और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
8: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंडा जहाँ परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी मात्रा से करें और धीरे धीरे बच्चों की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाते जाएं।
6: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं है, अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिल सकता है।
7: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडा जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
2: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ और पोषित हो।
8: अक्सर हम बच्चों के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
6: और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे हैं।
7: बिल्कुल सही। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है कि हम ये सोच बदलें। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी।
2: और इसमें परिवार के बाकी सदस्यों की भी बराबर जिम्मेदारी है। पति, सास ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
8: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती हैं।
6: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
8: बिल्कुल सही कहा आपने। जब सही जानकारी और सही व्यवहार साथ आते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
2: श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हमने कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों को अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन फोलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए जरूरी हैं।
6: तो श्रोताओं, हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
7: और मैं सभी बहनों और परिवारों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सेहत को कभी भी नजरअंदाज न करें। समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
8: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, एनम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
2: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही। याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
6: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
8: धन्यवाद। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
7: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं खत्म होता है और जाने से पहले लेंगे हम शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा,
1: देश जीतेगा। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई, वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
5: आरजे अंशिका।
4: जी हाँ, और बिल्कुल आ गए हैं, यानी कि कमर की पेटी को कस करके हम आ गए हैं अपनी अपनी जगहों पर, क्योंकि कल था संडे, यानी बहुत ही मजे वाला संडे। भाई कल का दिन तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और अंशिका और मैंने साथ मिलकर एंजॉय किया है। नहीं बताऊंगी क्यों क्या कैसे, बट साथ में थे और एंजॉय किया हम लोगों ने। लंच भी साथ में कल किया था, क्यों अंशिका?
5: जी मैम,
4: बहुत ही मज़ा आया, और कल का दिन वाकई में मैं नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि कल कुछ बहुत कुछ खास हुआ है। तो चलिए, वो सब मैं अभी मैं आपको बताऊंगी, रिवील करूंगी, लेकिन धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ों को मिला,
5: छोटी छोटी बाइट्स में,
4: हाँ छोटी छोटी बाइट्स में रिवील करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले, आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है, जिसका नाम है
3: सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे
5: अंशिका।
4: अंशिका, तो चलिए फटाफट आज के इस प्यारे से मौसम में आप सभी को एक साथ एक ही फ्रेम में एक साथ बोलेंगे
3: शुभ दोपहरिया।
4: ये शुरू क्या हो गया, वो एक्चुअली मेरे दिमाग में आ गया था कि आज है शुभ सोमवार, तो शुभ सोमवार के दिन हम एक साथ अपने भक्तों के साथ अपने भोले बाबा को समर्पित एक बार जयकारा बोल सकते हैं कि हर हर महादेव, लेकिन एक साथ एक ही फ्रेम में। तो 1, 2, 3 हर हर महादेव। तो भाई हर हर महादेव, क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार, और आपको सभी को पता है कि बाबा दुखरनाथ मंदिर में कितनी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़, और हर जगह पर भोले बाबा के मंदिरों में भीड़ है, मतलब क्या ही कह सकते हैं। तो भाई आज का पूरा दिन भोले बाबा, जैसे लास्ट में रात में हम लोग जब रील देखते हैं, तो उसमें रील में दिखाते हैं कि बच्चे के रूप में भोले बाबा हैं, और वो पार्वती माँ से कह रहे हैं कि पार्वती माँ और गौरा, मुझे जरा एक काढ़ा बना के दो, आज तो मुझे जुकाम होके ही रहेगा। तो भाई सुबह 5 बजे से जल चढ़ना शुरू होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये तो बात सही है। तो चलिए भाई, वो तो है हमारे भोले बाबा, और सोचो अंशिका कि आज पूरी जगह जगह कहाँ कहाँ मंदिर हैं, पूरी सृष्टि में कहीं ना, मतलब कोई ऐसा मंदिर नहीं होता है जो आज के दिन जहाँ जल ना चढ़े।
5: बिल्कुल मैम,
4: है ना। तो मतलब कितना ही ज्यादा जल भोले बाबा पे चढ़ता होगा, और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ऐसा नहीं है किसी एक की, सबकी सुनते हैं भोले बाबा।
5: बिल्कुल, भोले भोले हैं, इसलिए हमारे जो भोले बाबा हैं, हमारे शंकर भगवान, वो सबकी सुनते हैं,
4: सबकी सुनते हैं, लेकिन हमारे में पता नहीं क्यों देर लगा दी है।
5: नहीं, देर नहीं लगाई है, वो वाला फॉर्मूला होता है किसी किसी के केस में, देर आए पर दुरुस्त आए। अब भोले बाबा भी सोचते हैं ना कि अगर मैंने जल्दी जल्दी में कुछ दे दिया, और मान लीजिए कि वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर मेरे भक्त परेशान हो जाएंगे, इसलिए देर से दें मगर सकुशल, अच्छा, सुंदर, समझदार,
4: सभ्य सुशील बंदा,
5: सभ्य सुशील, ऐसा दें। तो वो भोले हैं, भोले हमेशा अच्छा ही सोचते हैं,
4: भोले हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो चलिए फटाफट अब शुरू कर देते हैं आज की पोयम का, जो कि हमारे खाना खजाना से रिलेटेड होती है। तो अंशिका शुरू करें?
5: जी मैम,
4: शुरू कर दें।
5: नहीं तो चलिए भाई करते हैं कुछ बात और लेते हैं थोड़े भोजन का स्वाद, क्योंकि हम करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी प्यारी शुरुआत, जो होगी आपकी अपनी आरजे समता के साथ, जो कि है बहुत ही जबरदस्त और
4: खाने पीने की जो चीजें इसमें हमारी पोयम में आज है, जैसे कहते हैं ना कि जब भूख लगी हो और जलेबी मिल जाए हमारे को, क्या बता दे, मेरा मन कर रहा है कि आज हम ना सबको खिला दे जलेबी।
5: बिल्कुल खिला दीजिए।
4: चलो तो शुरू करें
5: जी।
4: थाली में जब भोजन आए खुशबू उसकी मन को भाए, दाल भात और गरम चपाती भूख हमारी दूर भगाती, चटपटी चाट और गोल गप्पे खाते सब मिलकर गप्पे, मीठा हलवा गरम समोसा, स्वाद का ये सच्चा भरोसा, माँ जब अपने हाथ से खिलाए रूखा सूखा भी अमृत बन जाए, दुनिया के सब व्यंजन फीके ममता के आगे सब फीके, अन्न का आदर सदा करेंगे व्यर्थ इसे हम कभी ना करेंगे, किसान की मेहनत का है ये फल जिससे चलता हमारा आज और कल।
5: वाह जबरदस्त, इसे ही कहते हैं कि जब घर के बड़े कुछ बोलते हैं ना तो वो आशीर्वाद हो जाता है। देखिए मैम ने लास्ट की लाइन में कितना अच्छा जोड़ा कि किसान उसे उगाता है और वही हमारा कल होता है, इसलिए अन्न कभी भी बर्बाद नहीं करना,
4: कभी नहीं करना चाहिए, अपनी उतना अन्न लो थाली में जो ना गिरे नाली में।
5: बिल्कुल, हमेशा उतना ही लीजिए जितने की आपको
4: नीड हो।
5: बिल्कुल, कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाना बिल्कुल क्लीन खाना चाहिए, कभी वेस्ट नहीं।
4: बिल्कुल, चले रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की ओर।
5: जी मैम, आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है लिसनर्स, अगर आप गलती करते हैं तो उस गलती की जिम्मेदारी लेना भी सीखें, क्योंकि गलती करना हो जाता है, कई बार जानबूझकर नहीं होता है, हमेशा अनजाने में ही होता है, लेकिन अगर आप उस गलती की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो ये उससे भी बड़ा गुनाह है।
4: एग्जैक्टली, आप गलती को मानते नहीं है।
5: हाँ, अगर आपने गलती की है तो ये कह देने से कि हाँ मुझसे हो गई है, अनजाने में हो गई है, या आप समझ नहीं पाए आपसे हो गई है, तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन जब हम हमारी गलती की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो वो सिर्फ दूसरे के लिए एक पॉइंट नहीं बनता है कि अरे इन्होंने तो गलती की और ये अपनी गलती मान नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा में भी रह जाता है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपसे गलती हुई। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि उनसे गलती होती है लेकिन वो कह देते हैं नहीं मैंने नहीं किया है, तो ठीक है आप सामने वाले से कह रहे हो कि आपने नहीं किया है, लेकिन आप अपने मन में तो जानते हो ना कि आपने किया है। तो हमेशा अपने मन से कभी नहीं झूठ बोलना चाहिए और अपनी गलती को सर उठाकर स्वीकार करना चाहिए।
4: एग्जैक्टली,
5: क्योंकि वो बहुत हिम्मत वाले होते हैं जो करके उसके बाद में कहते हैं कि हाँ मुझसे हो गया।
4: हाँ, और मान लेना, मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं तो हमारे अंदर का जो एक बोझ होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो अपने मन को इतना बोझिल, जैसे कहते हैं ना, इतना बोझिल ना बनाएं, और इजिली इंसान अगर बोल दे कि हाँ मैंने ये गलती की थी मुझसे हो गई थी, ठीक है, तो उसका जो भुगतान होगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं और मुझे माफ़ कर दीजिए या जो भी है, बट आगे से वो गलती दोबारा नहीं। तो ये भी एक हो जाता है कि हाँ चलो भाई गलती हो गई थी बट आगे से नहीं होगी, तो एक बोझिल जो एक दिल और मन पे होता है ना वो फिर कम होने लगता है। तो इसीलिए अगर आपसे गलती हो गई है तो आप उसे स्वीकारें और आगे न करने की कसम भी खाएं
5: और अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफी भी जरूर मांग लीजिए, क्योंकि याद रखिए माफी मांगने से, गलती मानने से इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं होता।
4: बिल्कुल,
5: और जो अपनी गलती नहीं मानता है उसके लिए भगवान के पास भी माफी नहीं होती, हमेशा याद रखिए।
4: एग्जैक्टली, तो चलिए अब चलते हैं, एक बहुत देर से हम लोगों की बकबक आप लोगों ने सुन ली है, तो खाना खजाना, जैसा कि आज हमारा भूख का दिन है, यानी कि बहुत श्रद्धालुओं ने आज व्रत भी रखा होगा, सोमवार का सावन का व्रत भी रखा होगा, तो चलिए आज हम आपको एक रेसिपी भी बताएंगे, अंशिका भी बताएंगी, मैं बताऊंगी आपको एक व्रत से जुड़ी हुई रेसिपी, एंड अंशिका आप भी व्रत से जुड़ी बताएंगी, तो हम दोनों लोग तो आपको व्रत से जुड़ी हुई चीजें बताएंगे, लेकिन मास्टर शेफ क्या बताएंगी वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी टाइम हो चला है एक ब्यूटीफुल से सॉन्ग का, तो बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून।
6: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है RJ अंशिका। तो चलिए भाई, पहली रेसिपी को जल्दी से लेकर के आते हैं जो कि है व्रत की। और व्रत में तो आपको सभी को पता है कि आज के दिन यानी आज है सोमवार, और सोमवार के दिन हम सभी लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ सात्विक ऐसा खाना चाहिए।
6: बिल्कुल। तो आज मैं आपको एक के साथ एक का पैकेज फ्री बताने वाली हूँ। एक के साथ एक का पैकेज फ्री ये है कि भाई हम सभी को, मतलब जो भी व्रत रखते हैं, मैं भी रखती थी लेकिन इस बार मैंने नहीं रखा, तो उन्हें व्रत वाले आलू बहुत अच्छे लगते हैं। आज व्रत वाले आलू के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप डोसा कैसे बना सकते हैं।
5: ओह माय गॉड, व्रत वाले आलू के साथ में?
6: व्रत वाले आलू के साथ।
5: अच्छा जी,
6: क्या करना है ये बताते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि व्रत वाले आलू को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको 3 से 4 आलू ले लेने हैं। अच्छी तरीके से 3 से 4 बार आप उनको धो लीजिएगा
5: जी।
6: और फिर उन्हें बॉईल करने के लिए गैस पर रख दीजिएगा। 2 विसल में अच्छे से बॉईल हो जाएगा। जब बॉईल हो जाए उसके बाद उसको निकालना है। अच्छे से उनके छिलके निकाल के आप काट लीजिए टुकड़ों में। और इसके बाद में आपको देसी घी में उनको फ्राई करना है, क्योंकि व्रत की बात है। हाँ, अगर देसी घी के अलावा आपके पास मूंगफली का तेल है तो आप उसमें बना सकते हैं। उसके अलावा कोई और ऑयल यूज मत करिएगा। और सबसे बेस्ट तो देसी घी होता है मैम, सबसे अच्छा देसी घी में ही टेस्ट आता है। तो 2 चम्मच भर के आपको देसी घी ले लेना है। उसके बाद में जीरा, हरी मिर्च ले लीजिएगा, सेंधा नमक अगर आप व्रत में खाते हैं तो, अदरवाइज मत डालिएगा नमक, क्योंकि बहुत लोग सोमवार में नमक नहीं भी खाते हैं।
5: अब सेंधा तो खाया जा सकता है।
6: हाँ मैम, वो तो खाया जाता है,
5: बहुत लोग मीठा भी रखते हैं व्रत।
6: हाँ, तो अब बात आती है कि अब आपको क्या करना है। तो अब आपको ले लेना है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि धनिया ले लीजिएगा खड़ी, और उसको हल्का सा रोस्ट करके तावे पे और उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। और यही आपको लाल मिर्चे के साथ करना है, जो खड़ा वाला लाल मिर्च होता है कि उसको हल्का सा रोस्ट करके और फिर उसको पीस लीजिए। ये आपका मसाला बन जाता है व्रत में खाने वाला
5: जी।
6: ये ले लिया आपने। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो काली मिर्च पाउडर ले सकते हैं थोड़ा सा, अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हरा धनिया बहुत सारा लीजिएगा, क्योंकि हरे धनिया का इसमें बहुत काम होता है। अब आपको क्या करना है कि आपको कढ़ाई लेनी है, घी गरम करना है और आलू को उसमें डाल देना है। आलू को डाल करके पहले थोड़ी देर चलाइएगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अब इसमें आपको डाल देनी है हरी मिर्च, साबुत जीरा, और साबुत जीरे के साथ साथ सेंधा नमक, और सेंधा नमक के साथ जो मैंने आपको बताया था ना धनिया और मिर्ची का पाउडर, वो डाल दीजिए। डाल के अच्छे से कुछ देर तक उसको आप ऊपर नीचे मिक्स करके चलाइएगा। चलाने के बाद जब पूरा वो एक सार हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से मिल गए हैं आलू में, तब आपको उसको निकाल लेना है। ये आपकी सब्जी जो है वो तैयार हो गई
5: आलू की।
6: लेकिन अब इसको डोसा कैसे बनाना है? अब इसको डोसा ऐसे बनाना है कि आप इसको पहले एकदम अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए
5: आलू के, जो सब्जी बनाई
6: है। हाँ, जो सब्जी बनाई है। बहुत टाइम नहीं, मतलब जैसे हल्का सा गर्म रहे, ज्यादा गर्म ना रहे। जब ये हल्की गर्म रहेगी तभी आपको हाथ की सहायता से, पहले तो आप कंटेनर में किसी अच्छे से निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपको हाथों से इसको पूरा मैश करके पूरा बना लेना है अच्छे से। जब ये पूरा मैश हो जाएगा तो आप इसको भरते जैसा आप बना लीजिएगा। बन गया, अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए
5: आलू की जो सब्जी बनाई,
6: हाँ जो सब्जी बनाई थी उसका आपने मैश किया तो वो अच्छे से एक भरता बन के तैयार हो गया
5: जी।
6: अब आपको उसको रख देना है क्योंकि इसको थोड़ी देर हम रेस्ट के लिए रखें,
5: ठीक है,
6: ताकि आलू सेट हो जाए,
5: ठीक है,
6: बाद में जब हम उसको फिल करें तो वो निकले ना
5: जी।
6: अब आपने इसको सेट करने के लिए रख दिया।
5: हाँ।
6: अब आपको क्या करना है कि अब आपको ले लेना है कुटू का आटा।

0: लौकी रखी हुई है, पकी हुई लौकी इन द सेंस की जैसे उबली हुई है, अगर आपके पास बॉइल रखी हुई है तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। ये प्रोटीन मिलेगा जब आप खाएंगे तो अच्छा लगता है। व्रत में हम कहते हैं ना कुछ ऐसा खाएं कि सही लगे थोड़ा, तो अगर बॉइल आपके पास रखे हुए हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है कि आपने जो आलू बॉइल करने के लिए रखे थे, मैं पहले बताना आपको भूल गई थी, उसमें से थोड़े से आलू, एक आलू आपको पहले अलग कर लेना,
1: अलग कर लेना
0: है। अलग इसलिए कर लेना है क्योंकि कुटू के आटे में क्या होता है ना कि बाइंडिंग नहीं होती, आपको उसको बाइंडिंग के लिए कुछ डालना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: तो आप आलू जो एक आपने बॉइल में से बचा के रखा होगा वो आपको इसमें डाल देना है। आपने डाल दिया, अब ऊपर से थोड़ा सा घी डालना है, आधा चम्मच घी डाल दीजिए उसमें। घी डाल दिया आपने, अब आपको क्या करना है कि आपको इसका पूरा घोल बना लेना है, जैसे हम चिल्ला बनाते हैं ना, चिल्ले का घोल जैसे बनाते हैं, वैसे आपको इसका घोल बना लेना है।
1: अच्छा,
0: जो कि इसमें देसी घी पड़ा हुआ है, इसलिए आपको ये टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं है कि ये चिपकेगा,
1: चिपकेगा
0: बिल्कुल नहीं चिपकेगा, बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि आपने इसमें पहले से घी डाला हुआ है। अब आपका ये घोल जब बनके तैयार हो जाएगा तो आप घड़ी देख कर इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि खमीर उठना चाहिए, थोड़ा अच्छा बनना चाहिए, सॉफ्ट, लेकिन वैसे तो हम खमीर उठाने के लिए सोडा डालते हैं खाने वाला,
1: लेकिन व्रत है तो डाल नहीं सकते, व्रत है तो इनो डाल नहीं सकते,
0: इनो डाल नहीं सकते। अगर आप 10 मिनट उसको रेस्ट के लिए रख देंगे तो वो खुद ब खुद उसमें हो जाएगा, फूल जाएगा। अब आपने रख दिया, अब क्या करना है आपको कि 10 मिनट के बाद आप एक पैन ले लीजिए और पैन में तेल लगा करके उसको थोड़ा सा हीट कर लीजिए, 5 मिनट हीट कर लीजिए, तेल लगा के नहीं, घी लगा के, घी लगा के 5 मिनट हीट कर लीजिए। 5 मिनट जब आपने हीट कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे हम डोसे का बैटर डालते हैं, जैसे आप चिल्ला बनाते हैं नॉर्मली, वैसे ही वो बैटर आपको कुटू के आटे वाला उस पे डालना है, और जो आपके पास भरता रखा हुआ था, मतलब जो आपने बनाया हुआ था, वो आपको उसमें बीच बीच में फिल करना है, जैसे हम डोसा बनाते वक्त फिल करते हैं। आपने फिल किया, फिर इधर से उसको आपको
1: जैसे
0: घी लगा कर
1: डोसे की तरीके से पैक करना है,
0: पैक करना है, और फिर घी लगा करके उधर से आप हल्का हल्का सेक लीजिए और आगे से सेक लीजिए,
1: तो वो चिपकेगा नहीं,
0: चिपकेगा नहीं।
1: अगर नॉनस्टिक पैन है तो तब तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉनस्टिक नहीं है तो मैं एक अच्छा, हाँ, प्याज नहीं खाना है इसमें, ओके ठीक है।
0: तो नॉनस्टिक पैन है तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर जैसे लोहे का है आपके पास या कुछ भी ऐसा,
1: तो मैं उसमें एक ट्रिक बताती हूँ। आप हल्का सा एक हाथ में पानी लें, मतलब एक एक जैसे कहते हैं एक मुट्ठी पानी, और तवे पर छिड़क करके, और जैसे उसमें से बुलबुले जब उठने लगे और धुआं उठने लगे, एक साफ कपड़े से पूरा जो आपका तवा है ना उसको पोंछ लें, और उसके बाद एक बार फिर घी लगा करके आपने ये बैटर डालना है, तो वो कभी नहीं चिपकेगा डोसा।
0: वाह,
1: क्योंकि हम लोग बनाते हैं ना घर में, तो अब जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मल डेज में बनाते हैं तो क्या होता है, जब व्रत नहीं होता है तो आधा प्याज काट के पहले रख लेते हैं, तो पहले पानी से छिनकार किया, ठीक से उसको पोंछ लिया साफ कपड़े से तवे को, और जो आधा प्याज होता है वो प्याज पूरे तवे पे हम लोगों ने उसको रगड़ दिया। ये एक टेक्निक है कि आपका डोसा कभी नहीं चिपकेगा, अगर आपने मतलब व्रत के बिना अगर आप बना रहे हैं तो आप ये टेक्निक जरूर किया करिए। आधा प्याज, जैसे प्याज पूरा होता है ना, उसका उसका छिलका नहीं उतारना है, छिलके सही थी आधा काट दो बस, और उसको पकड़ के पूरे तवे पे उसको घुमाते रहो, जब जब आप डोसा डालो तब तक उसको उसमें आपने एक बारी चला देना है, जिससे क्या होगा कि आपका डोसा चिपकेगा नहीं।
0: वाह
1: ठीक है,
0: मुझे तो ये ट्रिक पता ही नहीं थी, आज तो मुझे मैम ने न्यू ट्रिक बताया।
1: हाँ, ये होता है, हम लोग बनाते हैं ना घर पे तो हम लोग हमेशा से ये टेक्निक जरूर करते हैं।
0: अब मेरा डोसा चिपकेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली जब मैं बनाती हूँ ना तो चिपकने की वजह से खराब हो जाता है, मतलब एकाध तो हो ही जाता है। तो ये अच्छी टेक्निक थी। अगर आपका फास्ट नहीं है तो आप ये वाली यूज करिएगा, और अगर फास्ट है तो जो मैम ने अभी पानी वाली बताई वो यूज करिएगा।
1: हाँ।
0: अब आते हैं कि आपने इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत ध्यान से उसको लगा करके, ऑयल या घी जो भी है, मूंगफली का तेल या घी, उसको लगा के अच्छे से आपको इसको सेक लेना है, मतलब दोनों तरफ से वो अच्छे से ब्राउन हो जाना चाहिए, और क्रिस्पी भी होगा, जब ब्राउन होगा तभी क्रिस्पी होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस हल्का हल्का सा सेक लिया और निकाल दिया, तो वो अंदर से कच्चा रह जाता है, जब आप खाएंगे तो आपको फील होगा। कुटू का आटा जल्दी पकता नहीं है, इसलिए उसे कुछ टाइम लगता है पकने में, तो थोड़ा टाइम दीजिएगा तवे पे, 5 मिनट दीजिएगा। अब ये अच्छे से आपका पक के रेडी हो गया, अब आपका डोसा तैयार हो गया। लेकिन डोसा खाली मजा नहीं आएगा ना, डोसे के साथ कुछ और भी होना चाहिए,
1: आलू की सब्जी या लौकी की सब्जी
0: या कुछ और।
1: हाँ।
0: तो अब आपको क्या करना है ये भी बताती हूँ मैं आपको, कि अगर आपके घर पे लौकी रखी हुई है, अगर है तो, अदरवाइज नहीं है तो बढ़िया से केवल आलू से, मैं एक चीज बताती हूँ आपको, कि आपने सब्जी मतलब क्या करना है आपको कि एक आलू या दो आलू अगर आपके पास कच्चे पड़े हुए हैं तो कच्चे ही ले लीजिए।

0: उसमें जो मैंने धनिया और मिर्ची का आपको मसाला बताया था वो डाल दीजिए। और पहले आलू आपको क्या करना है कि पहले घी डालना है, फिर घी में टमाटर डालना है, अच्छे बड़े बड़े दो टमाटर डालिएगा पके हुए, वो डालने हैं। जब टमाटर पूरा पक जाए उसके बाद उसमें धनिया मिर्चा और नमक डाल दीजिए, जो मसाले थे वो धनिया मिर्चा मसाले नमक डाल दिया और उसके बाद वो आलू डाल दिया, अच्छे से चला दिया और एक विसल आपने लगा दी। अगर आपको मतलब रस्से वाली ग्रेवी वाली बनानी है तो, अदरवाइज अगर ग्रेवी वाली नहीं बनानी है आपको ऐसे बनानी है सूखी सब्जी तो आप सूखी बना सकते हैं, लेकिन मेरी यकीन मानिए अगर आप विसल देकर के रस्से वाली बनाएंगे ना तो वो डोसे के साथ बहुत अच्छी लगेगी, बिल्कुल सांभर की तरीके से लगेगा कि हाँ हम वो खा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इसको विसल दे करके एक बना लेना है। ये आपकी सब्जी रेडी हो गई, आपका डोसा रेडी हो गया, लेकिन हमने अभी तक चटनी नहीं
1: बनाई।
0: चटनी बनानी है, चटनी बनानी है, चलिए चटनी बनाते हैं।
1: किसकी?
0: मूंगफली की मैम।
1: वो तो मेरा काम होता है चटनी बनाना,
0: तो आप बता दीजिए।
1: नहीं,
0: आप बना दीजिए।
1: चटनी हम दूसरे टाइप की बनाते हैं लोगों।
0: अच्छा अच्छा, ओ, ओ, मैं समझ गई, मैं समझ गई
1: जी। बताएं अंशिका, मैं सोच रही हूँ कि चटनी हम लोग एक ब्रेक के बाद बताएं।
0: ओके मैम,
1: ठीक है, क्योंकि फिर हमारे लिसनर्स को भी लगेगा कि हाँ भाई चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए चटनी हम बनाएंगे, मतलब चटनी बनाएंगे खाने वाली
0: बनाएंगे। और मूंगफली की बनाएंगे किसी और
1: व्यक्ति विशेष की नहीं बनाएंगे,
0: स्थान की तो नहीं बन सकती, किसी व्यक्ति वस्तु की नहीं बनाएंगे।
1: ठीक है, तो आइए सुनते हैं इस पर से नगमे को, फिर हम आएंगे एक म्यूजिकल शॉर्ट ब्रेक के

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में है
7: RJ अंशिका
6: जी। तो मुझे लगा थोड़ा देर से आंसर आया, तो मुझे लगा कि अंशिका कुछ खाने पीने तो नहीं चली गई मुझे बिना बताए।
7: नहीं ऐसा नहीं होगा,
6: ऐसा नहीं होता है ना।
7: मैं थोड़ा चटनी में खो गई थी।
6: ये चटनी लोगों की बनाने के चक्कर में ना, ये पता नहीं कहाँ कहाँ खो जाती है। तो आइए बिना देर लगाए हुए हम बनाते हैं चटनी, वो भी मूंगफली की।
7: लोगों की नहीं, क्योंकि लोगों की चटनी कोई और है जो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत स्वीट बनाता है। आपने मीठी चटनी खाई है कभी?
6: हाँ,
7: तो वैसी मीठी इंसान की भी बन सकती।
6: इरशाद हथियागढ़ गोंडा, आपने गाना क्यों लिखा है इरशाद जी, ये मुझे पहले जवाब दें आप चैट बॉक्स में आकर के कि आपने गाना क्यों लिखा है। और मोहम्मद चांद हथियागढ़ से, चांद बाबू गोपाल वर्मा हथियागढ़, कभी कभी बेबसी ने मेरा, क्यों लिखा है आप लोगों ने गाने, आपने गाने क्यों लिखे हैं, मुझे इसका जवाब दीजिए चैट बॉक्स में आकर के कि आप लोगों ने सॉन्ग्स क्यों लिखा है आकर के। हेलो अनुष्का, कैसी हो?
7: हेलो अनुष्का जी, गुड आफ्टरनून। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी चटनी की तरफ, क्योंकि अगर हम बात करते रहेंगे तो चटनी नहीं बन पाएगी। तो चटनी बनाने के लिए आपको लेना है 1 कप मूंगफली दाना, उसके बाद में हरी मिर्च ले लीजिएगा 2 से 3, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लीजिएगा, और उसके बाद नमक लेना है आपको, लेकिन सेंधा नमक लेना है। फिर ले लेना है नींबू का रस 1 चम्मच, और उसके बाद पानी। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब उसके बाद में आपको क्या लेना है ये मैं बता देती हूँ। आप मूंगफली का तेल लीजिएगा एक छोटा चम्मच, और हाँ इसमें आप सरसों या राई नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आपने इसको व्रत के लिए रखा
6: है
7: तो वो नहीं डालना है आपको। इसके बाद में आपको ले लेनी है सूखी लाल मिर्च 1। ठीक है, अब बनाते हैं चटनी। अब आपको क्या करना है कि आपको मूंगफली का दाना, हरी मिर्च, अदरक और उसके साथ नमक और नींबू का रस डालना है, और डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। 2 से 3 बार आप इसे ग्राइंड कर लीजिएगा
6: जी।
7: ग्राइंड कर लिया आपने 2 से 3 बार, इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, मूंगफली के दाने कड़े होते हैं, तो कई बार हाँ। एक बार वो करते हैं तो रह जाते हैं। 2 से 3 बार किया आपने, अब ये हो गया। अब इसको आपको कटोरी में निकाल लेना है, अलग कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक पैन लेना है, उसमें मूंगफली का तेल गरम करना है। जब वो गरम हो जाए अच्छे से, उसके बाद आपको उसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देनी है। सूखी लाल मिर्च जब हल्की सी, जैसे तेल गरम होता है ना, तो उसमें पता इसमें लाने लगती है, तो हमें पता चल जाता है कि मिर्चा जो है वो हो गया है
6: जी।
7: तो जब मिर्चा हो जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको वही जो आपने बैटर पीसा है मूंगफली के दाने का, वो आपको लेना है और उस तेल में और मिर्ची वाले तड़के में उसको डाल देना है अच्छे से
6: जी।
7: अच्छे से मिला दीजिएगा उसके बाद, और फिर नमक आपको लास्ट में डालना है। लास्ट में नमक डाल दीजिएगा उसमें और बस गर्मा गर्म तड़के के साथ अच्छी सी चटनी तैयार है, डोसा तैयार है और डोसे के साथ आपकी व्रत वाली सब्जी जो है वो तैयार है। तो बढ़िया सा एक पैकेज पूरा रेडी है, खाएं इंजॉय करें। और जो लोग कहते हैं ना कि अरे यार फास्ट है क्या खाएं कुछ नहीं मिलता, उनसे कहिए कि फास्ट है तो थोड़ी मेहनत करिए, किचन में जाइए बनाइए, क्योंकि अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा अच्छा खाने।
6: लेकिन मुझे एक समझ में बात नहीं आई कि मतलब एक दिन व्रत में हम डोसा भी खा सकते हैं, इडली भी खा सकते हैं, क्यों? अब बाकी किस चीज का व्रत? मुझे इसका इस बात का जवाब दो। मतलब एक दिन हम लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं?
7: नहीं कर सकते हैं।
6: फिर एक दिन कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग कि उस दिन डोसा भी खाना है? और एक ये है जो अच्छी अच्छी रेसिपीज बताती भी हैं, डोसा चाउमीन इडली सब व्रत के ही दिन। एक दिन इंसान अपने मन वचन क्रम से नहीं रख व्रत नहीं रह सकता है?
7: नहीं नहीं बिल्कुल रह सकता है।
6: फिर रह सकता है, बिल्कुल
7: रह सकता है। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं ना जिनका मन नहीं मानता, मन चंचल बच्चे जैसा मासूम।
6: लेकिन गलत बात है ये, अगर व्रत रखना है तो अपने मन को कंट्रोल, सबसे पहला व्रत तो यही होना चाहिए कि अपने मन इंद्रियों पर काबू, अपने मन इंद्रियों पर काबू। ये क्या होता है, डोसा भी बना रहे हैं वो भी खा रहे हैं सब खाते जा रहे हैं?
7: नहीं सब नहीं खाना है, मतलब जैसे बहुत लोग फास्ट रहते हैं तो उनके मन में होता है दिन में एक बार खाते हैं कुछ लोग, मतलब मैं जब रखती हूँ फास्ट तो मैं दिन में एक बार मतलब
6: खाती। तो जरूरी है कि उसमें तुम डोसा ही खाओ?
7: अच्छा कुछ भी खा सकते हैं,
6: फिर
7: आलू मूंगफली दाना या जो भी।
6: हाँ फिर
7: डोसा नहीं खाइए?
6: हाँ डोसा मत खाइएगा।
7: और
6: ऐसा नहीं है कि अब आप बना लिए तो आप खाएंगे ही, बट एक मैंने यूं ही एक प्रश्न किया कि अगर हम व्रत हैं तो फिर व्रत किस चीज का, जब हमारा सारा टाइम मुंह ही चलता रहे तो?
7: नहीं नहीं सारा टाइम मुंह नहीं चलाना है, मुंह को बहुत देख समझ के।
6: डर गई है समझ देखा ये, मतलब मैंने अब ये इसने सही चीज भी बताई है ना, तब भी कह रही है आप लोगों को कि मत खाइएगा। बनाइए खाइए और इसको भी खिलाइए।
7: हाँ मुझे भी खिलाइए।
6: इसका इसके इसके बताने का रीजन सिर्फ यही होता है कि जो बनाइए तो मुझे भी खिलाइए।
7: अगर बना बनाया सोचिए, आप सोचिए मन में सोचिए ये बात कि अगर आप फास्ट रख रहे हैं, फास्ट हैं आप।
6: अंशिका मैं फास्ट तो छोड़ो, मैं वैसे भी चाहती हूँ कि कोई मुझे बना बना करके दे दे।
7: हाँ वही मैं मन की बात, देखिए कितना अच्छा कनेक्शन है हमारा।
6: सुबह दोपहर शाम को कोई बना के थाली परोस के दे देना, ओ माय गॉड मजा ही आ जाए।
7: सारा स्वर्ग धरती पे हमारे घर में
6: अपने हाथ से बना करके खाने में उतना मजा नहीं है जो कोई बना के थाली बना के दे दे।
7: लेकिन ऐसा सिर्फ हम सोच सकते हैं। वो क्या पहले एक लाइन कही जाती थी, मतलब मेरी दादी बहुत कहती थी, मुझे याद याद आ गया, मेरी दादी कहती थी मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखा करो।
6: हाँ।
7: तो वैसा कुछ हमारे साथ भी है कि हम ऐसा सिर्फ सोच सकते हैं लिसनर्स कि हमें बनी बनाई तीनों टाइम थाली मिले सुबह दोपहर शाम, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं ना मैम। घर जाइए बनाइए फिर खाइए, और अगर गलती से नहीं मतलब मोस्ट द टाइम अगर मम्मी ने बना दिया है, अंशिका वापस घर जाना है, अगर मम्मी ने बना दिया है तो निकाल के खुद से ही खाना पड़ता है।
6: मैं वही तो बात है ना, और हम लोगों को लगता है ना कि जब हम थके हारे जाएं तो वो थाली बिल्कुल परोसी हुई मिले, सैलेड हो बढ़िया सी, रायता हो, सब चीजें हो,
7: सब्जी,
6: माय गॉड। लेकिन ऐसा नसीब में कहां
7: होता नहीं।
6: चलो अब आगे बढ़े,
7: समझौता
6: आगे बढ़ते हैं।
7: तो हमने अब तक आपको खाने के लिए बता दिया, लेकिन खाना बनाने में कुछ वो भी तो आती है प्रॉब्लम्स, उनसे भी तो हमारी
6: निपटा जा सकता है,
7: निपटना है। जैसे कहते हैं ना हमने तुमको निपटा दिया।
6: हाँ।
7: तो आज कुछ चीजों को निपटा, आज क्या हो रहा है, चटनी बना दिया,
6: निपटा दिया।
7: ये आज कुछ
6: लग रहा है शाम तक हम किसी को निपटाने वाले हैं।
7: तंत्र ठीक नहीं है आज, मैं भी देखूं कोई है मेरे लिस्ट में भी जिसे मुझे निपटाना है। वैसे आप अपने वाले को जरूर निपटाएं मैम।
6: जी बिल्कुल जरूरी है,
7: जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी होती है खता जिनकी कोई माफी नहीं होती, उनके लिए सिर्फ साफी होती है, मतलब
6: साफी होती
7: साफ
6: है।
7: आज क्या हो रहा है,
6: बहुत कुछ हो रहा है। चलिए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं।
7: तो आज ये हो रहा है कि आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बता देती हूँ, मतलब खाने के नाम से जीभ भी स्लिप होने लगी, ये देखिए आप जुड़ाओ। तो चलिए बताते हैं, नो मजाक नो मस्ती, सीरियस होके बताते हैं। तो सीरियसली बताना ये है कि कई बार होता है कि जैसे कहते हैं ना सब्जी में आप सब्जी बना रहे हैं तो कई बार नमक कम हो जाता है, मतलब नहीं सॉरी ज़्यादा हो जाता है। तो हम कहते हैं अब क्या किया जाए, अब कैसे करें। तो अगर आपसे भी ये गलती हो जाती है कई बार, तो आप उबले हुए आलू ले लीजिएगा और 2 से 3 उसके टुकड़े करके आप कोई भी सब्जी आप बना रहे हैं, अगर उसमें नमक बहुत ज्यादा तेज हो गया है तो आप बॉयल आलू अगर डाल देंगे ना 2-3 टुकड़े, तो वो पूरे नमक को सोप कर लेता है
6: जी।
7: और फिर आपकी सब्जी अच्छी हो जाती है, उसमें नमक कम हो जाता है। दूसरा आता है कि कई बार होता है कि जैसे फ्रिज हम रखते हैं ना, तो फ्रिज में जैसे अजीब सी बदबू आने लगती है, हम क्लीन करते हैं लेकिन फिर भी, तो वो क्यों होता है ये भी मैं
6: पानी तक में चली जाती है स्मेल। अगर आपने अगर आपने भूल से लहसुन कटी हुई रख दी, आम कटा हुआ रख दिया, अगर हे भगवान
7: पूरा आम,
6: ऐसी मतलब स्मेल आती है पानी, फिर वो पानी आप पी नहीं सकते हैं
7: बिल्कुल। तो उसके लिए करना है एक काम जो आपको देगा आराम, और वो काम ये है कि घर में बेकिंग सोडा सभी के पास होता है, तो बेकिंग सोडा एक छोटी सी कटोरी में 2 चम्मच बस करके और आप अपने फ्रिज में रख दीजिए, उससे आपकी फ्रिज में कोई भी स्मेल नहीं आएगी
6: जी।
7: आप जो भी चीज रखेंगे उसकी स्मेल नहीं आएगी और आपका फ्रिज बिल्कुल ही साफ सुथरा और क्या कहते हैं बदबू से मुक्त रहेगा।
6: ओके ओके ओके,
7: आज मुक्त बताइए, मुक्त भी आ गया, मतलब पहले चटनी बनाओ फिर निपटा दो
6: और मुक्त,
7: अब मुक्त आ गया। आज कुछ
6: साइट अच्छी नहीं लग रही
7: है,
6: लेकिन चलिए हम आपके डर के और हम आपके खौफ को खत्म करते हुए आइए यहाँ लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद बस इंतजार आपका खत्म हो रहा है, क्योंकि अब जिसकी रेसिपी हम सुनने वाले हैं वो है हमारी प्यारी मास्टर शेफ। तो चलिए बस हम यू गए यू आए और बिल्कुल ये चटनी और
7: निपटा दिया
6: और ये जो
7: मुक्त
6: मुक्त इन सब चीजों को दिमाग से हटा करके आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, हमारी स्टूडियो में आ चुकी है हमारी मास्टर शेफ यानी कि रंजना मैम। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारी मास्टर शेफ के पास। सबसे पहले हम उनका वेलकम कर लेते हैं। वेलकम मैम, कैसी हैं आप?
5: नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आशीर्वाद।
4: तो आज क्या खिलाने वाली है मैम?
5: देखिए, यूं तो गट्टे की सब्जी सभी घर बनती है।
4: जी जी,
5: लेकिन ये बहुत समय से बनती आई थी, सभी लोग बनाते आए, तो उसमें हमने कुछ थोड़ा सा चेंज करके बनाया।
4: ओ, वाह।
5: तो सच में बहुत अच्छी सब्जी बनी।
4: जी मैम,
5: मैंने खुद बनाई है, तो आप लोग जो है उसको सामान लिख लीजिए
4: जी,
5: और एक बार जरूर बनाइएगा।
4: बिल्कुल मैम।
5: तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 200 ग्राम आप पनीर ले लेंगी
4: जी,
5: और उसको खूब अच्छे से मैश कर लेंगी। अब मैश करने के लिए चाहे आप हाथ से फोड़ लीजिए, चाहे कद्दूकस कर ले, खूब चिकना चिकना, और उसमें हल्का सा नमक मिला के गोले बना के रख लीजिए।
4: जी मैम।
5: साइज बहुत बड़ा मत रखिएगा, छोटा ही रखिएगा, मीडियम से भी छोटा उसको रख लीजिएगा। अब आप क्या करेंगी, एक कप बेसन ले लेंगी, उस बेसन में अंदाज से नमक डालेंगी, और सभी बेसन बेसिक मसाले जैसे थोड़ा सा हल्दी है, धनिया है, सब्जी मसाला है, चाट मसाला है, ये सब चीज़ आप उसमें डाल देंगी, पिसा मिर्चा डाल देंगी, और थोड़ा सा तेल 1 टेबल स्पून आप उसमें बेसन में डाल देंगी, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप एक अच्छा सा डो बना लेंगी। डो मतलब जैसे आप आटा सान के एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, उसको हम डो कहते हैं, उसको आप एक जगह सान करके और रख लेंगी।
4: जी मैम।
5: अब आप क्या करेंगी कि उसकी छोट 10 मिनट आप रेस्ट करने देंगी। कोई भी चीज आप बनाइए तो आप 10 से 15 मिनट रेस्ट करने दें, ताकि वो होता है उसमें मसाले अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और जो अगर फूलना उलना है उसको आटे को, वो फूल जाएगा।
4: जी।
5: अब आप उसको 10 मिनट बाद आप छोटी छोटी जैसे पानी के बताशे की लोई होती वैसे आप तोड़ेंगी, वैसे छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे, मतलब बताशे से थोड़ी बड़ी रखेंगी।
4: जी मैम।
5: अब आप वो लोई तोड़ के छोटी छोटी पूड़ियां बना लीजिएगा। अब उस जो तैयार आपने पूड़ी बनाई है उसके अंदर आप क्या करेंगी, ये जो आपने पनीर के गोले बनाए हैं उसमें बंद कर देंगी, थोड़ा हाथ में पानी और तेल लेकर के उसको चिकना करेंगी, कहीं से चिटका ना रहे।
4: जी मैम।
5: अब सबको क्या करेंगी, आप जब सब बन जाए तब एक पैन में पानी लेंगी, और जब पानी खौलने लग जाए तब आप उसमें ये जो तैयार आपके बॉल हैं इसको डाल करके आप 5 मिनट उबाल लेंगी।
4: जी मैम।
5: उबालने के बाद इसको आप निकाल करके अलग रख लेंगी।
4: जी।
5: अब आप इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगी। क्योंकि गट्टे की सब्जी अगर मसालेदार नहीं है तो उसमें स्वाद नहीं आता।
4: हाँ, ग्रेवी वाली होती है तो ज्यादा अच्छी लगती है।
5: अच्छी लगती है जी। तब आप क्या करेंगी, अब एक कढ़ाई में 1.5 टेबल स्पून तेल डालेंगी। तेल आपकी इच्छा अनुसार है, रिफाइंड डाले, सरसों का डाले, जिसका भी डालिए, ज्यादा नहीं डालिए, कम ही डालिए
4: जी मैम।
5: अब उसमें क्या करेंगी, आप जो है थोड़ा सा जीरा डाल देंगी, एक मध्यम आकार का प्याज डाल देंगी काट करके, जैसे साधारण टुकड़ों में हम लोग काटते हैं वैसे ही काट के डाल देंगे, एक टुकड़ा अदरक का डाल देंगी, लहसुन की 8-10 कलियां डाल देंगी, खड़ा लाल मिर्च, लाल मिर्च आपके स्वाद के अनुसार है 2 या 3 या 5 जो भी आप चाहे वो डाल देंगी, 2 टमाटर अच्छे लेंगी बीच के साइज के लेंगी, छोटे छोटे नहीं लेंगी, मध्यम आकार के लेंगी, उसको आप काट देंगी और क्या करेंगी, उसमें नमक डाल देंगी और उसको ढक के कम से कम 10 मिनट तक एकदम धीमी आंच पर पकाएंगी। उससे क्या होगा, आपका टमाटर भी गल जाएगा, प्याज लहसुन भी गल जाएगा। अब उसको ठंडा करेंगी, ठंडा करके इधर एक किनारे रख देंगी। अब इस जो आपने ये प्याज लहसुन का पेड़ वो बनाया है मसाला, इसको आप मिक्सी में डाल देंगे। मिक्सी में डाल के आप 2 आइस क्यूब इसमें डाल देंगे, क्योंकि हम अलग से, हाँ बिल्कुल, उससे क्या होता है कि उतना ही पानी लगता है जितनी हमें जरूरत है। और हाँ बहुत अच्छा, और मसाले का कलर भी बहुत,
4: ये तो अच्छी ट्रिक बताई आपने मैम।
5: हाँ, 2 आइस क्यूब आप डाल देंगी और मिक्सी को आप चला,
4: वरना पानी कई बार मसाले में ज्यादा
5: हो जाता है। हाँ। फिर सुखाने में बहुत समय लगता है। इसमें आप बस जरा सा कर देंगी, उसके बाद आप चर्न करके धीरे से चलाइए, फिर बंद कर दीजिए, फिर धीरा चलाइए, फिर बंद कर दीजिए, ऐसे करके आप महीन पीस लेंगी। अब इसको अलग निकाल लेंगी, आइस क्यूब पूरा घुलता नहीं है, बाकी बचा आप फेंक देंगी
4: जी मैम।
5: अब आप क्या कढ़ाई में फिर से जो है वो गैस पे चढ़ा देंगी, चढ़ा डालेंगे। अब आप बिल्कुल नाम मात्र को 1 टीस्पून तेल डालेंगी, फिर से जीरा डालेंगी, हींग डालेंगी। अब आप उसमें क्या करेंगी कि वो जो मसाला आपने पकाया है, जो अभी पीसा है
4: जी जी
5: पका हुआ, उसको डाल देंगी और उसको आंच धीमी करके छोड़ देंगी पकने के लिए। जब मसाला तेल छोड़ने लगे तब आप कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के उसमें डाल देंगी। आप उसमें जो है फिर सब्जी मसाला या मीट मसाला, ये जो भी अगर आपके पास है तो वो आप डाल देंगी, नहीं है आप तो मैगी मसाला डाल दीजिएगा
4: जी।
5: और अंदाज से पानी डालिएगा, बहुत पानी मत डालिएगा, और उसको उबलने चढ़ा दीजिएगा। जब पानी खौलने लग जाए और आपके मेहमान आ जाए, उसमें नमक जरूर डाल दीजिएगा
4: जी मैम,
5: तब आप इसको आप बाउल में निकालेंगी, जो भी सर्विस बाउल में
4: जी।
5: अब आप क्या करेंगी, जो गोले आपने बनाए हैं उसके 1 के 2 पीस कर देंगी, तो सफ़ेद सफ़ेद ऊपर रहेगा और वो पीला पीला रहेगा बीच में किनारे की तरह। अब आप उसको ग्रेवी में, ये आपके तैयार बॉल डाल दिए जाएंगे जिसको हम गट्टे की सब्जी कहते हैं, और आप एक एक जैसे भी आपको सर्व करना है हरी धनिया डाल करके उसको आप सर्व करें। ये कोफ्ते भी कहलाते हैं, ये गट्टे की सब्जी भी कहलाते हैं, ये आजकल के जो है फैंसी जो सब्जी है बेसन की वो भी कहलाती है। ये अब आपका नाम है, आप जैसा चाहे वैसा दें, हमने तो इसको गट्टे की आधुनिक सब्जी खा है, आप भी कहिए।
4: बिल्कुल मैम वैसा ही है, और मतलब गट्टे की सब्जी तो मैंने खाई है लेकिन हाँ। ये आपने बिल्कुल नया हाँ। एक तरीका बताया और बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसे ट्राई भी करूंगी।
5: बिल्कुल बहुत सुंदर लगता है सजा हुआ सर्विस बाउल में
4: जी,
5: आप डालिए, जो भी खाएगा उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा।
4: बिल्कुल, तो चलिए लिसनर्स चलते हैं हम एक बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक पे, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यू गए यू आए स्टेडियम।
6: कभी कभी हम एक दूसरे को खोकर भी तो प्यार को ऊंचा दर्जा देते हैं, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, हम वापस आ गए हैं बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। चलिए सीधे चलते हैं हमारी मास्टर शेफ की तरफ और जानते हैं कि अगली कौन सी रेसिपी है जो मैम हमें खिलाने वाली है।
5: भाई देखो, आजकल आलू बहुत आ रहा है, ठीक है ना, और सस्ता भी है।
4: हाँ,
5: और अच्छा भी लगता है इस समय आलू खाने में।
4: जी जी।
5: तो हम आलू और इसकी मूंग की दाल की इडली सिखा रहे हैं।
4: ओ, वाओ, आलू और मूंग की दाल की इडली
5: सिखा रहे हैं। तो चलिए सामान नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप एक कप मूंग की दाल ले लेंगी, बीन ले लेंगी, धो लेंगी और उसके बाद भिगो कर रख देंगी 3-4 घंटा। उसके बाद आप महीन पीस लेंगी। ये आपकी पहले की तैयारी है। अगर आप सुबह नाश्ता बना रही हो तो रात में भिगो दीजिए, शाम को खिलाना है तो दोपहर में भिगो दीजिए और खूब अच्छे से पीस के अलग रख लें। अब आप क्या करेंगी, आलू मध्यम आकार के 2 या 3 लेंगी, उसको आप उबाल लेंगी, उबाल करके छील लेंगी, छील करके आप बड़े टुकड़ों में काट लेंगी।
4: जी मैम।
5: अब आप क्या करेंगी, पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगी, जीरा डालेंगी, चाट मसाला डालेंगी, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगी, पिसा लाल मिर्च डालेंगी और इसमें जो आपने आलू बनाया है वो उसमें डाल देंगी।
4: जी।
5: पैन में। उसके बाद आप इसको खूब अच्छे से भूनते हुए और मैश कर देंगी। कलछुल से आप फोड़िएगा, वो मैश हो जाएगा। खूब अच्छे से मैश कर, ये कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल अच्छा चिकना भरता बना रहे।
4: मैम,
5: अच्छे से
4: पैन में ही उसे मैश करेंगे।
5: पैन में ही, क्योंकि वो भुनता जाएगा, बनछुटापन खत्म हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि पैन में मध्यम आंच रखते हो, एकदम धीमी, उसी में आप मैश करती जाइए तो खूब खूब मसाला भी भुनता जाएगा। मसाले वाले अच्छे से लाल आलू आपके तैयार हो जाएंगे। इसमें आप थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दीजिए। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो अभी हमने कहा मैगी का मसाला डाल दीजिए, पैरी पैरी मसाला है वो डाल दी। कोई मसाला अलग डालने से उसका स्वाद अलग हो जाता है, ये जान लीजिए आप लोग। हम लोग पहले मैगी का नहीं मसाला डालते थे, लेकिन अब चना ना बनाओ, जरा सा डाल दो तो
4: अलग थोड़ा टेस्ट आ जाता है, तो अच्छा लगता है। जी।
5: अब आप क्या करेंगी कि अप्पम वाला पात्र ले लेंगी या इडली स्टैंड ले लेंगी, उसमें हल्का सा तेल लगाएंगी, तेल लगा करके उसको हल्का गरम होने देंगी। अब जो तैयार आलू है इसमें नमक अमक आपने सब डाल लिया है। नमक आप हमेशा अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा, क्योंकि आलू की टिकिया बन रही है तो इसमें नमक तो पड़ना ही पड़ना है।
4: बिल्कुल।
5: तो आप छोटी छोटी टिकिया बना लीजिए, इतना अप्पम के साइज या इडली के साइज के हिसाब से आप बना लीजिए। उसके बाद आपने तेल लगा दिया है, छोटी छोटी आपने टिकिया बना ली है, उन टिकियों को आप अप्पम पात में या इडली स्टैंड में रख देंगी।
4: जी।
5: अब आप उसको रख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगी, अब आधी कटोरी भर के एक सूजी लेंगी। आप सूजी आपके पास होगी, वो चाहे महीन हो चाहे मोटी, से आप मिक्सी उसको जरूर चला लेंगी। मिक्सी चला करके आप उस जो सूजी है उसको दाल में मिला देंगी। दाल में मिला के खूब फेंट देंगी। दाल में भी आप हल्का नमक और काली मिर्च डाल देंगी।
4: जी मैम।
5: अब आप क्या करेंगी, आपने जहाँ पे आलू की टिकिया रखी है इसमें क्या करेंगी, आप थोड़ा एक पैकेट इनो का भी डाल दीजिए। इनो डालने से ये होता है कि वो फर्मेंटेशन उसका बढ़ जाता है और खूब अच्छी फोकी फोकी सी बनती है, उसमें गठन नहीं पड़ती है। तो अब आप क्या करेंगी, उसमें एक पैकेट जर्नल लेमन इनो जो होता है वही आप डाल लीजिए एक पैकेट
4: जी,
5: उसको डाल दीजिए और खूब चला दीजिए। चलाने के बाद आपने जो टिकिया रखी है उसके ऊपर वो दाल पिसी हुई आप डाल देंगी
4: जी मैम,
5: और दाल में डालने के बाद आप उसको होने देंगी। उसके बाद जो है इसको फिर 10 मिनट बाद धीमी आंच में आप उसको पलट देंगी, पलट करके आप फिर से दाल डाल देंगी। तो अब आलू की टिकिया आपकी दाल में छिप जाएगी, दिखेगी नहीं, अब दोनों तरफ से आपको दाल दिख रही है
4: जी।
5: तो ये जान लीजिए दाल बहुत ना पतली हो और ना बहुत गाढ़ी हो,
4: मीडियम हो,
5: इतनी हो कि वो आलू के और टिकिया को छिपा ले
4: जी।
5: अब आप दोनों तरफ से फिर से तेल थोड़ा थोड़ा डालिए चम्मच से और दोनों तरफ से खूब गुलाबी गुलाबी सेक लीजिए। अब ऊपर से आप हरी धनिया डाल दीजिए, हरी चटनी ले लीजिए, लाल चटनी ले लीजिए, टमाटर की ले लीजिए, चाहे सॉस ले लीजिए, चाहे इमली की ले लीजिए। अब जैसा हो उसको डाल करके अब आप प्लेट में क्या करेंगी, इन जो सिकी हुई इडलियाँ इसके ऊपर फिर से आप चाट मसाला डाल देंगी। चाट मसाला डाल के आप गरम गरम किसी को भी सर्व करिए, देखिए ये बहुत अच्छी नाश्ता है, सुंदर भी लगता है और पेट भर जाता है। जहाँ आपने दो टिकिया खाई दाल वाली तहाँ आपका पूरा फीलिंग हो जाएगी। आप खा के देखिए और बना के देखिए, सरल तो बहुत ही जाता है, आलू की टिकिया और आलू का भरता तो सभी घर बनता
4: जी बिल्कुल मैम
5: जी।
4: वाओ, मतलब बहुत ही अच्छी ऐसी दाल वाली इडली तो ना मैंने पहली बार सुनी है, और वो भी इतने आसान तरीके से बनने वाली, तो थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए लिसनर्स अब चलते हैं, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

यस एग्जैक्टली, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जहाँ हम एक दूसरे को कुछ कह भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं और फालतू की बैसा बैसी हो जाती है। तो आइए चलते हैं आज के और बिल्कुल लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले गाने पे। हमें दे इजाजत, हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861 976 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न

0: एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

बिल्कुल तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त। और इसी मस्त वाले सॉन्ग के साथ एंट्री कर ली है मैंने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका और आप सभी का बहुत बहुत बहुत तहे दिल से वेलकम करती हूं आपके अपने वाले कॉलिंग प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में, जिसमें कि आप कॉल करते हैं, अपनी फरमाइशें बताते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं और फिर हम आपके सॉन्ग को प्ले करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी, फटाफट से अपना हालचाल बताएं और आएं और एंट्री करें हमारे चैट बॉक्स में। तो सबसे पहले मैं यहाँ चैट बॉक्स में देख रही हूँ दीपक जी, जो कि हमें हथियागढ़ गोंडा से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आपको भी दीपक जी। तो फटाफट से आ जाइए लिसनर्स, क्योंकि आपका अपना शो स्टार्ट हो गया है कॉलर ट्यून गोंडा, और आप सभी का स्वागत है, उनका भी जो कि हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, उनका भी जो कि हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, और उनका भी जो हमें चैट बॉक्स से सुन रहे हैं, हमारे चैट बॉक्स में जिन्होंने भी मैसेजेस किए हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे हम हमारी सबसे पहली फरमाइश की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि किसकी है पहली फरमाइश। लेकिन उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन शुरू हो गया है और आज सावन का दूसरा सोमवार है, शिव और शक्ति का अंश। मतलब कहते हैं ना कि अगर शिव जो हैं वो विश्वास हैं तो शक्ति हम सभी की आस है। तो आज के लिए शिव और शक्ति का ये दिन है, आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा अपने मन में आस को बनाए रखना चाहिए, विश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आइए सीधे चलते हैं लिसनर्स हम पहले अपने सॉन्ग की तरफ, जो कि हमारा पहला सॉन्ग। देखते हैं कि किसका है पहला सॉन्ग। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पहली फरमाइश जो कि है वो है धर्मेंद्र मोहन जी की। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। सुनिए, एंजॉय करिए और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

ए दोस्त, ये दुआ है मेरी, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी धर्मेंद्र मोहन जी ने। तो आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि हमारे जो भी लिसनर हमें सुन रहे हैं और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, वो फटाफट से आएं और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नंबर फ़ोन उठाना है, नंबर डायल करना है 6393316429 और फटाफट से अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचा देना है। तो आइए चलिए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को।

बिल्कुल, मुझे तुम याद करना और याद आना तुम, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी देवी प्रसाद जी ने। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है सुरेंद्र यादव जी की। सो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है चल रे कांवरिया शिव के धाम। बिल्कुल, क्योंकि आज है सावन का सोमवार और चल रहा है बहुत ही पाक महीना यानी कि सावन हमारे भोले बाबा और शिव जी का। तो आइए चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग। मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए सुनते रहिए और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में।

बिल्कुल चल कांवरिया शिव के धाम, और शिव का नाम जो कि बहुत ही कहीं ना कहीं ज़रूरी है आज लेना, क्योंकि आज जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि सावन का आज सोमवार है। तो आइए चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे चैट बॉक्स में आ चुके हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ समरीन जी, धर्मेंद्र मोहन जी, सुरेंद्र जी और उनके साथ राजू टेलर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कॉलर ट्यून गोंडा में। तो आइए बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से सेगमेंट की तरफ, कि आज नहीं हमेशा होना चाहिए कुछ ना कुछ काम, इसलिए काम जो होता है ना उसके साथ साथ हमेशा ज्ञान की बातें भी होनी चाहिए। तो हमेशा करते रहना चाहिए काम, इसलिए आज हम बताएंगे आपको ज्ञान का नाम। तो भाई आज का ज्ञान क्या है? आज का ज्ञान ये है कि बचपन से सुनती आ रही हूँ कि मेहनत का फल मीठा होता है, पर मुझे तो भाई आज तक पेड़ों पर सिर्फ आम और सेब ही मिले। मुझे तो लगता नहीं कि सब्र का फल या मेहनत का फल मीठा होता है। कैसा होता है, क्या होता है लिसनर्स, ये आप बताइए। और आज का ये आपका ज्ञान है और आपके इस ज्ञान पे मैं आपका फीडबैक ज़रूर चाहूँगी कि आप अपने इस ज्ञान को किस तरह लेते हैं और क्या कहते हैं कि भाई कैसा होता है सब्र का फल, मीठा होता है या कैसा होता है? क्योंकि हमने तो पेड़ों पर सिर्फ सेब और आम ही आज तक देखे हैं, तो आप बताइएगा कि कैसा होता है। हम चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है मोहम्मद वारिस जी की, जो कि हमें लुधियाना से सुनते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं मोहम्मद वारिस जी के सॉन्ग को, एंजॉय करते हैं। लेकिन भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपको देना है इस ज्ञान का फीडबैक कि भाई क्या होता है सब्र का फल और कैसा होता है और आपके लिए कैसा रहा है। मैं कर रही हूँ इंतज़ार आपके जवाब का। आइए सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को।

मुझे मालूम नहीं। और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है दीपक जी की। तो आइए सुनते हैं दीपक जी के सॉन्ग को। मिलती हूँ आप संग इससे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए भाई अपनी फरमाइशों को हम तक बस यूं ही पहुँचाते रहिए, कॉल्स करते रहिए। आपको नंबर तो याद ही होगा, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, नंबर है 6393316429। सो फटाफट से कॉल करें। और हमने आपसे जो सवाल पूछा था कि भाई सब्र का फल होता क्या है, कैसे होता है, आपके लिए क्या है, उसका जवाब ज़रूर दीजिए। तो आइए चलिए सुनते हैं हमारे अगली फरमाइश।

बिल्कुल, तेरी आंखों से ना हटती आंखें, बहुत ही प्यारा, सुन जरा जो कि फरमाइश की थी दीपक जी ने। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है चांद बाबू जी की। तो आइए सुनते हैं चांद बाबू जी के सॉन्ग को।

0: बिल्कुल कई है ये मौसम जो कभी बदलता नहीं कभी बेबसी। और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी चांद बाबू ने। अब आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो महेंद्र जी जुड़ चुके हैं जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। अंशिका मैम गुड आफ्टरनून आपको भी। हमारे एक लिसनर और हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने कि नमस्ते का आइकॉन भेजा है। इसी के साथ दीपक जी हैं जो कि हथियागढ़ गोंडा से, और महेंद्र जी लिख रहे हैं सब्र का फल मीठा हो या ना हो हमारे लिए तो बिल्कुल नमकीन और चटपटा होता है। ओके महेंद्र जी, तो चलिए अब चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। और लिखा है वैसे तो लोग कहते हैं सब्र का फल बहुत ही अच्छा होता है, रिजल्ट मिलता है बहुत, बट आई डोंट बिलीव रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है और या पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव है या पॉजिटिव ये तो अपने मानने पर डिपेंड करता है, जैसा आप मानते हैं सोचते हैं समझते हैं चीज़ें वैसी ही होने लगती हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है राजू जी की। तो आइए सुनते हैं राजू जी के सॉन्ग को, मिलते हैं उस सॉन्ग के उस पार, बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।
1: को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।

बिल्कुल, बहानों को छोड़ो, बहाना बना दो, फसाना बना दो, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी राजू जी ने। वैसे बहाने से याद आता है, ये हम सभी ने कभी ना कभी बहाने तो बनाए ही होंगे। भाई आप सभी ने कभी ना कभी स्कूल ना जाने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाया होगा। कभी कोई काम नहीं करने का मन होता है तो मम्मी से बहाना बनाते हैं, नहीं मम्मी आज तबीयत ठीक नहीं है, आज ये काम नहीं करना। तो कभी टीचर से होमवर्क के लिए बहाने बनाए होंगे कि जब होमवर्क नहीं करके जाते थे तो हमेशा बहाने बनाते थे कि मैम तबीयत खराब हो गई थी, मैम वहाँ चले गए थे, मैम रिलेटिव के यहाँ चले गए थे इसलिए काम नहीं कर पाए। ऐसे बहाने तो हम सभी ने बनाए हैं, कहीं ना कहीं बचपन वाले बहाने, यादगार बहाने। तो भाई मैं अपने लिसनर्स से कहना चाहूँगी कि जो भी हैं हमें सुन रहे हैं वो अगर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए कि आपने कौन कौन से बहाने बनाए हैं और कौन कौन से बहानों में पकड़े भी गए हैं और कितनी पड़ी है आपको डांट या कैसे थे ज़रूर बताइए। वैसे बहाने होते बड़े प्यारे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है महेंद्र जी की। तो आइए सुनते हैं महेंद्र जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ सॉन्ग के उस पार, तब तक याद करिए सोचिए कि आपने कौन कौन से बहाने बनाए हैं और कब कब बनाए हैं।

दीवाना, बिल्कुल भाई, दीवाना और दीवानगी होती ही कुछ ऐसी है। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स में आ गई है बहुत सारी प्रतिक्रिया, क्योंकि लिखा है एक बार हम स्कूल का ड्रेस पहनने का तैयार हुए थे और सबसे ऊपर वाले रूम में छुप गए थे, जब स्कूल के टाइम ओवर हो गया तब निकले। ओके, और इसी के साथ महेंद्र जी ने भी लिखा है कि हमने तो मैम जी बहुत बहाने बनाए हैं, अगर खेलने में आएंगे, अच्छा अगर लिखने में आएंगे तो शाम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र जी, मैं समझ सकती हूँ कि हम सभी ने इतने बहाने बचपन में बनाए ही होते हैं कि हमें कहने के लिए टाइम कम ही पड़ जाता है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है राजू सलमानी जी की, जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं। आइए सुनते हैं सॉन्ग को, मिलती हूँ सॉन्ग के उस पार।

तम्मा तम्मा बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी राजू सलमानी जी ने। आई अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है सुरेश कुमार जी की, जो कि हमें चौक से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं सुरेश कुमार जी के सॉन्ग को, जब वो याद आए तो बहुत याद आए।

बिल्कुल, वो जब याद आए, बहुत याद आए, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी सुरेश कुमार जी ने। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वाकई यादें बहुत प्यारी होती हैं, हर किसी से जुड़ी हुई होती हैं, और जब यादों में किसी की याद आती है तो दिल वाकई में कहीं ना कहीं बहुत एक प्यार से कह लें या एक मीठे से दर्द से भर जाता है, और हमें वाकई हमारे अपनों की बहुत याद आती है, और यादें बहुत ही प्यारी होती हैं। इसलिए हमेशा अपने अपनों के साथ जो भी यादें बनाएं वो बेहद ही प्यारी और अच्छी वाली बनाएं। तो आइए इसी बात के साथ अब चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है राम भवन जी की। तो आइए सुनते हैं राम भवन जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार्ट तक के लिए। सुनिए, इंजॉय करिए और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

बिल्कुल, तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम, बहुत तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और राम भवन जी की ये फरमाइश थी। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम भवन जी लिख रहे हैं बबनान गोना से, थैंक यू मैम, यू वेलकम राम भवन जी। और इसी के साथ हमारी एक लिसनर है जो कि लिख रहे हैं, डियर अंशिका मैम, आज आप इतनी प्यारी बातें कर रही हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, थैंक यू सो मच आपको भी। और लिख रहे हैं कि गानों के थ्रू हम बातें करते हैं। बिल्कुल, गानों के थ्रू हम और आप करेंगे बातें, क्योंकि हो रही हैं बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग्स की बरसातें। भाई मौसम ये बरसात वाला है, सावन है, और हमारे स्टूडियो में भी आज गानों की बरसात हो रही है, बहुत बहुत प्यारे ही प्यारे गानों की। और इसी के साथ महेंद्र जी ने आइकॉन्स भेजे हैं, और धर्मेंद्र मोहन जी लिख रहे हैं, इस प्रोग्राम में मैं ज़्यादा देर तक रहता हूँ तो मुझे तोता याद आ जाता है, तोता, अच्छा याद आ जाता है, तो ज़रूर बताइए धर्मेंद्र जी कि आपको तोता क्यों याद आ जाता है। चाहिए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारी सी फरमाइश है, जो कि है मुमताज़ अंसारी जी की। तो आइए सुनते हैं मुमताज़ अंसारी जी के सॉन्ग को।

बिल्कुल, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी मुमताज अंसारी जी ने। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है, अगली फरमाइश भाई किसकी है, किसकी है, किसकी है, तो चलिए अगली फरमाइश है दुर्गा जी की। तो आइए सुनते हैं दुर्गा जी के सॉन्ग को।

तुझमें मैंने यहाँ पाया है, रिम झिम ये सावन बरसातें ले आया है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी दुर्गा जी ने। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश की तरफ जाने से पहले मैं देख रही हूँ कि नागेश्वर जी आ चुके हैं और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून अंशिका मैम, गुड आफ्टरनून नागेश्वर जी, कैसे हैं आप। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है जवाहरलाल प्रजापति जी की। तो आइए सुनते हैं उनके सॉन्ग को और इन्जॉय करते हैं। आप सभी बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

बिल्कुल दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई, छुप गए सारे नज़ारे, हाय क्या बात हो गई। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और भाई हमारे चैट बॉक्स में तो मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, और कुछ कुछ नए नए नाम भी रखे जा रहे हैं, और साथ में कुछ शिकायतें भी की जा रही हैं। नागेश्वर जी, धर्मेंद्र मोहन जी, और हमारे एक और लिसनर हैं जिनका जी की नाम नहीं है। और इसी के साथ भाई नाम रखे जा रहे हैं, तो नाम और उपनाम आप लोग रखते रहिए, बातों को करते रहिए, क्योंकि भाई बातें नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे होगा। तो आप सभी बातें करें, बहुत सारे नाम रखें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इधर भी दें। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, क्योंकि टाइम जो है वो हमारे पास है बहुत ही कम। तो अगली फरमाइश जो हमारी है वो है, आते हो तो बरसाते लेते आना, जो कि है रितेश जी की, जो कि हमें

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286 9816 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद हैं आपके साथ आपके फेवरेट वाले शो में। यूं तो हर रोज आपसे मिलना जुलना होता ही है, लेकिन आज का मिलना कुछ ज्यादा ही खास है। जी हाँ, दरअसल एक बात आपको और हमको हमेशा बचपन से सिखाई गई है, और वो है जहाँ चाह वहाँ राह। ये चार शब्दों की एक लाइन जो है, जहाँ चाह वहाँ राह, ये बड़ी ही चरितार्थ करती हुई नजर आती है जब नाम आता है श्री अवनीश प्रताप सिंह जी का, जो कि ग्राम प्रधान है संगवा ब्लॉक छपिया जिला गोंडा के। जी हाँ, आज ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कहीं ना कहीं एक इबारत लिख रहे हैं और गोंडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे देश में। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि इसी 15 अगस्त को सम्मानित हो रहे हैं हमारे श्री अवनीश प्रताप सिंह जी, जो कि ग्राम प्रधान है संगवा ब्लॉक छपिया जिला गोंडा के। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर कि ग्रामीण क्षेत्र से आपने मुझे यहाँ बुलाया।
1: बहुत शुक्रिया। और मैंने क्या बुलाया, मतलब प्रधानमंत्री जी ने साक्षात आपको बुलवा लिया, क्योंकि आपका उत्कृष्ट कार्य जो ग्राम प्रधान के लिए है और पूरी ग्राम पंचायत के लिए, आपने जिस तरह की मॉडल ग्राम पंचायत बनाई है, और देश में 25 ग्राम प्रधानों के बीच में आपका नाम आना

0: ग्राम पंचायत का नाम आना ये गोंडा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिसको साकार करने में पूरी तरह से आपका विजन है और आपका सार्थक प्रयास है और साथ ही आपकी नियत जो है वो ये दिखाती है कि किस तरह से अगर आप चीजों को करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी गोंडा और संगवा जैसी छोटी सी जगह की भी बहुत बड़ी पहचान हो जाती है
1: जी।
0: तो मैं इसके लिए पहले ही आपका शुक्रगुजार हूँ और अपने श्रोताओं को जितने भी श्रोता इस वक्त हमको सुन रहे हैं उनको हम बता दें श्री अवनीश प्रताप सिंह जी जो कि ग्राम प्रधान संगवा ब्लॉक छपिया जिला गोंडा के हैं इनको सम्मानित किया जा रहा है 15 अगस्त 2025 को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यानी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है जिला पंचायत स्तर से लेकर के मतलब आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं इतनी सारी जगह आपको अचीवमेंट्स मिली है पहचान मिली है और आज राष्ट्रीय स्तर की हम बात करते हैं कि आप संगवा को लेकर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप वहां जा रहे हैं तो हमारे श्रोताओं को हमने जैसा कि बताया है कि भाई आपके पंचायत को लेकर के प्रधानी को लेकर के जो किए गए उत्कृष्ट कार्य हैं जिसके लिए ये प्रधानमंत्री से आपको सम्मान मिल रहा है इसके अलावा भी आपको कई सारे सम्मान मिले हैं जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे लेकिन हम चाहेंगे कि उससे पहले हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उनको अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए।
2: अवनीश प्रताप सिंह ग्राम प्रधान संगवा विकास खंड छपिया जनपद गोंडा।
0: बिल्कुल तो अवनीश जी सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि अपने परिवार के बारे में आप बताइए कि परिवार में इस वक्त कितने लोग हैं और उसके साथ ही साथ आपकी बचपन की पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और आपकी जन्मभूमि क्या संगवा ही है या कहीं और के आप निवासी हैं हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: नहीं संगवा के ही निवासी हैं
0: जी।
2: हमारी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय संगवा से ही हुई है।
0: अच्छा
2: प्रारंभिक शिक्षा प्रदान हुई
0: जी जी जी
2: और
0: वहीं का आप प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं।
2: वहीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
0: जी ये बहुत अच्छा है
2: जी। और हमारे परिवार में जो हमारी माता जी है जो 81 वर्ष की हैं।
0: अरे वाह
2: 81 वर्ष की माता जी है
0: जी।
2: हमारी धर्मपत्नी जी है
0: जी।
2: एक बेटा है।
0: अच्छा
2: हमारे बड़े भाई साहब हैं
0: जी।
2: हमारी भाभी जी हैं।
0: अच्छा
2: एक भतीजा एक भतीजी।
0: अच्छा तो एक ये एक बड़ा पूरा परिवार।
2: हाँ पूरा परिवार संयुक्त परिवार।
0: चलिए तो बहुत अच्छी बात है जहाँ पे हम बात एकल परिवार और संयुक्त परिवार की करते हैं वहाँ पे आपने बड़ी खुशी के साथ में बताया कि आप एक संयुक्त परिवार से ताल्लुक रखते हैं ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमने अपने श्रोताओं को बता दिया है कि आपको प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा आपके ग्राम पंचायत में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को लेकर के हम इस पे भी आएंगे लेकिन थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ हम वापस से चलते हैं और उन दिनों में हम पहुंच जाते हैं जहां पे अवनीश जी आज प्रधान है लेकिन कभी छोटे बच्चे हुआ करते थे कभी खेला कूदा करते थे उस गांव की सड़कों पर। तो बचपन से जैसे बच्चों के मन में बहुत सारी धारणाएं होती हैं कि वो बड़े होकर के ये बनेंगे डॉक्टर बनेंगे तो लोगों की सेवा करेंगे कुछ कहते हैं हम टीचर बनेंगे तो और लोगों को पढ़ा करके हम देश का निर्माण करेंगे। आपके मन में क्या इच्छा रही है तो क्या आपकी जो आज पोजीशन है जहां पे आप हैं क्या माता पिता ने कहा था ऐसा करने के लिए या आपकी खुद की इच्छा है या क्या हुआ जीवन में क्या प्रधानी तक आए?
2: नहीं अपनी इच्छा थी।
0: अच्छा
2: जी सबसे पहले तो हम आपको बता दें हमारे बड़े पिताजी
0: जी
2: जब इलेक्शन हाथ उठा करके काउंट वोट गिना जाता था तब से थे 1982 तक पहली पंचवर्षीय से 1982 तक
0: मतलब जिस जमाने में वोट बैलेट पेपर से नहीं हाथ उठा करके पूछा जाता था कि आप किसके पक्ष में हैं
2: जी
0: उस जमाने में आपके बड़े पापा जी थे
2: जी।
0: क्या बात
2: उनके देहांत के बाद
0: जी
2: हमारी बड़ी माता जी प्रधान हुई।
0: अच्छा
2: फिर हमारे पिताजी भी प्रधान हुए।
0: ओके अच्छा
2: पिताजी की उम्र अधिक होने लगी
0: जी
2: तो उन्होंने कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।
0: अच्छा
2: तो बीच में कुछ दिन हम लोग भी छोटे थे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे
0: जी जी जी
2: तो उससे दूर थे जब फिर सीट आरक्षण में कभी रहे कभी कुछ तो जब मौका मिला तो ग्रामवासियों से संपर्क किया गया।
0: अच्छा
2: कि भैया आप लोग सहयोग करिए हम भी आकर के आप कुछ हमारे द्वारा भी किया जाएगा कार्य लोगों से अलग तरीके से हट करके विकास कार्य किया जाएगा। तो मैंने विकास के मुद्दे पर ही चुनाव को लड़ा था कि अगर आपको गांव में विकास देखना है तो आप हमें सब सपोर्ट करिए गांव की जनता से जो प्यार दुलार आशीर्वाद जिस तरीके से मिला कि गांव से तमाम लोग चुनाव लड़े थे लेकिन जीत करके गांव की जनता ने मुझे वोट दिया, हम जीते, तो हम उसी मिशन पे काम करना शुरू कर दिए। कि तो सबसे पहले मैंने जो है शुरुआत किया कि इसी विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ और एक विद्यालय में हमारी माता जी शिक्षिका थी, हमारे यहाँ दो प्राइमरी विद्यालय हैं।
0: अरे वाह, क्या बात।
2: तो हमने पहले माता जी जिस विद्यालय में शिक्षिका थी
0: जी,
2: उस विद्यालय का कायाकल्प का कार्य शुरू किया। पहले के विद्यालय बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उनका बिल्कुल रूप ही परिवर्तित कर दिया
0: बिल्कुल।
2: फिर उसी कैंपस में ही चूंकि भी जमीन इकट्ठे थी पंचायत भवन की भी, वहीं पर पंचायत भवन बनाने का आदेश, जब पैसा आया तो पंचायत भवन बनवा दिया, अच्छी जमीन वहां पड़ी थी
0: जी,
2: पंचायत भवन बनवाए, उस कैंपस का बाउंड्री वाल किए, उस विद्यालय में हमने पूर्ण रूप से मतलब उसको संतृप्त किया कार्य करके, जैसे बच्चों के खाने के लिए MDM सेट, शौचालय, दिव्यांग शौचालय, बेबी शौचालय, बालक के लिए अलग, बालिका के लिए अलग, हर प्रकार के शौचालय की सुविधा प्रदान की। और इतने ही नहीं सर, आप कभी भी आ करके चेक कर सकते हैं, उतना सफाई शौचालय में कॉन्वेंट स्कूल में नहीं होगा जितना साफ शौचालय हमारे यहाँ का।
0: क्या बात है, बिल्कुल। लेकिन आपकी बात में सच्चाई इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने फोटोज देखी है, मीडिया में भी बहुत अच्छे से कवर किया गया, और जाहिर है कि प्रधानमंत्री तक आपको बुलाया जा रहा है, तो ये दावा तो बिल्कुल आपका सच है। और मैंने तो आपके बहुत सारे काम देखे, और जिस तरह का आपने उसमें सजावट की है, ऐसा तो मैं बल्कि शहर में भी नहीं देखता हूँ। ऐसा लगता है कि भाई किसी बड़े शहर लखनऊ की तरफ या कहीं हम किसी बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं, फिर वहां हम देख रहे हैं इतने बदलाव आ रहे हैं। संगवा में इतना ज्यादा परिवर्तन, क्या सोच क्या थी? मैं ये जानना चाहूंगा, ये सोच आई कहां से? कहीं तो शुरुआत होती है ना, तो ये कैसे क्लिक किया कि इस तरह इसको बनाना है?
2: हमारे प्रधान चुने जाने के बाद
0: जी,
2: हमारी माता जी ने एक शब्द कहा कि बेटा जितना अच्छा काम करोगे उतने आगे जाओगे, और प्रयास यही करो कि अच्छे से अच्छा काम करो और काम के बल पे अपनी पहचान बना लो।
0: क्या बात है।
2: तो उनकी बातों को हमने गंभीरता से सुना, उसके बाद में हम जा करके ब्लॉक पे अपने जेई महोदय से ये चीज अवगत कराए कि माता जी की दिली इच्छा है कि जिस विद्यालय में मैंने 45 साल सेवा दी हूँ उस विद्यालय की स्थिति को सही हो जाए। मैं विद्यालय के कायाकल्प हेत कार्य करवाने के लिए कागज तैयार करवाया, कायाकल्प कार्य शुरू करवाया, उसके बाद में 15 दिन बाद ये आदेश आ गया माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी का कि सभी विद्यालयों में कायाकल्प का कार्य होना है
0: जी। हाँ बिल्कुल, ये आदेश स्टेट गवर्नमेंट के साइड से उसके बाद दिया गया कि सभी विद्यालयों का कायाकल्प होना है।
2: कायाकल्प होना है
0: बिल्कुल।
2: फिर कायाकल्प का कार्य कराया, और सुंदरता के लिए भाई चूंकि माता जी ने कहा था जितने अच्छा होगा, अच्छा अधिकारी भी आवे, जब मैं काम करा रहा था तो अधिकारी आवे चेक करने के लिए, वीडियो हमारे यहाँ के वर्तमान वीडियो आवे, जिले से जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय कई बार आए, उनके कार्यालय से कुछ संबंधित अधिकारी आए, तो ये लोग थोड़ा सा अच्छा, मुझे भी कार्य करने के एक ललक थी कि हमारा काम अच्छा हो, कोई अधिकारी आवे देखें मुझे प्रोत्साहित करें। तो धीरे धीरे वो हमें ब्लॉक स्तर से लेकर के जिले स्तर तक, तो जैसे जैसे मुझे प्रोत्साहित करते गए वैसे वैसे उत्साह बढ़ता गया, और धीरे धीरे हम उसी हिसाब से कार्य करते गए कि कार्य के जरिए ही मुझे पहचान मिलेगी।
0: बिल्कुल,
2: इसीलिए काम किया गया।
0: अरे वाह, यानी हम कह सकते हैं कि प्रधान बनने के बाद जो आपका बिल्कुल मॉडल काम था वो उसी विद्यालय से शुरुआत हुई जहाँ पे माता जी ने अपना 45 साल जीवन का लगा दिया
2: जी,
0: और जिस स्कूल से आप खुद भी पढ़े थे
2: जी।
0: क्या
2: नहीं, जिस स्कूल में हम पढ़े
0: जी
2: उसका बाद में किए।
0: अच्छा,
2: पहले माता जी के जिस स्कूल में पढ़ा रही थी उस विद्यालय को किए, वहाँ का पूर्ण रूप से संतृप्त करने के बाद
0: जी,
2: उसके उद्घाटन में मुख्य विकास अधिकारी पूर्व की अरुण मोली जी वो आई, उन्होंने सबसे पहले माइक से अनाउंस किया कि प्रधान जी मेरे सामने आवे।
0: क्या बात है।
2: उन्होंने कहा जी मैडम, हाथ जोड़ करके। तो उन्होंने कहा कि वो विद्यालय, चूंकि जिस रास्ते से मैडम आई
0: जी,
2: उस रास्ते में पहले प्रथम विद्यालय पढ़ा फिर
0: द्वितीय जी।
2: तो मैडम ने कहा कि प्रधान जी वो भी विद्यालय आपका है, एक में आपने इतना अच्छा सब कुछ कर दिया कि आरओ वाटर कूलर तक लगवा दिए, ओपन जिम तक लगवा दिए।
0: वाह क्या बात है।
2: यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था, वाईफाई लगवा दिए, और वहां तो हमने बताया कि मैडम, हाथ जोड़ करके कहा कि मैडम हमारी गांव पंचायत बहुत छोटी है और गांव में भी कुछ कार्य करना रहता है, पहले एक विद्यालय को मैंने पूर्ण रूप से संतृप्त कर दूं, एक कैंपस
0: जी,
2: तब दूसरे में प्रवेश करूं।
0: बिल्कुल।
2: उन्होंने कहा कि जो भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे से आकर के कभी भी मिल सकते हैं।
0: अरे
2: फिर उनके जाने के बाद हम दोबारा प्रयास किए, गए मैडम से मिले कि हमारे प्रथम विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं है, बाउंड्री वाल का उन्होंने पैसा हमें उपलब्ध कराया
0: जी,
2: और पैसा स्कूल के खाते में पैसा आया हमारी देख रेख में
0: जी,
2: विद्यालय का बाउंड्री वाल बनना शुरू हुआ। विवाद बीच में आ गया, कुछ अगल बगल के खातेदारों से
0: जी।
2: कुछ विवाद आया तो फिर हमने आकर के एप्लीकेशन दिया डीएम मैडम को, पूर्व की डीएम मैडम को
0: जी।
2: इन्होंने उस हमारे एप्लीकेशन को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने के लिए एसडीएम को निर्देशित भी किया, फोन से भी निर्देशित किया कि 3 दिन के अंदर इसको करके फाइनल करिए, प्रधान जी कार्य इसका करवावें। फिर बाउंड्री वाल बनी। जब बाउंड्री वाल बन गई तो फिर मैंने कहा कि इस विद्यालय में भी जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं सारी चीजों को शुरू कर दीजिए। हमने काम करवाना शुरू कर दिया। हमारे पास मौके पर गांव पंचायत के खाते में पैसा भी नहीं था, धीरे धीरे काम करवाए, धीरे धीरे पैसा आता गया। कुछ पैसा काम कराने के बाद, वैसे भी काम कराने के बाद पैसा मिलता है,
0: बाद में आता है। बिल्कुल।
2: तो हमने ये टारगेट बनाया कि अगले 6 महीने में इस कार्य को पूरा किया जाएगा। तो कार्य पूरा करने में और अगले 6 महीने, लगभग चार महीने कार्य पूरा होने के बाद में 4 महीने तक भुगतान लिया।
0: क्या बात है।
2: पूरा तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार से कुछ धनराशि हमें प्राप्त हुई
0: जी,
2: 15 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार से 23-24 सत्र में प्राप्त हुई।
0: 23-24 सत्र में 15 लाख
2: जी
0: मुख्यमंत्री प्रोत्साहन की तरफ से मिला
2: जी, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन की तरफ से मिला
0: जी।
2: तो उस पैसे से हमने सोचा कि एक गांव पंचायत की बैठक बुलाई
0: जी,
2: उसमें कुछ सदस्यों से कार्य के लिए प्रस्ताव मांगा गया कि आप अपनी अपनी राय दीजिए। उसमें फिर हमारी श्रीमती जी
0: जी
2: वो गांव पंचायत की सदस्य हैं।
0: अच्छा।
2: उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत में एक सुंदर कंप्यूटर लैब का निर्माण हो जाए।
0: क्या बात है।
2: तो उसपे सभी लोगों ने सहमति दे दिया।
0: हाँ।
2: प्रस्ताव पास हुआ
0: जी।
2: उसके बाद में बनाने का हुआ तो हमने जब एस्टीमेट उसको बनवाया, फिर जिले पे भिजवाया सैंक्शन के लिए, सैंक्शन होने के बाद में एस्टीमेट काम जब शुरू कराया तो शुरू से ही न्यू स्तर से ही पूरा अपनी देखरेख में उसका कार्य करवाया,
0: कंप्यूटर लैब का।
2: कंप्यूटर लैब, और इस तरीके से उसको आखिरी में बनवाया कि एक गोंडा जनपद का मॉडल कंप्यूटर लैब है।
0: अब मुझे आपकी जब बात अभी याद आ रही है, आपने मुझे फोटोज जब दिखाई, तो जिस पीवीसी का चलन अब बढ़ गया है, लोग बहुत रॉयल जगह लगवाते हैं, कहते हैं कई लोग तो कहते हैं भाई जिसके पास ज्यादा है पैसे वो उसके घर में लगे होते, पंचायत भवन के अंदर आंगनवाड़ी में या अपने स्कूल में कई जगह इस तरह का काम कराया है, कंप्यूटर लैब में इवन आपने हमको दिखाया तो पीवीसी पैनल का काम है, ये मतलब सोच कैसे आई?
2: देखिए ऐसा है कि बरसात के मौसम में सीलन आ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
2: दीवाल में।
0: बिल्कुल।
2: और कितनी भी अच्छे तरीके से वॉल पुट्टी लगवा करके रंगाई पुताई करवाइए और जब सीलन आ गई तो वो उसमें दरारें आ जाती हैं, फूल जाती हैं, और कितने भी अच्छे क्वालिटी का पेंट हो
0: मंगाइए
2: वो खराब हो जाता है और फिर देखने में बहुत बुरा लगता है।
0: सही कह रहे हैं। बिल्कुल।
2: इसलिए हमने कहा कि पीवीसी पैनल अगर लगा दिया जाएगा तो 15 साल, पहली बार तो महंगा पड़ता है,
0: सही बात है,
2: लेकिन अगले लगभग 15 से 20 साल उसमें एक भी रुपये खर्चा नहीं आएगा कि रंगाई पुताई के लिए उसमें पैसा खर्चा करना
0: पड़े। सही बात है।
2: 15-20 साल वो बिल्कुल समझ लीजिए कि एक प्रकार से इंश्योरेंस हो गया।
0: सही कहा आपने। बिल्कुल। तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी सोच थी कि भाई भले ही पैसा अभी इसमें ज्यादा लगेगा लेकिन इसको ऐसा कर दिया जाए कि 15-20 साल फिर इसको छूने की जरूरत ना रहे।
2: और जितने भी काम उसमें, काम या सामान जितने भी लगे, सब ब्रांडेड कंपनी के ही लगवाया कि उसका जब संचालन करवाना है अगर खराब सामान लगा देंगे तो कल से ही लेकर के मुझे ही दौड़ना पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही बात है।
2: तो अच्छे क्वालिटी का सामान रहेगा तो एक बार लगा दिए, ब्रांडेड सामान अगर एक बार लगा दिए तो कुछ दिन जब तक उसकी मियाद है तब तक मुझे उसके तरफ घूमना नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा जो आपने मुझे बताया कि कंप्यूटर लैब भी आपके यहाँ है और पंचायत भवन का बल्कि निर्माण भी आपने कराया और उसका कायाकल्प भी किया, उसको मॉडल भी बनाया
2: जी।
0: इसके अलावा आपने
2: उसका संचालन भी करवा रहे हैं।
0: उसका संचालन भी हो रहा है, बिल्कुल सही कहा। ओपन जिम, ये कैसे कॉन्सेप्ट आया कि भाई ओपन जिम लाते हैं, और वो किन के लिए है? क्या आप सिर्फ बच्चों के लिए है या ग्रामीण उसमें आके ओपन जिम का इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्या है?
2: ग्रामीण भी आकर के करते हैं और बच्चे भी करते हैं।
0: अच्छा, सभी के लिए
2: जी। पूरे हमारे तो हम दूर तक नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं हमारे पूरे विकास खंड में 87 गांव हैं। 87 गांव में ओपन जिम सबसे पहले
0: जी
2: हमारे गांव पंचायत में।
0: क्या बात है, वाह। तो ये ओपन जिम जो आपने लगवाया, लोगों का क्या मतलब, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रतिक्रिया क्या थी? एक तो जिम जैसे जब नाम आता है तो लगता है ये शहर में ही मिलने वाला है
2: जी,
0: या जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहीं जिम होते हैं
2: जी।
0: लेकिन आपने ओपन जिम का कॉन्सेप्ट दिया, लोगों के अंदर क्या आपने देखा कि स्वास्थ्य के प्रति, अपनी दिनचर्या के प्रति उनमें कुछ बदलाव आ रहा है? लोग आ रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं?
2: नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं। और बच्चों का मानसिक विकास भी के लिए जो है खेल कूद और ये सब जरूरी है।
0: हाँ बिल्कुल।
2: और गांव के लोग भी आते हैं सुबह।
0: अच्छा
2: जी,
0: तो मतलब लोगों की शुरुआत उसी ओपन जिम से हो जाती है?
2: हाँ, कुछ काफी लोग आते हैं
0: जी जी जी जी
2: जी।
0: तो मतलब लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट सच में अलग है, क्योंकि जो चीजें आपको बहुत टाउन एरिया में मिलती है, शहर में मिलती है
2: जी,
0: वो आपको गाँव में अगर इस तरह से मिल रही है तो ये अपने आप में बड़ी बात है
2: जी।
0: क्योंकि जब आपने ओपन जिम का बताया तो मैं एक बार को आपका चेहरा भी देखने लगा कि अच्छा, ओपन जिम भी आपने अपने ग्राम पंचायत में लेकर के आया, तो ये सच में एक बड़ी बात है
2: जी सर,
0: और बहुत खुशी की बात है। अच्छा अवनी जी, इसके अलावा आपने ये भी बताया कि 2 वाटर कूलर भी हैं दोनों।
2: हाँ, दोनों विद्यालय में।
0: विद्यालय में
2: ऐसा था सर
0: जी
2: कि बच्चों को पानी पीने के लिए
0: जी
2: समरसेबल लगवाया गया, पानी टंकी रखवाई गई, उससे बनवाया गया प्लेटफॉर्म के तरीके से
0: जी
2: कि हैंड वॉश
0: जी, जी, जी।
2: उसमें हाथ भी धुल लें, अपना पानी भी पी लें
0: जी।
2: तो उसमें हमने देखा कि गर्मी के दिनों में पानी बिल्कुल खौल रहा था,
0: खौल जाता है बिल्कुल,
2: और पानी पीने के समय, बच्चों के पीने के समय लाइट नहीं रहने के कारण वही गर्म पानी बच्चे पीने को मजबूर,
0: बिल्कुल,
2: या 1-2 दिन 3 दिन पहले का पानी पीते थे
0: जी जी जी।
2: तो इसलिए शुद्ध पानी, सही पानी और ठंडा पानी के लिए वाटर कूलर पहले द्वितीय विद्यालय में लगवाया, फिर प्रथम विद्यालय में।
0: अच्छा, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आप दोनों को एक साथ लेकर के आप चल रहे हैं
2: जी। तमाम लोग हमारे गांव के भी और अधिकारी भी सब लोग कहे एक ही विद्यालय के पीछे क्यों पड़े हैं। हमने कहा कि जब तक एक विद्यालय पूरा पूर्ण रूप से संतृप्त नहीं हो जाएगा तब तक दूसरे में हाथ नहीं लगाऊंगा कि ना इसको कर पाऊंगा ना उसको कर पाऊंगा।
0: सही बात है,
2: तो एक विद्यालय पूरा करिए तब दूसरे में उसको छेड़िए।
0: बिल्कुल सही बात आपने कहा। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी अलग चीज जो मैंने अभी तक तो कहीं नहीं देखी है, एक तो आंगनवाड़ी को जिस तरह आपने रेनोवेट किया है, उसका कायाकल्प जो किया है, मतलब इतनी खूबसूरत लगती है और ऐसा लगता है कि भाई किसी का शोरूम है बाहर से, जो मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसके अलावा जिसने भी मीडिया कवरेज में आपके पंचायत का जो मीटिंग हॉल है, पंचायत भवन है, वो देखा होगा तो उसको यकीन नहीं होगा कि इतनी दूर किसी दूर एक पंचायत भवन का इस तरह से कोई निर्माण करा सकता है। तो मैं बात कर रहा था आंगनवाड़ी केंद्र की। कई जगह देखा जाता है कि आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे प्राइमरी विद्यालयों की कई जगह है, या शायद उससे भी ज्यादा जीर्ण शीर्ण अवस्था में होते हैं। लेकिन आपके यहाँ आपने बताया कि बच्चों के लिए साइकिल जैसी चीज छोटी छोटी लेकर के आप आए हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी में बच्चों का टिक पाना, वहां तक लाना अपने आप में सभी आंगनवाड़ी के लिए बड़ी दिक्कत का काम है, बड़ा चैलेंज है जिसे कहते हैं। लेकिन आपके यहाँ एक ऐसी आंगनवाड़ी केंद्र है जहाँ बच्चों की भरमार लगी रहती है, बच्चे पूरे में खेला करते हैं, और वॉल पेंटिंग की अगर हम बात करें, बाला का कार्य देखें तो बड़े ही खूबसूरत खूबसूरत चित्र बनाए गए हैं जिससे बच्चों को पढ़ने समझने और उनके बुद्धि के विकास के लिए उसमें सहायक होते हैं। इसको लेकर के कैसा आपका कॉन्सेप्ट आया कि बच्चों के लिए साइकिल और बाकी खिलौने लाए जाए?
2: आंगनवाड़ी तो पहले से ही सेंटर चल रहे थे
0: जी,
2: जब इसको बढ़िया बनाया गया, अच्छे तरीके से सुसज्जित किया गया, तो बच्चों की संख्या कम हो चुकी, छोटे बच्चे होते हैं, नटखट बच्चे होते हैं, तो उनको हमारे दिमाग में ये चीज़ आया कि अगर बच्चों के लिए खिलौना मंगा दिया जाए तो कम से कम उसी खेल खेल के बहाने जो है बच्चे कुछ जानकारी कम से कम आएंगे। तो बच्चों के लिए कुछ खिलौने की व्यवस्था प्रबंध कराई गई
0: जी।
2: वो सब बच्चे तो थोड़ा सा जब बच्चों में उत्साह बढ़ा तो फिर हमने कुर्सी की व्यवस्था करवाई
0: जी,
2: कि बच्चे आवे तो कुर्सी पर बैठे।
0: हाँ।
2: और चारों तरफ सभी दीवारों पे उनके पढ़ाई से संबंधित बिल्कुल निचले स्तर की जो पढ़ाई होती है, जिसे शुरुआत में अक्षर का, गिनती का, अक्षर का, इन सब चीजों का पहचानना
0: जी,
2: ये सब चीज सभी दीवारों पे हमने लिखवाया अंदर। आंगनबाड़ी में हमने लाइट की व्यवस्था कराई और दो पंखे लगवाए कि छोटे बच्चे हैं गर्मी में परेशान न हो।
0: सही।
2: और लाइट हमारे यहाँ बहुत दिक्कत रहती है, लाइट नहीं आती है, तो हमने सोलर पैनल बड़े लगवाए, 3.5 KVA का इन्वर्टर लगवाए कि उसी से हमारा कंप्यूटर लैब भी संचालित होगा और आंगनबाड़ी में भी लाइट की व्यवस्था रहेगी।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये सही कहा आपने, बना देना बड़ी बात नहीं होता, उसको चलाना, उसका संचालन बड़ी बात।
2: फिर जब कुछ खिलौना लाए उसके बाद में देखे बच्चे बढ़ रहे हैं, तो फिर एक दिन ऐसे चर्चा हो रही थी, हमने कहा कुछ बच्चों के लिए और ले आया जाए। हमने बच्चों के लिए कुछ साइकिलें मंगवा दिया, कुछ मॉडल है घोड़े का, प्लास्टिक का है, उसमें पहिया लगा हुआ है, कुछ घोड़े हैं, कुछ हाथी हैं, कुछ बतख हैं, इस तरीके के थोड़े थोड़े 3-3, 4-4 पीस करके जैसे साइकिल है। तो अब आज की तो ये स्थिति है कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में
0: जी
2: एक कमरा है 5 मीटर बाई 5 मीटर का, पूरा भर जाता है उसमें, इतना बच्चे आ जाते हैं गांव से, सुबह बच्चे रोने लगते हैं
0: जाना है
2: उनकी मम्मी, उनके पापा, उनके दादा दादी ले करके खुद आते हैं छोटे बच्चे को,
0: क्या बात है,
2: और छोड़ के जाते हैं बच्चे खेलने के लिए। क्योंकि देखिए हमारा गांव जो है देहात है एकदम से
0: जी,
2: और वहां पर हमारे गांव में गरीबी ज्यादा है
0: जी,
2: गरीब ज्यादा है
0: जी,
2: इसलिए कि हमारे गांव का जो प्रमुख साधन है मतलब
0: आय का जी,
2: ये कृषि है,
0: कृषि पर निर्भर है,
2: कृषि पर, और वो भी बहुत छोटे काश्तकार हैं
0: जी।
2: 1 हेक्टेयर भूमि वाले अगर कहिए कि 12.5 बीघे होता है, तो वही 12 किसान गांव में खोजने पे मिलेंगे, सब छोटे किसान, 1 बीघे 2 बीघे 3 बीघे वाले किसान हैं। कुछ जानवर वो पाल रखे हैं या कुछ मजदूरी करते हैं, तो इस प्रकार से छोटे बच्चों के लिए अगर ध्यान दे दिया जाए, चूंकि गरीब आदमी अपने बच्चे को अगर ये सब चीज नहीं ला पाता है, तो अगर स्कूल में कर देंगे तो बच्चे को ढोड़ना नहीं रहेगा, बच्चे दौड़ते हुए आएंगे।
0: सही बात है, ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया कि अगर घर पे वो चीजें सुविधाएं नहीं मिल पाती है तो स्कूल कॉलेज में करने से बच्चे आते हैं, और ऐसी जगह कहीं ना कहीं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है। क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं अवनीश प्रताप सिंह जी से, जो कि ग्राम प्रधान संगवा के हैं और ब्लॉक है छपिया, जिला गोंडा से ही, और इस बार 15 अगस्त 2025 को सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री जी आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, ब्रेक के उस पार वापस से हाजिर होते हैं और बताते हैं कि भाई स्कूल, पंचायत भवन और आंगनबाड़ी के अलावा कम्युनिटी के लिए, गांव के लिए किस तरह के आपके काम किए गए हैं और किस तरह से उसको सराहा गया है। सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9216 9876 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त RJ अदनान। और चूंकि आज हमारी बातचीत हो रही है श्री अवनीश प्रताप सिंह जी से, जो कि ग्राम प्रधान संगवा ब्लॉक छपिया जिला गोंडा से हैं, और इस बार 2025 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है आपके प्रधानी के उत्कृष्ट कार्य को लेकर के, और ये गोंडा के लिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और मुझे गर्व हो रहा है कि भाई मैं आपसे सामने से बात कर रहा हूँ। तो इससे पहले अभी हमने कहा था कि ये तो आपने बातें बताई पंचायत भवन की, आपने बात बताई कि किस तरह से उसकी नींव रखी गई आपके समय में, और साथ ही साथ उसका रेनोवेशन यानी उसका कायाकल्प किया गया। इसके अलावा आपने दोनों स्कूल्स के बारे में बताया कि एक को तो आपने पूरी तरह से मॉडल कर दिया और दूसरे पे अब काम आपका शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपने आंगनवाड़ी के बारे में बताया कि किस तरह से उसको रेनोवेट किया और उसके बाद उसमें किस तरह से खिलौने डाले ताकि बच्चे खुद आए, और ये भी आपने एक बता दिया कि आसपास के लोग उस तरह से चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए स्कूल या आंगनवाड़ी में इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की चीजें खेलने के लिए होना अपने आप में काफी बड़ी बात है। अब हम चलते हैं गांव को लेकर किए गए कुछ अलग से कार्य में, जिसमें आपका एक जो कदम है वो मुझे बहुत पसंद आया, जनरेटर की व्यवस्था। तो ये हमारे जरा श्रोताओं को जो सुन रहे हैं इस वक्त, आपको उनको बताइए जनरेटर की व्यवस्था आखिर किस लिए और किस तरह से इसका लाभ लोगों को, वहां पे रहने वाले लोगों को मिल रहा है।
6: जी, हमने जनरेटर 4 मंगवाए,
5: 4 जनरेटर।
6: ये गांव पंचायत के राजस्व भी प्राप्त होगा इससे, न्यूनतम दर पे।
5: अच्छा,
6: न्यूनतम दर मात्र ₹100 प्रतिदिन पर किराए पर एक जनरेटर।
5: अरे वाह।
6: जिससे मान लीजिए गांव में किसी को छोटा कार्यक्रम है, वो जनरेटर ले जाना चाहता है, या गांव में किसी छत की ढलाई हो रही है तभी जनरेटर, पानी के लिए जनरेटर
5: आवश्यकता होती है,
6: घर में कोई टाइल लगवा रहा है या कुछ काम कर रहा है तो जनरेटर की आवश्यकता है, जन्मदिन है या छोटे कार्यक्रम है तभी लाइट ना रहने के नाते, तो आदमी जनरेटर के लिए परेशान ना हो, तो हमने गांव पंचायत से 4 जनरेटर मंगवाए। कि जैसे अगर एक मंगाए या दो मंगाए, किसी दिन दो लोगों के यहाँ से कुछ काम पड़ गया तो तीसरा नाराज ना हो, तो इसलिए 4 रहेगा तो आदमी को हमेशा
5: उपलब्ध रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब आपने ये जनरेटर्स की व्यवस्था इसलिए करी है ताकि कोई छोटा मोटा फंक्शन होता हो
6: जी,
5: या छत ढलाई कोई कार्य, मतलब कैसा भी कार्य हो
6: जी,
5: तो उसमें अगर उनको जरूरत हो तो न्यूनतम दर आपने 100 रूपए रखी है
6: जी,
5: एक दिन का 100 रूपए किराया
6: जी,
5: वो भी उसकी मेंटेनेंस का है।
6: मेंटेनेंस का है
5: जी।
6: अगर फ्री कर दिया जाता तो लोग ले जाते तो रख लेते वापस ही ना लाते।
5: हाँ, मतलब ये कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत अच्छा है
6: जी,
5: कि मतलब आप पंचायत के ही पैसे को इस्तेमाल करके और लोगों के जरिए उसी पुनीत कार्य में आप लगा रहे हैं
6: जी।
5: ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, इसके अलावा चूंकि आपने एक चीज और बताई थी कि भाई आप कई और चीजों को करने वाले हैं, यानी आपका विजन है आगे आने वाले दिनों में कुछ और चीजें जो आपके अभी भी पैसे उसके आ चुके हैं लेकिन वो कार्य अब किया जाना बाकी है
6: जी।
5: तो हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं वो जानने के लिए काफी इच्छुक होंगे इस वक्त कि श्री अवनीश जी अब और कौन कौन से कार्य करने वाले हैं।
6: अपनी ग्राम पंचायत में, चूंकि पहले ही आपको बताया कि हमारा गांव गरीब लोग ज्यादा रहते हैं गांव में, तो सबके यहाँ फ्रिज की व्यवस्था नहीं है
5: जी।
6: गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी में पानी पीने के लिए, अच्छा वैसे भी पानी का आप जानते ही हैं कि पानी कितना प्रदूषित हो रहा है,
5: बहुत ज्यादा।
6: तो शुद्ध पानी अगर आदमी को मिले तो ये जो मेरा मानना है कि अगर पानी शुद्ध मिले तो 25% आदमी का रोग वैसे कम हो जाए, बीमारियां जो हैं 25% शुद्ध पानी से ही सही हो जाएगा।
5: सही।
6: तो इसलिए हमने अपने गांव पंचायत के बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया कि एक यहाँ आरओ प्लांट लगाया जाए।
5: क्या बात है, ये सभी के लिए?
6: सभी के लिए। तो उसका बात आई संचालन का, तो केयरटेकर नियुक्त करके वो प्रक्रिया के अधीन,
5: हाँ कोई इसको चलाने वाला होना चाहिए
6: जी,
5: जाहिर सी बात है।
6: प्रक्रिया वो पूरा बताएंगे तो विस्तृत हो जाएगा, इसीलिए
5: बिल्कुल
6: प्रक्रिया
5: बिल्कुल।
6: के अधीन
5: जी जी,
6: केयरटेकर नियुक्त करके
5: जी,
6: और हर घर पानी सप्लाई किया जाएगा, एक केन पानी 10 रुपए में।
5: अरे वाह।
6: जिसमें लगभग जो 20 लीटर का केन आता है
5: जी,
6: 20 लीटर पानी 10 रुपए में घर घर पहुंचा करके ठंडा पानी सबको दिया, और गर्मी में ठंडा पानी चलेगा और बाकी दिन आरो का पानी रहेगा केवल।
5: क्या बात है।
6: ठंडी मौसम में
5: हाँ,
6: जब ठंडा पानी नहीं पिंड जाता तब केवल नॉर्मल पानी जाएगा,
5: तो नॉर्मल लेकिन वो स्वच्छ और साफ होगा,
6: स्वच्छ साफ होगा, पहुंचा के दिया जाएगा। अच्छा, इसके लिए हमने एक महिंद्रा कंपनी की बैटरी चलित गाड़ी भी खरीद ली है।
5: अरे वाह, क्या बात है।
6: महिंद्रा जोर पीओ गाड़ी, जोर ग्रांड गाड़ी महिंद्रा की है, लोडर।
5: अच्छा,
6: पानी लादने के लिए बोतल
5: हाँ।
6: वो 20-20 लीटर के डिब्बे, उस पे पर्याप्त एक बार में 25-30 डिब्बे लग जाएंगे, लेकर के जाएगी, एक पूर्व गिरा के दूसरे पूर्व पैसे आदमी काम करता रहेगा।
5: मतलब आप 10 रुपए में घर घर डिलीवरी करा
6: जी, अब करने जा रहे हैं।
5: क्या बात।
6: भवन हमारा बन गया है, भवन बन गया है, उम्मीद है कि 15-20 दिन के अंदर हम पानी सप्लाई शुरू कर दें।
5: क्या बात है, वाह। ये मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात आपने कहा कि बहुत ही जल्द अब तो शुरू ही होने वाला है
6: जी,
5: और एक बाकायदा।
6: अच्छा, इसके साथ साथ जिसे लोग अपना जो पिएंगे यूज करेंगे
5: जी,
6: अगल बगल के गांव वाले हैं या जो हमारे नजदीकी छोटी मार्केटें हैं वहां सप्लाई है, दुकानों पे है, हर जगह सप्लाई किया जाएगा, उससे जो धन की प्राप्ति होगी उससे गांव पंचायत की आय भी तो बढ़ेगी।
5: बिल्कुल सही कहा आपने,
6: अच्छा खासा इनकम आएगा,
5: इनकम आएगा,
6: और इनकम आएगा उस पैसे से जो है गांव का विकास आगे विकास करने में वो सहायक सिद्ध होगा।
5: क्या बात है, मतलब आपने पूरा एक मॉडल बनाया हुआ है
6: जी,
5: कि किस तरह से ऐसे काम किया जाए जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो
6: जी,
5: और वो रेवेन्यू लगाया जाए गांव के विकास कार्यों में।
6: विकास कार्यों में।
5: क्या बात है।
6: कुछ अपने मतलब पंचायत आत्मनिर्भर के तरफ हम कदम चला रहे हैं कि हमारी पंचायत आत्मनिर्भर बने।
5: वाह, क्या
6: धीरे धीरे अब एक साथ धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए आज हमने ये चीज लगाया है, कुछ जनरेटर से पैसा आएगा, कुछ पानी से आएगा, कुछ गाड़ी मान लीजिए पानी नहीं ले जाना है, खाली है तो ड्राइवर अपना गाड़ी ले जा करके जो किसी के यहाँ कुछ सामान लाना है ले जाना है ये काम भी करेगा, तो जरूर कुछ ना कुछ पैसा आएगा, और जो पैसा आएगा वो गांव पंचायत के खाते में जमा होगा। हमने गाड़ी के ऊपर स्कैनर लगवा दिया है
5: जी,
6: पंचायत भवन पे स्कैनर लगा हुआ है,
5: अच्छा,
6: और हर जगह गांव पंचायत के खाते का स्कैनर चस्पा करा दिया है कि अगर कोई चीज जनरेटर पे लगा हुआ है स्कैनर कि आप अपना पैसा ऑनलाइन, उसमें पारदर्शिता भी बनी रहे।
5: वाह,
6: कि ये ना हो कि हाँ प्रधान जी ले ये पैसा ले लिया या इनके आदमी ने ले लिया तो पैसा इनके जेब में गया। सीधे आप वहाँ से फोन पे कर दीजिए स्कैनर पे।
5: वो पंचायत का अकाउंट है
6: जी
5: क्या?
6: गांव पंचायत का,
5: ग्राम पंचायत का
6: जी,
5: सीधे उसी में पैसे जाते हैं सारे। अच्छा, आपने पारदर्शिता की अभी जस्ट बात की कि लोगों को ये ना लगे पैसा कहाँ जा रहा है। आपने मुझे दिखाने के दौरान एक ऐसी लिस्ट दिखाई थी जिसमें एक एक पैसा उसमें लिखा गया था कि किस मद में कितना रुपए आया और कितना रुपए किस किस मद में खर्च हुआ है। मतलब पारदर्शिता का मैंने फिलहाल ऐसा नमूना कहीं और तो नहीं देखा। क्या ये आपसे किसी ने कहा था या आपका खुद का ये विजन था कि कोई पूछे उससे पहले हम पूरी की पूरी लिस्ट दिखा देते हैं?
6: देखिए ऐसा है, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे बहुत पैसा आया प्रधान जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खा लिए, हजम कर लिए, ये है तो इससे बढ़िया है कि हम लगा दे उसमें किसी को जनसूचना मांगने के लिए या किसी के, जब हम काम बढ़िया कर रहे हैं तो उसमें क्या जरूरत है अपना, हम ये तो शासनादेश भी है, लेकिन और शासनादेश भी है कि जितना पैसा खर्च किया जाए हर वित्तीय वर्ष वाइज उसका
5: ब्यौरा दिया जाए,
6: ब्यौरा दिया ना जाए
5: जी,
6: ब्यौरा गांव पंचायत के में सार्वजनिक रूप से उसको लिखाया जाए
5: ताकि सबको पता रहे,
6: वॉल राइटिंग कराई जाए। तो वो चीज हमने करवाई है, जब उसमें हमने गलत पैसा निकाला नहीं तो हमें करने में क्या हर्ज है।
5: सही बात है, ये तो है ही है कि मतलब जब आपने उस चीज में जिस काम को किया था उसमें अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो पारदर्शिता की जरूरत भी पड़ती है कि भाई आपने दिखा दिया तो किसी को पूछने का रह नहीं गया, यानी एक जो शक होता है वो रह नहीं जाता है
6: जी।
5: बेशक, तो ये बात तो बिल्कुल सही आपने कही। इसके अलावा कुछ सवाल और आ रहे हैं कि जैसे आपने एक काम कहा कि भाई बिजली की दिक्कत है
6: जी,
5: तो भविष्य में अगर लोगों का प्यार मिलता है आपको
6: जी,
5: क्योंकि अभी तो इतना मिल गया है कि लोगों ने आपको प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया है
6: जी, जी, जी।
5: और मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद हमेशा उनका बना रहे क्योंकि आपकी नीयत बहुत अच्छी है। तो अगर आपको वापस से मौका मिलता है या जितना भी आपके पास समय होता है उसमें और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप भविष्य में देखते हैं कि आप उसको करवा रहे होंगे?
6: सर्वप्रथम हमारे गांव में 465 मकान है।
5: 465
6: जी,
5: पक्के मकान,
6: पक्के कच्चे
5: मिला करके टोटल,
6: हाँ 465 मकान है जिसमें लगभग 35-40 परिवार का अभी आने जाने का रास्ता कच्चा है।
5: अच्छा,
6: तो ये पहली प्राथमिकता ये है कि पहले उसको
5: पक्का करें, उस
6: पक्का रास्ते किया जाए।
5: बिल्कुल
6: भाई, एक समान सबको हो जाए।
5: सही बात है,
6: तो पहले रास्ते को सही करने का पूरा प्रयास है।
5: बिल्कुल,
6: इसके साथ रास्ते के साथ जैसे हमारे गांव में अन्नपूर्णा भवन नहीं है, उसके लिए हमने गांव पंचायत से प्रस्ताव विकास खंड स्तर पे दिया है कि एक अन्नपूर्णा भवन बन जाए ताकि वहां भी पारदर्शिता हो जाए। जो राशन आता है वितरण के लिए कोटेदार के यहाँ
5: जी जी,
6: उसकी भी पारदर्शिता हो जाए।
5: क्या बात है,
6: कि भाई अभी तो अपने घर से बांट रहे हैं, जब पारदर्शिता हो जाएगी तो जनता को लाभ मिलेगा।
5: सही बात है, तो एक तो वो है,
6: एक अंत्येष्टि स्थल के लिए,
5: अंत्येष्टि स्थल
6: के लिए भी हमने इस बार प्रयास किया था लेकिन किन्हीं कारणों से हमारे यहाँ नहीं मिल पाया
5: जी,
6: तो फिर प्रयास
5: जारी रहेगा
6: कि अंत्येष्टि स्थल में चयन हो जाए।
5: बिल्कुल
6: जी,
5: तो ये तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा कि एक अंत्येष्टि स्थल हो जाए। इसके अलावा आपने एक बात कही थी मैरिज हॉल को लेकर के, उसका क्या है आपको लेकर के विचार?
6: मैरिज हॉल में इस बार मैं प्रयास इसलिए नहीं किया कि हमारे गांव पंचायत में मैरिज हॉल का जो मानक है उस मानक के अनुसार जमीन उपलब्ध नहीं
5: उतनी बड़ी संख्या में, मतलब
6: उतने ज्यादा एरिया में
5: जी जी जी।
6: लेकिन अगर सरकार की व्यवस्था बनती है कि छोटे जमीन में भी बनाया जाए छोटे आयोजन के लिए, तो निश्चित पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और ला करके बनवाया जाएगा।
5: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपने एक बात और याद दिलाई थी हमको कि स्कूल में इतना सारा काम तो करा दिया लेकिन एक स्मार्ट क्लासेस का काम जो है वो भी आपका है, विजन है आगे।
6: जी जी जी,
5: क्या विचार है इसके बारे में?
6: वो तो दिल्ली से लौट के आने के बाद ही स्मार्ट क्लासेस दोनों विद्यालय में स्मार्ट क्लास।
5: क्या बात है। अच्छा हाँ, मतलब उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है।
6: पूरी तैयारी हो चुकी है दोनों विद्यालय में स्मार्ट क्लास
5: जी।
6: और एक चीज और बता दें
5: जी,
6: भूल गए थे, हम उस विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय संगवा सिकंड में पंचायत भवन निर्माण के बाद जब इन सब चीजों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर रहे थे उस समय हमने वहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनवाया जिसमें आई लव संगवा
5: बिल्कुल काफी वायरल भी हो रहा है
6: जी। उसको मेरा यही ये था कि जैसे कोई भी गांव का युवा वर्ग या कोई भी मोबाइल लेके आया वहां खड़े होकर के जब फोटो अपना लेगा और कहीं सोशल मीडिया पे डालेगा तो दूर तक जो भी कोई देखेगा तो ये आई लव संगवा भैया कहाँ बना है।
5: सही बात है। एक जिज्ञासा
6: है तो संगवा गांव का नाम जो है दूर तक जाएगा। लोगों के हर आदमी यही सोचेगा भैया ये कहाँ का है।
5: सही बात है।
6: तो संगवा का नाम ज्यादातर लोगों के उसमें जाए भैया वही संगवा है जहाँ के अवनीत सिंह प्रधान।
5: क्या बात है। बिल्कुल। और ये बात तो अब तो तय ही है, जब प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे तो ये और भी खबर तेजी से फैलने वाली है और जो आपने सोचा था वो सच में वो होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और बात कही थी कि आप ये चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि दो प्राइमरी स्कूल है, एक को जूनियर हाई स्कूल में तब्दील कराने की आपकी आगे की इच्छा
6: जी। इसके लिए हमने जब हमारे गांव में प्रभारी जिला अधिकारी महोदया हमारे गांव में आई थी
5: जी,
6: तो गांव के लोग, गांव के जनता की तरफ से संयुक्त सबके हस्ताक्षर से एक मांग पत्र दिया गया था।
5: अच्छा,
6: कि एक विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल कर दिया जाए। फिर उसमें हमने पता किया तो उस समय उन्होंने बताया कि अभी इसका नए विद्यालय नहीं अलाट हो रहे हैं, जब अलाट होना होगा
5: तो उसमें इसको भी डाल दिया जाएगा। यानी ये आपका एक बड़ा विजन है कि एक प्राइमरी स्कूल को जूनियर हाई स्कूल में तब्दील कर दिया जाए
6: जी।
5: तो बच्चों को बहुत दूर आपके यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा
6: और बच्चों की संख्या भी बढ़ जाएगी। जैसे अभी तो बच्चे हमारे यहाँ पर्याप्त बच्चे हैं, दोनों विद्यालय में अगल बगल विद्यालय है, समझ लीजिए फर्स्ट और सेकंड की दूरी 50 मीटर
5: बहुत कम है, बहुत छोटी है।
6: और फिर भी प्राइमरी में अगर एक विद्यालय में हमारे यहाँ क्या दोनों विद्यालय में हमारे यहाँ 100 के नजदीक बच्चे हैं
5: जी।
6: 100 के नजदीक इसमें, 100 के नजदीक उसमें, दोनों विद्यालय में। एक तरफ जहाँ विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, और हमारे यहाँ इतनी संख्या है
5: वो भी इतने पास पास में
6: तभी।
5: सही बात है। तो ये कहीं ना कहीं वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसकी जो बनावट है, उसमें जो सुविधाएं आपने दी है, जिसको लेकर के इस तरह से बच्चों का उत्साह भी है और उनके माता पिता का भी विश्वास उस चीज के साथ में है। अवनीश जी, ये तो सब सही है। मतलब एक बात मुझे भी जहन में आई और शायद जो इस वक्त सुन रहे हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि अवनीश जी ने इतना बढ़िया कायाकल्प कर दिया, एक पूरी बाकायदा लोडर वैन मंगवा दी और इसके अलावा वाटर कूलर के लिए दो दो आपने लगवा चुके हैं, एक बड़ा वाटर ट्रीटमेंट भी आप करवाने जा रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपने पंचायत भवन में दे दी, कंप्यूटर लैब बनवा दिया। तो सब ये सोच रहे हैं क्या अवनीश जी को स्पेशली प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से ज्यादा पैसा दिया जाता है क्या कि वो इन सब कार्य को करा ले, या बजट आता है और बाकी ग्राम पंचायतों में अगर देखा जाए तो उस तरह से हो नहीं पाता है, क्योंकि आपके में भी काम उस तरह पहले तो नहीं था, आपने उसको मॉडल बनाया है। तो ये किस तरह से हम इस चीज को देखें कि जहां आपके अगल बगल में ग्राम पंचायतों में इस तरह से कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो आपके ग्राम पंचायत में कैसे कार्य हो रहा है।
6: देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी है
5: जी
6: कि पहले काम करवाइए फिर भुगतान लीजिए। अब मान लीजिए दूसरा प्रधान है, उसके पास पैसे नहीं है
5: जी,
6: वो काम कैसे कराएगा बेचारा। भाई पैसे नहीं है तो काम कैसे कराएगा।
5: और पॉलिसी है कि पहले कराइए तब लीजिए,
6: पहले कराइए तब लीजिए। ये है जैसे मजदूरी का है, मजदूरी 2 महीने 3 महीने 4 महीने में आता है और वो मजदूरी करने वाला मजदूर जो है वो दिन भर काम करता है, तब शाम को वो नगद पैसा लेता है, तब उसके घर चूल्हा जलता है।
5: बिल्कुल।
6: तो अब काम कराने में मजदूरी पास से देनी पड़ेगी। हम तो ऐसे करते हैं, बाद में जब पैसा आता है उसी खाते में जाता है तो उससे भैया जितना हम दिए थे उतना आप हमें रिटर्न दे दीजिए।
5: तो मतलब कहने का आपका मतलब है कि ये एक समस्या कह सकते हैं या एक चैलेंज कह सकते हैं कि देखिए सिस्टम तो यही है कि काम कराने के बाद मिलता है
6: जी।
5: और बाकी ग्राम प्रधान शायद इसलिए उस तरह नहीं अंजाम दे पाते हैं उतने कार्यों को, क्योंकि हर किसी के पास इतना नहीं होता कि पहले वो लगाएं
6: जी
5: उस स्तर पर, उसके बाद जब पैसा आए धीरे धीरे एक वक्त होता है, क्योंकि सरकारी पैसे आने में काफी प्रक्रिया होती है और काफी समय लगता है
6: जी।
5: और ये आपका मानना है कि भाई जिसके पास नहीं होता है तो उस तरह से काम इसीलिए शायद नहीं हो पाता है
6: जी।
5: अच्छा कभी आपने इससे पहले कोई मॉडल गांव विजिट किया है, कभी दिखाया गया आपको, बाद में आपको लगा कि यार इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ या कुछ ऐसा?
6: हाँ, एक बार जो है मॉडल गांव मुझे लेकर के गए, मुझे क्या कई प्रधान
5: जी
6: एक साथ थे, एक साथ सब कई प्रधान
5: जी जी
6: गए, एक हम लोगों का प्रशिक्षण था श्रावस्ती में।
5: अच्छा,
6: तो वहां पर लेकर के गए, जब उस पंचायत में दिखाने लगे कि ये इस तरीके से बना है, ये इस तरीके से बना है, तो हमने कहा कि ये जो मेरे यहाँ बना है उसका 50% भी नहीं है।
5: अच्छा।
6: और देख करके आए
5: जी,
6: और फिर यही मुझे लगा कि अच्छा काम करेंगे तो देखने वाले, जैसे आज वहाँ लाइन लगी है जा रहे हैं लोग,
5: हाँ।
6: हो सकता है किसी दिन हमारे यहाँ भी आवे देखने।
5: क्या बात है, सही बात है,
6: बाहर का आदमी आएगा देखेगा कि हाँ सराहना करेगा, और क्या
5: क्या चाहिए होता है। सही हाँ? बात है, बिल्कुल सही बात।
6: ऊपर वाले ने आप सबके आशीर्वाद से ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है
5: उससे ज्यादा सुन लिया
6: हाँ? तो
5: सच में,
6: और गलत पैसा अर्जित करेंगे तो गलत रास्ते पे ही जाएगा,
5: वो नहीं रुक पाता है। ये बात तो सच कही गई है कि उस तरह पैसा आता है तो उसी तरह बीमारी में और न जाने कहां कहां के खर्चों में चला जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और चूंकि अब चलने का भी समय हो रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अवनीश जी की अगर मैं जिंदगी को देखूं, पूरी उनके जीवन को देखूं, तो कौन कौन से मूल्य हैं जो वो कभी नहीं छोड़ते, अपने जीवन के मूल्य उसको करते ही करते हैं, दो से तीन शब्दों में या कोई बातों में अगर आप बताना चाहें कि ऐसी कौन कौन सी बात है जिसको आपने गांठ बांध लिया है और जीवन भर आप उसको पर्यंत करने की प्रतिज्ञा भी करते हैं कि मैं ये करता रहूंगा।
6: जिस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया है किसी भी प्रकार में, जो व्यक्ति मेरा साथ दिया है उसके लिए मैं भी दिल से बिल्कुल जी जहां लगा करके उसके मदद में रहता हूं
5: जी।
6: वो चाहे जिस रूप में मेरा साथ दिया है, मैं केवल अकेले चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी अगर वो आदमी मेरे काम आया है
5: जी,
6: तो उसके लिए मैं भी जिस लायक जहां रहता हूं वहां हमेशा खड़ा रहता हूं।
5: ये तो आपका एक मूल्य हो गया
6: जी
5: कि अगर आपका साथ किसी ने दिया है तो आप उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे, तन मन धन हर तरह से,
6: हर तरह से।
5: चलिए ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या है?
6: दूसरा यह है कि अपने कार्य के प्रति ईमानदारी वफादारी इसमें रहिए।
5: बिल्कुल, तो ये तो खैर आपके काम में भी दिखता है, क्योंकि आपने ईमानदारी वफादारी की बात कही तो जिस तरह पैसे आते हैं, ग्रांट आते हैं, पैसे सैंक्शंस होते हैं, उसके बाद जितनी चीजें आपने सुविधाओं में बता दिया है, मुझे लगता है जो हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं वो सच में हैरान होंगे और उनके मन में भी ये कौतूहल का विषय होगा कि अगर छपिया जाएंगे इस बार स्वामीनारायण छपिया मंदिर के पास में, तो अवनीश जी के ग्राम प्रधान से मिलके जाएंगे और उनके गांव संगवा को देखते हुए जाएंगे और आई लव संगवा पे एक फोटो लेकर जरूर जाएंगे।
6: बिल्कुल, सब लोगों का स्वागत है। मेरा मोबाइल नंबर है, वो हमारा मोबाइल नंबर 9838-9191-00।
5: क्या बात है, लीजिए प्रधान जी ने अपना नंबर भी दे दिया है
6: उस पे आ करके
5: जी
6: हमें कॉल करें, सारी चीजें हम दिखाएंगे।
5: तो मतलब जिस तरह से आपने बताई है चीजें, सुनने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि भैया ये तो किसी फिल्म में ऐसा लग रहा है कि सुन के एक नायक आता है और वो जिस स्कूल में पढ़ा है वहीं से उनको एकदम चेंज कर देते हैं और बिजली पानी सारी चीजों की व्यवस्था वो कर देते हैं, जो कि आपने सच में कर दिखाया है और लगातार निरंतर आप उस पथ पर अग्रसर हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और
6: इतना नहीं सर
5: जी,
6: इतना नहीं किए हैं, गांव ग्राम वासियों के लिए
5: जी
6: 6-7 रास्तों पे खड़ंजा लगवाया है, 2 जगह इंटरलॉकिंग रास्ते करवाया है
5: जी,
6: 4 जगह सीसी रोड बनवाया है ग्राम वासियों के लिए।
5: क्या बात है,
6: नलों जो इंडिया मार का हैंडपंप है उस पे सोकपिट का भी निर्माण करवाया है, तमाम ऐसे कार्य जो गांव में है जैसे किसी गरीब के यहाँ अगर कोई घटना घटित हो जाती है, गरीब आदमी है, उसके यहाँ भी पहुंच करके हम सहयोग जो था स्थिति से जिस दिन जैसा हमारे
5: कर सकते हैं
6: वैसा हम सहयोग भी करते हैं। हमारे ट्राली ट्रैक्टर किसी के यहाँ कुछ पड़ा तुरंत देते हैं। सारी चीजें जनता के लिए लगे रहते हैं रात दिन, एनी टाइम 24 घंटे में। कभी भी हम घर के अंदर नहीं सोते हैं, बाहर सोते हैं कि किसी को काम अगर लगे तो वो तुरंत आकर के हमसे मिल ले
5: आपसे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, और बल्कि आपने दिखाया था पंचायत भवन में आपका एक बाकायदा एक ऑफिस है जहाँ पे आपने बताया कि आप बैठते भी हैं वहाँ पे परमानेंट।
6: जी परमानेंट बैठते हैं 10 बजे से 2 बजे तक, अगर कहीं विशेष रूप से अगर मुझे जाना नहीं
5: कोई
6: हुआ,
5: काम ऐसा ना पड़ जाए
6: जी, तो मैं इधर उधर नहीं केवल पंचायत भवन पे बैठता हूँ। अगर गांव में ये चीज सुना, 14 मजरे का गांव हमारा है, अगर सुना कि किसी भी मजरे पे किसी के यहाँ कोई हादसा हो गया या किसी प्रकार की कोई क्षति हो गई है तो तुरंत दौड़ के पहुँचते हैं। किसी के यहाँ सुख दुख है उसमें पर्याप्त समय देते हैं।
5: बहुत अच्छी बात है।
6: ये भी पर्याप्त समय देते हैं, उनके यहाँ पूछते हैं कोई कमी है, इन सब चीजों को विशेष रूप से शामिल किया जाता है।
5: और बहुत अच्छी बात है, मतलब आपसे बातचीत करके मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है और मैं खुद मोटिवेटेड हो रहा हूँ कि शायद हाँ अपने काम को करने की ये ईमानदारी होती कि आपके जब अगल बगल में भी ऐसी चीजें ना हो लेकिन आप एक मिसाल कायम कर सकते हैं, और जो कि आपने कर दिखाया। और अब जाने से पहले हमारा बिल्कुल अंतिम प्रश्न यही है आपसे, या कह सकते हैं प्रश्न नहीं एक संदेश जो आपको सुन रहे हैं स्पेशली गोंडा वासी, पूरा गोंडा, और चूंकि एप्लीकेशन के थ्रू इसको हिंदुस्तान के बाहर तक भी सुना जाता है और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों तक भी सुना जाता है और इस वक्त आपको लोग सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
6: सर्वप्रथम हम अपने गांव की जनता को धन्यवाद कर कोट कोट प्रणाम हम गांव की जनता को करते हैं कि हमारे गांव की जनता ने ही मुझे उस लायक उस कुर्सी पे बैठाया
5: जी
6: कार्य करने के लिए, और आप सुनने वालों के लिए कह रहे हैं श्रोता बंधु से
5: जी,
6: तो वो कभी भी समय निकाल करके गोंडा जनपद से मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर, स्वामी नारायण छपिया से 9 से 10 किलोमीटर दूर
5: जी

0: प्यार से दिया गया नाम होता है।
1: जी
0: बिल्कुल सही बात है। तो भाई बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके, और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपको प्रधानमंत्री जी सम्मानित करने वाले हैं आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, और आने वाले समय में शायद गोंडा और बाकी पूरा देश इस बात की मिसाल और देखेगा कि अवनीश जी अपने ग्राम पंचायत के क्षेत्र में और कौन कौन से उत्कृष्ट कार्य जनहित में कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच। और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM आपको कहता है कि आप हमारे गोंडा के एक हीरो हैं, और ऐसे हीरो के लिए बहुत ढेरों दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में अवनीश प्रताप सिंह जी, ग्राम प्रधान संगवा ब्लॉक छपिया जिला गोंडा के। कैसे लगी बातचीत हमारी और आपकी, हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं एप्लीकेशन के चैट बॉक्स पर। फिलहाल सुनते रहिए अपना गोंडा FM, जिसको हम कहते हैं ये है गोंडा।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9268196091976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
7: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
8: डिलीशियस
9: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
8: और क्या क्या है खास?
9: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
8: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवन नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
10: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
12: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
13: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
12: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
13: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
12: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
13: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
14: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
15: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
14: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
16: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

नमस्कार, आदाब, प्रणाम। और भाई, आज है सावन का दूसरा सोमवार और आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे मीना वाला में। एंड यस भाई, शिव भक्ति में सारे लगे हुए हैं। और अभी अभी हमारे गोंडा शहर में दुखरनाथ के पास अच्छी खासी मात्रा में लोगों का जमावड़ा दिख रहा है और कोई हाथ में जल लिए खड़ा है। और रास्ते में जो मैंने कांवरियों को देखा, नंगे पैर, और अच्छी खासी गर्मी है शहर में, और मैं क्या कहूँ इस गर्मी का भी। उस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए भी लोग अपनी आस्था में कमी नहीं आने दे रहे हैं। तो शिव के लिए आस्था अगर इतनी प्रगाढ़ है तो कुछ शब्द हमारी तरफ से भी फटाफट से लाइव हो जाएं और जल्दी से आंखें मूंद के ध्यान से जरा सुने शिव की विशेषताओं को बताने वाला एक ऐसा स्रोत जिसको सुन के मन एकदम पावन हो जाता है।

ये जो शिव का स्रोत है, सबसे खास बात ये है इसकी कि इसे खास तौर पे, प्रमुख तौर से इसे जो है शिव की विशेषताएं बताने के लिए लिखा गया है। शिव से करुणा करने के लिए कहा जा रहा है और शिव से कहा जा रहा है कि शिव आपकी ये महिमा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव स्वयंभू हैं और ऐसी मान्यताएं हैं कि शिव जो हैं वो धरती पर विराजमान हैं। तो ऐसे ईस्ट को बुलाना बहुत आसान होगा जो हमारे आसपास हो। तो इसीलिए जब इंसान बहुत बड़ी मुसीबत में होता है तो वो भगवान भोलेनाथ को बुलाता है, मनाता है और कहते हैं कि ये ना सिर्फ एक स्रोत है बल्कि ये भगवान शिव को अर्पित एक, कह सकते हैं कि अपनी मनोकामनाओं के साथ एक रिक्वेस्ट है कि हाँ प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ और हम पे करुणा करो। तो चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग उठ गए हैं तो जल्दी जल्दी से उठ जाइए। फिलहाल आप लोग को पता ही है शंभू का मतलब शिव था, दिगंबर यानी कि आकाश को वस्त्र मानने वाले आपकी जय हो और साथ ही साथ दया करने वाले और जगत की रक्षा करने वाले जगदीश्वर आपकी कृपा हमें मिल जाए तो हम बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए आज की शाम को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको बता दूं कि आज भाई मंडे है और मंडे मीन्स आपका डे एंड यू हैव टू जस्ट गो फॉर योर वॉइस। आपको अपनी आवाज़ में कुछ बेहतर सुनाने का आज मौका मिलता है और मैं आरजे बीना आपके साथ आपके फेवरेट शो में गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला की शुरुआत कर चुकी हूँ आपके फेवरेट स्रोत के साथ शिव की मतलब आराधना करते हुए। जब भी हमें कुछ अच्छा शुरू करना हो अगर उसमें हम अपने ईस्ट को याद कर लें। और वैसे भी आज शहर में जहाँ देखो वहाँ कांवरिए दिख रहे हैं तो मन में अपने आप ही एक आस्था का दीपक जल जाता है और हम लोग भी थोड़ा सा आस्तिक तो हैं ही एंड पॉजिटिविटी आती है और कनेक्शन हो या ना हो पर हाँ लगता है कि हाँ आसपास कोई है जो हमें सुन रहा है, वो हमारा ईश्वर है। एक ईश्वर ही होता है जो हमें बिना कंप्लेन किए, हमसे बिना तंग आए हमारी हर बात सुनता है। बाकी चाहे वो दोस्त हो चाहे वो फैमिली हो, वो कभी ना कभी हमें गिव अप कर देते हैं कि अरे यार नहीं सुनना है तुम्हें, कितना बोलते हो तुम, कितनी रिक्वेस्ट करते हो, नहीं सुनना है। पर ईश्वर ऐसा है जो चुपचाप हमें ध्यान से सुनता है। तो चलिए रेडी हो जाइए। क्या हाल है सबके भाई, कैसे हैं सारे लोग? और मुझे लगता है कि हंसते मुस्कुराते हुए हमें थोड़ा सा आगे जाना है एंड यस आप लोग के साथ इस इवनिंग में आरजे बीना आपको उस जर्नी पे ले जाने वाली है जिसमें ना सिर्फ अलग अलग आवाज़ें होंगी बल्कि अलग अलग लिसनर की फीलिंग्स भी सुनने को मिलेंगी, किसी की कविता के रूप में, किसी की उसके मतलब गाने के रूप में, कोई शायरी सुना देता है। तो मुझे लगता है कि हर दिन इसीलिए खास हो जाता है। वैसे आप लोग बताइए आप लोगों ने चाय वगैरह पी या फिर आज सब व्रत रख के बैठे हुए हैं? वैसे मुझे ये जानना है कि किस किस लड़के ने व्रत रखा हुआ है और किसके लिए व्रत रखा है, भगवान शिव के लिए या फिर कुछ मांगने के लिए? वैसे व्रत तो हम सभी रखते हैं, ऐसा नहीं है, किसके लिए रखते हैं ये तो हम जानते ही हैं क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान थोड़ा सा लालची तो है ही, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही मांगेगा। तो आज वैसे मैं आपको बता दूं कि आज वर्ल्ड लायन डे है। तो आज का दिन लायन को समर्पित है। क्यों मना रहे हैं आपको भी पता है कि वर्ल्ड लायन ने हमें हमारे एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए मनाना ज़रूरी है, जिससे अवेयरनेस आए और बेवजह हम उनके घरों को उनके जंगलों को नष्ट ना करें और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाएं। और आपको हमारे देश के जाधव के बारे में तो पता ही है, जाधव ने कितने हज़ार पेड़ लगा दिए और एक बंजर ज़मीन को एक ऐसी ज़मीन बना दिया कि जहाँ पे फिर से जीवन आ गया, सारे जंगली जानवरों को वापस से घर मिल गया। तो हम जंगली जानवरों को तो घर नहीं दे सकते क्योंकि इतना तो हम लोग नहीं, आसपास हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पर हाँ एक आध पेड़ लगा के बहुत सारे छोटे मोटे जीवों को, बहुत सारी पक्षियों को घर जरूर दे सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से उठ जाइए और आज दूसरा सोमवार है सावन का, तो सबने अच्छे से भक्ति भावना दिखा दी हुई, आज प्रदोष भी है तो आज का दिन और भी ज़्यादा शुभ है। गुड इवनिंग केके जी, कैसे हैं आप? और
मैम हम कभी भी व्रत नहीं कर पाते। क्या बात है, बिल्कुल सही है। देखिए व्रत का मतलब क्या होता है, व्रत का मतलब है किसी भी चीज़ का त्यागना, त्याग करना। तो आपने अनाज यानी कि खाने को त्याग करना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप किसी बुरी आदत का एक दिन के लिए त्याग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर बुरी आदत है, कोई भी बुरी आदत, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी समोसे खाने की आदत है। वैसे समोसा ऐसी नहीं है कि बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन हाँ हम रोज़ खा रहे हैं तो वो थोड़ा नुकसानदेह, तो एक दिन के लिए हम समोसे को ना खाएं। या हमारे मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलते जो नहीं निकलने चाहिए, तो एक दिन के लिए हम ऐसे मतलब अपने आप को बांधे कि मैं आज बिल्कुल भी अपशब्द नहीं बोलूँगा। या हमारी आदत होती है झूठ बोलने की, मतलब हम सभी झूठ बोलते होंगे, मैं खुद की बात कर रही हूँ। तो उस दिन के लिए हम कहें कि हाँ मतलब मैं आज व्रत करता हूँ कि मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा या बोलूँगी। तो मुझे लगता है ये वाला उपवास और बेहतर होगा, बशर्ते कि हम खाने या पानी या इन सब चीज़ों को त्यागें। आस्था होनी चाहिए मन में, और भक्ति से अगर आप किसी एक इंसान की मदद भी कर देंगे तो वो भी मुझे लगता है कि ईश्वर के लिए अच्छी अच्छी साधना होगी। और बाकी व्रत रखना तो एक मतलब हम लोगों ने वो बनाया है कि हाँ एक थोड़ा सा पॉजिटिव रहने का, और शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है व्रत वगैरह रखना। अगर हम नहीं रख पाते तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसे करने से हमें, देखिए व्रत करने से हमें आत्मसंतुष्टि होती है। व्रत करके हम किसी को भी कुछ नहीं करते, किसी को भी बेनिफिट नहीं करते, जो भी करते हम अपने लिए करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि व्रत करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साइड में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिन्हें करके ना सिर्फ हमें बल्कि आसपास के लोगों को भी संतुष्टि मिलेगी। कुछ एक दिन के लिए कुछ भी ऐसे बना लीजिए कि हाँ आज के दिन मैं ये नहीं करूँगा, आज के दिन मैं फ़ोन नहीं यूज़ करूँगा। लो फ़ोन आया तो मैंने पिकअप किया, और मतलब मैं कॉल के लिए बस फ़ोन यूज़ करूँगा, नथिंग एल्स। बहुत अच्छा होगा। तो केके जी ये भी आप कर सकते हैं। मेरे लिए तो मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन यही बताऊँगी कि एक दिन के लिए आप फ़ोन का त्याग करिए। फ़ोन का त्याग मतलब कि आप सिर्फ फ़ोन उठाइए और फ़ोन करिए और कुछ भी नहीं। झूठ बोलना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तब बताइए आप किसी भी चीज़ का त्याग नहीं करेंगे तो फिर आपका व्रत नहीं हो पाएगा। तो चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और वापस से आप लोग के पास आपके कॉल का इंतजार करते हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले कॉल करके क्या सुनाता है। मैंने तो अपनी बारी पूरी कर दी, अब आपकी बारी है। बारी आपकी है। तो एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं आप लोग के साथ, इवनिंग वाला, जो आपको और मेरे दिल को एकदम खुश कर देगा।

0: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। अगर ऐसा कोई आपसे कह रहा है आके तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से प्यार करता होगा। क्या बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं शाम के पीक टाइम पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे गोंडा शहर की शाम ढल रही है और चाय की प्याली आधे से ज़्यादा लोग हाथ में लेके बैठे हुए हैं, साथ में दूसरे हाथ में मोबाइल है, और अगर दिल में कोई है तो मोबाइल में उसका नाम टाइप करके भेजिए ना, तब तो हमें भी पता चले, ये तो अपने दिल में रख के क्या करेंगे। फिलहाल आपकी आरजे बीना के साथ आप सुन रहे हैं ज्ञान सिटी 9.6 एफएम। यह है गोंडा शहर की धड़कन, जहां आपके बात होगी, आपके साथ होगी, और आपकी शिकायतें होंगी और उन शिकायतों में आपकी ही बात होगी। तो फिलहाल देखते हैं किसके किसके फोन का नेटवर्क या वाईफाई अच्छा चल रहा है। फिलहाल जनहित में जारी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क खत्म हो चुका है तो स्टेशन पहुँच के आराम से फ्री वाईफाई के साथ आप ज्ञान सिटी 89.6 के साथ जुड़ सकते हैं। वैसे शहर वालों के लिए तो मैं बता दूं कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी को ही ट्यून कर सकते हैं, आपको किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि दिल ने कहा अब तुम किसी का नाम दिल में रखो। अब दिल ने कहा कि अब तुम किसी का नाम दिल में रखो, मोहब्बत अगर है तो उसे इजहार कर दो। फोन हमारे पास है, बस नंबर का इस्तेमाल करो और उससे अपने दिल की बात कह दो। आहा, वो जमाने गए जब मिलके या चिट्ठी से बात की जाती थी। यहाँ है भाई, कॉल करके कंफर्म करो मामला सेट है, नहीं है तो चलो कहीं और चलते हैं, नहीं सेट है तो सेट है तो भाई चलो घूमते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो चलिए कहीं दूर जाने के पहले पास चलते हैं, एक कॉल आ गया उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, हमारे लिसनर का कॉल था। लेट्स वेट अगेन, जिसका कॉल था वो दोबारा करेगा। हेलो
1: हेलो,
0: गुड इवनिंग।
1: सुनाई पड़ रहा है अभी?
0: हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग, आपकी आवाज बहुत क्लियर।
1: जी गुड इवनिंग
0: जी, आपका नाम?
1: जी भाई, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश।
0: अविनाश जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, आपके साथ आरजे बीना आपके शो गोंडा मैसेज मसाला में। कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, और गोंडा मैसेज मसाला कार्यक्रम में पहला ही कॉल लग गया है तो बहुत ही अच्छा।
0: कॉन्ग्रेचुलेशन, मुस्कुराइए, आज आप फर्स्ट आए हैं क्लास में।
1: जी जी बिल्कुल, मुस्कुराना चाहिए क्योंकि मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जय जी, ऐसा ही मतलब कि आप मुस्कुराहट ला दिया आपने।
0: क्या तो बात है, मैंने सिचुएशन से आपने गाना सुनाया है।
1: जी जी, ये तो मैंने बस थोड़ा सा एक झलकी थी, बस आपको मुस्कुराहट के ऊपर मैंने सोचा चलिए दो लाइन एक्टिव गुन बना लेते हैं। अभी तो पूरा मतलब कार्यक्रम पड़ा हुआ है, अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए आज आप क्या सुनाने वाले, ऐसे मंडे है, लाइन्स डे भी आज, और यहाँ मतलब इधर यूपी में सोमवार का बड़ा महत्व है, तो आज सेकंड सोमवार है, वैसे वहाँ भी होगा, आप लोग भी मतलब भगवान
1: जी जी यहाँ पे भी तो मनाए जाते हैं, लेकिन देश भक्ति संगीत तो मुझे मतलब कि थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा तो नहीं, इसलिए
0: कोई भी सुनाइए, आप अपनी मर्जी से सुनाइए।
1: अच्छा, तो कोई भी, मैं तो ज्यादातर देशभक्ति गीत ही गाते हैं, तो इसलिए मुझे देशभक्ति गीत ही पसंद है ज्यादा।
0: मतलब
1: या फिर आप रोमांटिक सॉन्ग बनेंगे तो भी सुना सकते हैं, या फिर कोई सैड सॉन्ग हो तो भी सुना सकते हैं,
0: ये आपकी मर्जी। अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सुना दीजिए, अगर आप पैट्रियोटिक सुनाना चाहते हैं तो वो भी सुना सकते हैं। भाई 15 अगस्त आ रहा है, आज़ादी बहुत करीब है हमारे, तो आज़ादी तो मिल चुकी है लेकिन हाँ सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है, तो कोई भी सुना सकते हैं।
1: जी जी, तो चलिए मैं एक 15 मतलब कि हमारे आने वाले जो 15 अगस्त की इसी के ऊपर ही मैं एक स्वतंत्र संग्रामी जो हमारे जो मतलब कि देश के बाहर बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब कि देश के बाहर हैं, उनको अपना देश पुकारता है लेकिन वो ऐसे अपने काम को छोड़ के आ नहीं पाते हैं, या फिर अपने तर जाते हैं अपने यहाँ पर ये सुनाने के लिए, तो उन सबके लिए एक गीत मैं सुना देता हूँ. चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है. बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद. वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है.

रोते हैं बहुत ज्यादा, हम रोते हैं चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद।

छोटी गोली पनघट सोना पीपल सोना घर शमशान का बना नमूना फसल कटी आई बैसाखी तेरा ना रह गया बाकी चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है चिट्ठी आई है डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना मैं तो बाप हूँ

सूरत से लगती है मेवा, तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ा।

0: कमरा बहुत है छोटी, अपने घर में दी है रोटी। चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है जी।
1: क्या बात है, और खास बात ये है कि आपको इतना अच्छे से याद है अविनाश जी, यू हैड इनक्रेडिबल, मतलब इतना कंसिस्टेंटली आपने गाया, बिना भूले गाया, और उतना ही मतलब फील करके गाया, ना सिर्फ गाया। मतलब एक होता है गाना जो शब्दों को बस हम लोग संगीत के साथ पिरो के गा देते हैं, और एक होता है कि उसको फील करके गाना, बट मुझे ये महसूस हुआ कि आप महसूस करके गा रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत
0: शुभकामनाएं। मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है।
1: थैंक यू सो मच। और अगर इतनी मतलब फीलिंग सबके अंदर रहे तो शायद देश में किसी तरह का कोई भी मतलब मुझे लगता है भ्रष्टाचार ना हो। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी जी बिल्कुल, और खासकर तो मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, देखिए हम सब आने वाला जो अभी हर घर तिरंगा अभियान जो होने वाला है, और हम 15 अगस्त अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, तो हमें यह ध्यान रखना है कि क्योंकि हम तो ध्वज फहराते हैं, और छोटे वाले जो तिरंगा होते हैं इसको हम मतलब कि देखते हैं कि इधर उधर पड़े रहते हैं, तो इससे हम सबका देश का भी अपमान होता है, क्योंकि हम सबका तिरंगा अपना स्थान होता है। तो इसका हम सबकी जिम्मेदारी है, जिस तरह से हम छोटे तिरंगा को लगाते हैं तो उन सबको इकट्ठा करके रखें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश के मतलब कि इस तिरंगे खातिर कितने हमारे शहीद हुए हैं, तो इन सबके शहीदों को हम ऐसे मतलब कि माटी में धूल मिटते हुए नहीं देखते, इसलिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर के इस तिरंगे को मतलब कि इधर से पढ़ने से पहले हमें उठा के रख देना है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे लगता है कि हम इस चीज़ को अगर ध्यान से समझें तो बहुत बड़ी बात है, कि तिरंगा फहराना बड़ी बात तो है ही, लेकिन तिरंगा फहराने के साथ जो सड़क पे तिरंगा हमें दिख रहा है उसे हमें गले से लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो अविनाश जी ने अपनी आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाया, और हर इंसान अपनी मतलब चाहे वो सक्सेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, और घर से जाने के बाद एक जो रिश्ता है वो ऐसा लगता है अधूरा सा हो गया। एनीवे ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पर क्या करें, हमें इन सब चीज़ों के बाद भी अपने फैमिली को, अपने देश को, अपने परिवार दोस्तों को अपने दिल में रखना है, और थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सबको ये याद दिलाना है कि वो अभी अभी हमारे दिल में है। तो गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं? सविता जी कैसी हैं? महेंद्र, दीपेंद्र राजस्थान से, आप सभी को वापस से एकदम बढ़िया वाली इवनिंग की मतलब एकदम शुभकामनाएं, और फटाफट से एक एक कप चाय बनाइए या कॉफ़ी बनाइए या कोई भी बेवरेज जो आपको पसंद हो वो बनाइए, और मेरे साथ बैठ जाइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग हाइड्रेटेड रहें। तो चाय की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगले कॉल की ओर रुख करते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। हेलो
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो?
1: गुड इवनिंग, कैसी है अनु? अनु क्या हाल है, कहाँ से बात कर रही है अनु? सब लिसनर्स को बता दें आप।
2: मैं गोंडा से बात कर रही हूँ।
1: ओह गोंडा से बात कर रही है, तब गोंडा में कभी दिखी नहीं मुझे आप। एनीवे कोई बात नहीं, आज आप सुनाने क्या वाले हैं ये बताइए।
2: पता है, मैं गोंडा तो बहुत बड़ा है ना, तो पूरे गोंडा में एक साथ कैसे दिख पाएंगे हम।
1: ये बात तो सही है, लेकिन हाँ चांद भी इतने बड़े आसमान में है फिर भी दिखता रहता है। एनीवे कोई बात नहीं,
2: तो मैं वो ना वो चांद है।
1: ये बात सही है। ये बताओ अनु, आपने व्रत रखा है कि नहीं? आज आपका व्रत है फास्ट?
2: आज तो नहीं रखा है,
1: आज नहीं रखा है। भूख लग गई होगी थोड़ी ज्यादा ना?
2: मंदिर गई थी, थक गई, हमने कहा व्रत ही रखते, लेकिन नहीं रखा तो फायदा हो गया। मेरे यहाँ नन्ही परी आई, हमने मिठाई बनाई फिर खाई, और आपको बुला रही हूँ।
1: कांग्रेचुलेशंस, आपके घर आई एक नन्ही परी, बहुत
2: मैम पता है वो हमारी जानवर की नन्ही परी है।
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं,
2: थैंक यू मैम। और पता है उसका नाम भी हमने रख दिया है जुगनू।
1: जुगनू, अरे यार ऐसा नाम मत रखो, बड़ियों के तुम ही तुमको मतलब डांटती रहे कि क्या ये मतलब, अपना तो अच्छा नाम रख लिया और मेरा जुगनू।
2: मैम जुगनी नाम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए रख दिया। एक का नाम मैंने भालू रखा था, वो पिछले साल हुई थी।
1: हाँ बस बड़े होने दो, फिर वो भालू बन के तुम्हें खाएंगे भी, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं।
2: लेकिन मैम बहुत अच्छी है, बहुत नाच उठवाती है जो भालू है, वो किसी का जूठा भी नहीं खाती है।
1: ये क्या होता है?

0: ये तीसरे बैंड पे नहीं मिल रहा है, तीसरे बैंड पे जैसे लग रहा है बस थोड़ी सी आवाज आ रही है, क्या आवाज आती है हमको नहीं समझ में आता है। हम चौथे बैंड पे सुन रहे हैं, चौथे बैंड पे तो अच्छे से आवाज मिलती है पर तीसरे बैंड पे नहीं मिलती है।
1: तो इस बात को हम नोट डाउन करते हैं और इसका सलूशन हम लोग जल्दी से निकालेंगे।
0: हाँ, मैं पता है पहले ना तीसरे बैंड पे अच्छे से मिलती थी आवाज, अभी नहीं मिल रही है। चौथे बैंड पे कभी अगर गायब हो गई तो फिर नहीं सुन पाएंगे।
1: हाँ नहीं नहीं, गायब होने से पहले हम तीसरे पे भी आ जाएंगे। तो आज क्या सुनाना है?
0: आज मैं एक देशभक्ति गाना सुनाना चाह रही थी।
1: बाबा क्या बात है।
0: मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।

0: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना नहीं, ये मेरा बचपन है, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। ये बात तो
1: हमको ये
0: सही,
1: गाना बहुत अच्छा लगता है। और
0: मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत। तो
1: एक गाना और है जो भी मुझको बहुत अच्छा लगता है, पर वो आज नहीं सुनाऊंगी। नहीं,
0: वो आज नहीं सुनाओगी? ओके ओके। और घर में आपके सब लोग ठीक हैं? उस नन्ही सी परी को बहुत सारी शुभकामनाएं, उसके लिए मैं गाना प्ले करती हूँ। ओके okay?
1: थैंक यू मैम। और पता है मैम, आज ना मैं आपकी बात मम्मी से करवाने वाली थी, पर मम्मी तो बिजी है नन्ही परी के स्वागत में, वरना मैंने सोचा था आज मम्मी से बात कराएंगी आपकी।
0: अरे वाह, क्या बात है। मैं तो बिल्कुल,
1: मम्मी ना लोकगीत बहुत अच्छे से गा लेती है।
0: ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक दिन थर्सडे को उनसे लोकगीत सुनेंगे हम। थैंक यू। ठीक है,
1: ठीक है,
0: ठीक है,
1: ओके मैम,
0: ओके
1: बाय।
0: अनु, बाय, टेक केयर। तो भाई अनु से बात हो गई, और अनु ने बहुत अच्छा सा गाना सुनाया, जो हम लोग बचपन में अक्सर जब भी पार्टिसिपेट करते थे 15 अगस्त या किसी भी मतलब पेट्रियोटिक डे में, तो ये गाना ज़रूर गाते थे बचपन में, मेरा मुल्क, या फिर इस पे डांस करते थे, और एक अलग ही वाइब आती थी। चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका है। और जैसे कि हम लोग को पता है कि आप लोग के कॉल से हम लोग की बातें नहीं, अब हमारा दिल जुड़ जाता है, तो जब तक कॉल नहीं आता तब तक एक गाना सुनते हैं हम लोग। ठीक है, गाना है एक बड़ा प्यारा सा जिसको मैं सुनाने वाली हूँ आपको, जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा। फिलहाल मजा थोड़ी देर बाद लेंगे हम लोग, गाना सुनने से पहले कॉल सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो
0: शुभ संध्या।
2: हेलो हेलो।
0: हेलो, नमस्कार, शुभ संध्या
2: हाँ, मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी अनिल जी, कैसे हैं? स्वागत है आपकी आवाज का।
2: आजकल लग रहा है आप बरत रह रही हैं, गाना तो नहीं गा रही हैं।
0: नहीं, मैंने तो स्टार्टिंग में सुना दिया, आपने सुना नहीं शायद।
2: अच्छा, लगता है हमको लेट हो गया कुछ।
0: हाँ, आपने लेट में ट्यून किया। मंडे को तो स्पेशली मतलब कुछ ना कुछ रहता है स्टार्टिंग में।
2: अच्छा,
0: ये आपका मतलब।
2: मैं आज मैं ट्रैक से हट के चंदन साहब की गजल सुनाना चाहता हूँ।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। वैसे चंदन जी की गजलें, गजलें होने के साथ साथ वो एक मतलब कह सकते हैं कि रोमांटिक गानों की भी फील देती हैं। ऐसा नहीं कि वो गजलें दर्द से भर के गाते हैं, उनकी गजलों की खास बात है। चलिए स्वागत है। हेलो, हेलो, अनिल जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए इंतजार करते हैं, बेशक कॉल आ भी गया है मुझे लग रहा है। हेलो
2: हेलो
0: जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस से आपके पास का स्वागत है।
2: जी। तो ये चंदन दास की गजल है, कहीं चांद राहों में खो गया।
0: वाह क्या बात, क्या बात, मेरी फेवरेट गजल है, स्वागत है।
2: तो कोशिश कर रहा हूँ, गलतियाँ होंगी तो क्षमा कीजिए।
0: नहीं नहीं स्वागत है, स्वागत है, दिल से स्वागत।
2: कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी

0: कहीं ना। थैंक यू।
1: क्या बात है, क्या बात है। समा बांध दिया, समा आपने बांध दिया। और एक गजल जो है उसके लिए थोड़ा सा मतलब ये होता है कि वार्म अप करना होता है, बाकी आपने जो गजल गाई बेहतरीन गाई, क्या कहने, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब इतनी जल्दी और इतनी बेहतरीन गजल कोई आसानी से नहीं गा पाता। थैंक यू सो मच। तो चलिए, हम अनिल जी का कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गया और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, अगली कॉल देखते हैं। हेलो,
2: गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग, आपका नाम?
2: रोशनी बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र से।
1: महाराष्ट्र से रोशनी, ओ क्या बात है। रोशनी, पहले तो स्वागत है आपका महाराष्ट्र से। आप हमें सुन रही हैं और आपके साथ आरजुबीना लाइव है आपके शो गुंडा मैसे मसाला में 89.6 FM पे। तो रोशनी, बहुत अच्छा लग रहा है वापस से आपका।
2: तनुश्री,
1: ओके तनुश्री, मैंने थोड़ा गलत सुन लिया, तो मुझे लग रहा है कि मेरी दूसरी बार बात हो रही है और इंतजार था मुझे आपके कॉल का। तो ये बताइए रोशनी, महाराष्ट्र में बारिश हो रही है?
2: मैम अभी तो नहीं हो रही, अभी मतलब सुबह दोपहर को हो रही थी पर अभी नहीं हो रही।
1: अभी नहीं हो रही है और हम लोग तो बारिश के लिए बिल्कुल परेशान हैं। आप लोग बहुत लकी हैं जो वहाँ अच्छी खासी, लेकिन लकी नहीं,
2: अरे बारिश नहीं, परेशान भी करती है।
1: परेशान भी करती है बारिश वहाँ बहुत आप लोग को।
2: नहीं नहीं मैम, इधर से तो सुबह से धूप निकल, हम आज गर्मी से परेशान थे पर दोपहर को थोड़ी सी बारिश हुई ना दो के बीच, तो अच्छा मौसम हो गया था पर अभी बारिश नहीं है।
1: ओ क्या बात है। तो आज आप क्या सुनाएंगी तनुश्री
2: जी? मैम वे गाने सुनाने वाले, आप सभी आज देशभक्ति का गीत सुना रहे हैं पर मेरे देशभक्ति का कोई गीत क्या बोलते हैं याद नहीं किया।
1: कोई बात नहीं, आप 15 अगस्त को सुना दीजिएगा, आज आप सुना दीजिए कोई भी जो आपको पसंद है। ये तो अपनी फीलिंग है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप कोई भी सुना सकते हैं
2: जी।
1: तो कौन सा सुनाएंगे
2: जी मैम?

0: क्या बात है तनुश्री, आपने गाना नहीं गाया, आपने मतलब हम लोग को दीवाना कर दिया अपना। कितना
1: थैंक यू मैम।
0: वो जो बीच में हंसी थी उसको मुझे फील करके एकदम गूज बम्स फील हुआ। ऐसा लग रहा था कि मेरे मतलब पूरे हाथ के बाल खड़े हैं, एकदम इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊं। वाह,
1: थैंक यू,
0: कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा गाती हैं तनुश्री। मतलब अगर आप पास में होती तो मैं जरूर आपसे मिलना चाहती, पर क्या करूं, दूर हूं। बहुत सारी
1: शुक्रिया। कोई नहीं, बात तो से एक दूसरे से मिल ही रहे हैं हर हफ्ते।
0: क्या बात है तनुश्री, ये आपकी जो स्माइल है ये आपकी पहचान है, और ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार।
1: ओके,
0: बाय बाय। सो लिसनर्स, ये हमारी बहुत प्यारी सी लिसनर्स हैं, लिसनर हैं, और जैसे मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो कानों को हमेशा याद रहती हैं। और मैं पहले बताना चाहती हूँ, तनुश्री आँखों से मतलब देख नहीं सकती, पर इन्होंने अपनी शब्दों से ऐसा समा बांध दिया जो मैं नहीं बांध सकती एग्जैक्टली, मतलब मेरे बस की बात नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है कि हम सभी एक दूसरे को देख नहीं सकते और एक दूसरे से कितने कनेक्टेड हैं, एंड यही है रेडियो स्टेशन होता है, यही है मतलब ये एक रेडियो की पावर होती है, एक फ्रिक्वेंसी की पावर होती है जो एक दूसरे को दिल से कनेक्ट करता है, एंड दैट्स द मतलब मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच तनुश्री, बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे के पूरे 89.6 FM की तरफ से। तो देखते हैं, चलिए अगले कॉलर की बात करते हैं, कौन है हमारे साथ। फिलहाल तो बहुत सारे कॉल्स एक साथ आ रहे हैं और मैं एक भी कॉल मिस नहीं करना चाहती। अगली आवाज़ सुनते हैं किसका। हेलो,
2: हेलो,
0: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
0: ओ राकेश जी, हमसे बात कर रहे हैं शिमला से।
2: जी जी जी, शिमला से। थैंक यू, वेल, आपका आपने मुझे पहचान लिया है।
0: बिल्कुल, मैं अपने मतलब ऐसे लिसनर्स जो मुझे रेगुलर कांटेक्ट करते हैं तो उनको तो मैं दिल में बसा लेती हूँ अपने। थैंक यू सो मच राकेश जी कॉल करने के लिए। कैसे हैं आप
2: जी? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं।
0: तो आज आप क्या सुनाने वाले हैं, कुछ अच्छा सा प्रिपेयर किया आपने?
2: आज मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ, साजन मूवी का।
0: साजन मूवी का, ओहो क्या कहने, अब तो मैं इंतजार करूँ क्योंकि साजन मूवी हम सबकी फेवरेट है और उसके कुछ गाने तो बहुत ज्यादा। चलिए देखते कौन सा गाना आप सुनाते हैं।
2: जिए तो जिए कैसे, ओ बिन आपके जिए तो जिए कैसे, आपके लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कोई सदा पर खुदवा होगी, कैसे कहीं सदा कैसे बदुआ होगी, मैंने किया है ये फैसला है जीना सकूंगा तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे ओ बिन आपके, जिए तो जिए कैसे
0: क्या बात है। और बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आप लोग की आवाज़ सुने बिना भी मतलब 89.6 FM और ये RJ जी नहीं सकते। थैंक यू सो मच, क्या बात,
2: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो राकेश ने साजन फिल्म का ये गाना सुना के हमें मतलब ये तो फील करा दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग जीवन में हमारे हैं जिनके बिना हम जी तो नहीं सकते, नेवर। तो जिए तो जिए कैसे बिना आपके। तो फिलहाल चलिए हम भी जीने की कोशिश करते हैं इस प्यारे से गाने के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और एक कॉल और, फिर सुनते हैं ये गाना। हेलो,
2: गुड इवनिंग सुरेश कुमार।
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, कैसे हैं आप सुरेश जी, क्या हाल है?
2: हाँ ठीक है, बड़ी मुश्किल से फोन लगाया भी।
0: मैंने गाना लगा के भी आपका कॉल जल्दी से उठा लिया, मैंने कहा क्योंकि कुछ कॉल्स ऐसे होते हैं जो काफी इंतजार के बाद लगते हैं, तो मैं चाहती थी कि आपकी आवाज जल्दी से मैं ऑन एयर करूं, क्योंकि हमें इंतजार रहता है कि इस बार सुरेश जी क्या सुनाएंगे, कौन सा गाना निकाल के हम लोग के नाम करने वाले हैं। क्या कहने, आज क्या सुनाइएगा?
2: आज हमारे राजकुमार मूवी का।
0: क्या बात है,
2: रति की आवाज है।
0: स्वागत है।
2: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे लूट कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, दीवाना कर रही है तौबा शिकन अदाएं, जुल्फों में मुँह छुपा कर मुझको लुभा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। घबरा रही है खुद से, बेचैन हो रही है, घबरा रही है खुद से, बेचैन हो रही है, अपने ही खून दिल से दामन भिगो रही है, बेजान रह गए हम वो मुस्कुरा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम, मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम, तुमको मेरी कसम है समझा के रोक लो तुम, उसकी जुदाई दिल पर नस्तर चला रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। थैंक यू।
0: क्या बात है, और बहुत खूबसूरत आपने गाया, और गाना वो चुना जो सुन के मतलब सबके दिल एकदम झूम उठे। क्या बात है, हमेशा से एक बेहतरीन पेशकश रहती है आपकी, क्या कहना?
3: अब इतनी पुरानी गीत है, जैसे याद आया वैसे हमने गुनगुना लिया, वैसे ढंग से नहीं गा पाया लेकिन
0: लेकिन ऐसा गाया कि हम लोग तो कभी ऐसा नहीं गा पाएंगे। क्या गाया, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा, मजा आ गया।
3: थैंक यू मैम।
0: तो अब बारी है गाने की, बिना देरी किए मैं आप लोग के लिए प्ले करती हूँ एक गाना। इस गाने के बाद वापस से आपके कॉल्स लाइव होंगे।

0: तो चलिए अगले गाने की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आप।
1: हेलो,
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम।
1: रही बोल रहा हूँ मैडम जी, दरअसल मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया, फिर पंडित जी के नंबर पे फोन किया।
0: क्या बात है रही जी, कैसे हैं? पहले तो बताइए, चाय वगैरह आपने पी ली?
1: चाय नहीं पी रहा, लेकिन चाय ऑर्डर हो गया है, आने वाली, आप भी आके पी लीजिए।
0: बिल्कुल, फिलहाल तो मैं चाय पीने तो नहीं आ सकती हूँ, लेकिन हाँ चाय महसूस कर पाऊंगी आपकी आवाज में। तो आज आप
1: बस दो लाइन सा गाना, दो लाइन सुना देता हूँ, हाजिरी लगा देता हूँ।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है।
1: नजरों से कर लो प्यार, मिलने का मौसम

0: मौसम का मौसम आ गया, हम मिल भी गए फिर भी दिल को न जाने कैसी आस है, पर दिल से पड़ता ही नहीं मस्ती में मुझे तुझसे पर ना याद में।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। मतलब आप नए नए गाने सुनाते हैं, ये बात बहुत खास है कि एक गाना भी आपका रिपीट नहीं होता। क्या बात है, थैंक यू सो मच।
0: पंडित जी से, पंडित जी से सुन लीजिए कुछ लाइन, दो लाइन।
1: जी जी, स्वागत है, स्वागत है।
0: पंडित जी सुना दीजिए बिना मैडम। हेलो
1: चंद्रभान जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
0: मैडम जी नमस्ते, ठीक है, अपनी बताइए, आप अच्छी हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप लोग की आवाज का इंतजार था तो फाइनली ऑनियर।
0: हम आपकी आवाज जब सुनते तो हमारी भी इच्छा करती है कि आपको सुना दें।
1: क्या कहने,
0: अन्यथा हमारा तो हम मन ही नहीं करता।
1: क्या बात है, क्या बात है, सुना दीजिए।
0: और आप ठीक है?
1: जी जी।
0: अरे हेलो
1: जी, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, स्वागत है आपकी आवाज का।
0: अच्छा, आपको एक गीत सुना दे रहा हूँ मैं। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। किस्मत तेरी निराली ओ चलिए को चलने वाली, उल खिला तो टूटी डाली, सदा आजाद रहते थे हमें मालूम क्या था, मोहब्बत क्या बला है, मोहब्बत क्या बला है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मांगी मोहब्बत पाई जुदाई, दुनिया मुझको रास न आई, पहले कदम पर ठोकर खाई, सदा आजाद रहते थे हमें मालूम क्या था, मोहब्बत क्या बला है, मोहब्बत क्या बना है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, थैंक यू, धन्यवाद।
1: क्या बात है, क्या बात है, मतलब बहुत ही मार्मिक सॉन्ग सुनाया आपने, सबके दिलों को छूने वाला, क्या बात है, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए।
1: तो चलिए अब अगले कॉल की ओर रुख करते हैं, वैसे बहुत सारे कॉल्स लगातार आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ सबकी आवाज़ सुनने को मिले, और टाइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं सबके कॉल्स का। तो ये बताइए, आप लोग कॉल तो करते हैं लेकिन सारे लोग एक साथ कॉल क्यों करते हैं, क्यों नहीं आप लोग 6:10 से कॉल करना शुरू कर देते हैं? अगर आप लोग जल्दी जल्दी कॉल करेंगे तो किसी को भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। क्या करें, हम लोग लाइन में लगने की हमारी आदत हो गई है। एनीवे कोई बात नहीं, जैसे भी टाइम हो, बस मैं चाहूँगी कि आप लोग की आवाज़ मैं ऑन एयर कर पाऊँ, मुझे ऐसा मौका मिले। तो अगले कॉल को ऑन एयर करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
0: हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग।
0: हाँ मैडम, गुड इवनिंग, मैं मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
1: अरे वाह मुमताज जी, क्या हाल है, कैसे हैं, आदाब प्रणाम, कैसे हैं?
0: आप लोगों की दुआ है, ऊपर वाले का करम है, बस और क्या। आपकी आवाज सुनी तो हमने कहा कॉल करके कुछ हम भी जो आप फरमाइश करेंगे वो हम सुना देंगे।
1: बिल्कुल, मैं तो फरमाइश नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग की आवाज़ में कुछ सुनने को मिल जाए। क्या सुनाइएगा आज?
0: अब कोई टूटा फूटा गाना सुना देते हैं जो आपको पसंद आए या ना आए।
1: मुझे ये पता है कि आप जब भी सुनाते हैं कुछ बेहतरीन ही सुनाते हैं, तो जो भी सुनाएंगे वो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब कीमती होगा।
0: तो आज मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना सुना देता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है।
0: तो स्टार्ट करें मैडम?
1: जी जी।

0: मुझे इश्क है तुझी से। जी मैडम,
1: क्या बात है, क्या बात है, आपने ये गाना सुना के हम लोग पे कर्म किया है।
0: कहीं कुछ कर्म कर सकते हैं, ऊपर वाले के मर्जी के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बहुत, मतलब बहुत दिनों से उम्मीद थी कि कोई ये गाना सुनाए और फाइनली आज वो उम्मीद पूरी हुई। मुझे इश्क है तुझे से मेरी जान जिंदगानी, मेरा फेवरेट गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज जी।
0: क्या अगर कहिए तो एक दूसरा गाना सुना देता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: टाइम हो तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है।

0: को मधुहोश बनाने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं। जी मैडम,
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत उम्दा। दोनों ही गानों ने मतलब दिल को छू लिया, क्या कहने, क्या कहने।
0: बस आप लोगों की दुआ है, ऊपर वाले का करम रहे, बस और क्या चाहिए।
1: और चैट रूम में भी आपकी जबरदस्त तारीफ चल रही है, सब लोग जी लिख रहे हैं जबरदस्त, मुमताज जी, अनूप जी ने, क्या बात है, बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं इतने बेहतरीन गाने सुनाने के लिए।
0: और सभी सुनने वालों को तरफ से शुभकामनाएं।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब बारी अगले कॉल को ऑन एयर करने की, देखते हैं किसकी आवाज है हमारे साथ। हेलो,
2: शुभ संध्या दीना जी।
1: शुभ संध्या, कैसे अनूप जी, क्या हाल है, आपकी आवाज मैंने पहचान ली, क्या हाल है, कैसे हैं आप?
2: मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: उम्मीद कर रही हूँ कि आपका मतलब धीरे धीरे हीलिंग जो है वो फास्ट हो गई होगी।
2: जी बस 12-13 दिन और बचे हैं प्लास्टर कटवाने में, उसके बाद सब सही हो जाएगा।
1: क्या बात है, क्या बात है
2: जी।
1: तो क्या सुनाइएगा आज?
2: मैम ये बताइए, आप नया गाना सुनेंगे या पुराना सुनेंगे, आप बताइए।
1: मैं तो ये जानती हूँ कि आप पुराने गानों में भी महारत हासिल कर चुके हैं और नए, तो पुराने तो आपके बहुत सारे सुने हैं और मैं चाहूँगी नया सुनाइए, थोड़ा सा वाइब और नई नई वाली आए।
2: मैम ये भी पुराना ही है, 1996 का है, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में।
1: क्या बात, स्वागत।
2: पापा कहते हैं मूवी का गाना है ये, प्यार में होता है क्या जादू।
1: वाह क्या बात है, सुनाइए।

जाने या मैं जाने।

0: है
1: जाने या मैं जानू।

तू जाने या मैं जानू।

जाने अरमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से ये मत पूछो।

0: दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। थैंक यू मैम।
1: क्या बात है, दोनों मिक्स सुना के आपने तो एकदम, मतलब क्या कहने, वाइब बना दी कि हाँ एक साथ हम दोनों, मतलब कह सकते हैं, कहते हैं ना डबल मजा, क्या कहना। और मतलब कोशिश यही रहती है कि आप लोग की आवाज़ सुनने के बाद मैं वो चीज़ क्रिएट कर पाऊँ जो हर लिसनर चाहता है, मतलब एक डायनेमिक्स, तो वो सच में आज क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग तरह से गाने सुना रहे हैं आप लोग, क्या कहने, क्या कहने। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम।
1: तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं, कौन है हमारे साथ बिना देरी किए। हेलो हेलो,
2: नमस्कार संध्या और जय भोलेनाथ।
1: नमस्कार, कैसे हैं सबलू सामंत जी, क्या हाल है, और जय भोलेनाथ क्या हाल है।
2: बढ़िया है, और आप अपना बताइए कि आप कैसी हैं।
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत ही धैर्य के साथ आपकी आवाज सुन रही हूँ। क्या सुनाइएगा आज,
2: आपसे सुनिएगा आज हमारे पास तो बीनू तैयार है, चाहे बोले सुन लीजिए कविता, तो चाहे 15 अगस्त के ऊपर सुन लेते हो या तो जनरल में सुन लेते
1: हो। आज मंडे है तो मैं चाहूंगी कि आज मंडे स्पेशल में ही आपको सुनाइए, शिव के लिए कुछ सुना दीजिए, और पैट्रियोटिज्म के लिए हम लोग 15 अगस्त पे आपसे बात करेंगे, और कुछ बढ़िया सी कविता सुनाइएगा जिसे सुन के हर सोई हुई जो रूह है वो जाग जाए, देश के लिए अपने दायित्व को समझ ले।
2: जी बिल्कुल। कहते हैं विनय जी त्याग, त्याग एक समझौते की बातें है, सबने हरदम दोहराई है, पर मेरी खामोशी हिचकिया किसने कभी किसी ने सुन ना पाई है। माना हो किसी की घर की लक्ष्मी आंगन की शान कहलाती है, पर मेरी माँ की आंखों में मुड़क मेरी बस जाती है। क्यों भूल गए सब दर्द मेरा, क्यों हर तोहमत मुझ पर आई है, अगर वो किसी की बेटी है तो मैं भी किसी का बेटा।
1: क्या बात,
2: झूठे केसों की भिड़िया में आत्मसम्मान बिखर जाता है, जब बिना खाता की मेरी माँ समाज की ताने खा पाता है, कानून की तलवार चलती है, सच कहीं कोने में रोता है, जो रक्षक था इस जीवन का वो खुद ही अकेला होता है, दहेज के झूठे इल्जामों में मेरी हंसिया को मिटाया जाता है, कोई पूछे उस बूढ़ी माँ से जिसका लाल फंदे पर झुल जाता है, अगर वो किसी की बेटी है तो मैं भी किसी का बेटा हूँ। ससुराल की ताने अपनों की बेरुखी में हंस कर सहता जाता हूँ, पर जब बात मान मर्यादा पर आए तो अंदर ही अंदर टूट जाता। हारा नहीं था मुश्किलों से, पर झूठे इल्जामों ने तोड़ दिया इस दुनिया की दोहरेपन में जीने का हौसला छोड़ दिया। अब तो सुन लो है दुनिया वालों, कानून को भी इंसाफ करने दो, एक बेटे एक खामोशी की घुट घुट करना मारने दो, अगर वो किसी की बेटी है तो मैं भी किसी का बेटा।
1: क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, और आपने बिल्कुल समाज की सच्चाई बताई। कई मर्तबा ऐसे बेकसूर परिवारों को सजा मिल जाती है जिन्होंने शायद कोई गुनाह नहीं किया होता। क्या बात है।
2: तो मीना जी एक और भी छोटा सा लाइन है।
1: हाँ स्वागत है,
2: अगर इजाजत हो तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वैसे आपका ये लास्ट कॉल है, इसके बाद मैं कॉल नहीं लूंगी, आप सुना सकते हैं।
2: ना पूछो जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी।
1: क्या बात है।
2: जो अब तक ना खेला खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की।
1: क्या
2: हम मंजिल का शौक नहीं सफर से प्यार करते, इरादे बुलंद है यही हमारा हथियार है। हम उस मिट्टी के हैं जो सरहद पर मर मिटेंगे, तिरंगा हमारा शान है, भारत हमारा अभिमान है।
1: क्या बात
2: जी वीना जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सबलू जी, और आपने अभिव्यक्ति जो आपने की कविता के रूप में बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल मतलब हर किसी से जुड़ी है, और मैं चाहूँगी कि ऐसी अभिव्यक्ति आप आगे भी करते रहें, अपने विचारों को एक मशाल की तरह ऐसे जलाएं कि हर किसी के जो कहते हैं ना ज्ञान के जीवन का उजाला जो है वो हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत
2: नमस्कार।
1: तो सबलू जी की कविलम ने जो लिखा वो बहुत ही बेहतरीन था, और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो परेशान हैं अपने मतलब जो कहते हैं ना कभी कभी बेकसूर जो है वो कैसे घिस जाता है उसे पता ही नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अवेयर रहेंगे, गलत होने नहीं देंगे, और उम्मीद करेंगे कि आगे ज़िंदगी ऐसी खूबसूरत रहे सबकी। तो चलिए मोस्ट ट्रेंडिंग गाना पिछले साल का जिसने हम सबके दिलों पे राज किया सुनते हैं, और इसी के साथ आरजे बीना की आवाज़ को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे आपके साथ, होंगी बहुत सारी बात, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। हमारे साथ हैं उषा, रितेश, परी, ऋतिक, सुरेंद्र जी, राजू, नवीन एंड जुगल जी काफ़ी देर से हमारे साथ हैं, क्या हाल है जुगल जी, और उत्कर्ष हैं हमारे साथ, सबलू हैं हमारे साथ उत्कर्ष के साथ साथ, अनूप जी भी चैट रूम में दिख रहे हैं, क्या बात है बेहतरीन। तो कल फिर मिलते हैं और करते हैं बहुत सारी बातें, और होंगी आपके साथ कुछ कहते हैं ना कि एक्सचेंजिंग्स, आपकी थॉट्स चैट रूम में रहेंगे, मेरी आवाज़ आपके दिलों तक जाएगी। तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान से 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। आप सुन रहे थे शो गोंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

कमीनी और शपरमाईशी वीडियो आर जो सिंपल हो इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन स्टे ट्यून्ड एवरीवन। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा से मेरा शरीर जुदा हो जाएगा, मेरे शरीर से मेरा आत्मा जुदा हो जाएगा, लेकिन ये गाना

जाने के भी ख्याल से डरते हैं, और कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते, लेकिन ये ना जाने कि हम इसे कितना प्यार करते हैं। नमस्कार, आदावन, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल, क्या है आज की शाम में? बहुत खूबसूरत बात जज्बात मुझे बताना, लेकिन मेरे लिए आज के शाम में जो सबसे खूबसूरत बात है और जो सबसे खूबसूरत जज्बात है वो तो यही है दोस्तों कि आज मैं आप लोगों से खोल के और जुबान खोल के, आई मीन पूरा का पूरा मुखारविंद खोल के स्पष्ट तरीके से बात कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। तो आप लोग के लिए भी दिन भर में कोई ना कोई अच्छी बात जरूर होगी। इनफैक्ट आज तो सबसे अच्छी बात ये है कि सावन स्पेशल में आज है सावन का दूसरा वाला सोमवार, और कुछ लोग आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह होंगे सोमवार वाला व्रत हर हर बोले, है ना। सो कितने लोगों ने फास्टिंग रख रखी है मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, तो मैं आ चुकी हूँ, फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा गाना टटोल लीजिए, लाके हमारी फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए, लगा दीजिए डेफिनेटली हजारों लाख करोड़ चांद। सो एंजॉय करते हैं पहली फरमाइश, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। महेंद्र राजस्थान से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, अनुष्का श्रावस्ती से, नवीन राजपूत एमपी से, सुरेंद्र यादव गारा चौकी से, राजू सीतापुर से, रितेश साहू उषा कश्यप गोंडा से, और परी तिवारी गोंडा से, अंशु गोंडा से, धर्मेंद्र वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, कार्तिक कश्यप और धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से आपका भी स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। उत्कर्ष कश्यप, आलोक राजपूत, सुरेश कुमार जी चौक से, निपर जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने अपने अपने अपने शो में। दीपक त्रिपाठी, स्टे ट्यून्ड, और एंजॉय करते हैं अब बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। पहली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र दीपिन की राजस्थान से, उनको सुनना है गाना। इनफैक्ट उनका कहना है एक मैसेज के साथ में कि महेंद्र दीपिन की तरफ से सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, और मेरा स्पेशल वाला सॉन्ग रिक्वेस्ट है मुझे एक पल चैन ना आए, पिक्चर का नाम है जुदाई और सिंगर है हरिहरन और अलका याग्निक, और म्यूजिक दिया है नदीम श्रवण ने, आरजे साहेब ये सदाबहार गाना सभी श्रोताओं के नाम समर्पित है, प्लीज प्ले की।

दीजिएगा। सो डेडिकेट करते हैं हमारे सभी लिसनर्स को ये वाला गाना सिर्फ और सिर्फ महेंद्र की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

कभी आए ना जुदाई। वैसे जुदाई तो जिंदगी में एक बार के लिए आता ही है ना। वो मेला पिक्चर का गाना है कि मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है, मेला बाहरों का आता है एक बार आके चला जाता है, और मेला लोगों का भी आता है और आके चला जाता है। लेकिन मुझे समझ में भी नहीं आता दोस्तों कि मेला इंसानियत का क्यों नहीं आता, मेला वफादारी का क्यों नहीं आता, मेला ईमानदारी का क्यों नहीं आता। बार बार ऐसे मेला आना चाहिए ना इन सब चीज़ों का भी, और भले ही आके चले जाए लेकिन फिर से एक बार और आना चाहिए ना। भले ही जो आता है वो जाने के लिए आता है, लेकिन फिर से जो जाता है वो जाता भी तो इसीलिए है कि फिर से आने वाला होता है। तो मुझे ऐसा कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि वफा को भी जाके आना चाहिए, ईमानदारी को भी जाके आना चाहिए, और इंसानियत को तो बार बार जाके आना चाहिए। और मेरा तो यही कहना है कि इंसानियत को तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है जो गल किशोर वर्मा जी की MP से, उनको सुनना है एक डिवोशनल सॉन्ग चल कांवरिया। सो एंजॉय करते हैं शिव महिमा एल्बम का ये बहुत ही खूबसूरत सा भजन सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू सावन स्पेशल वाली प्लेलिस्ट की तरफ। स्टे ट्यून्ड, हर हर महादेव। बम बोले, स्टे ट्यून्ड एवरीवन, हैप्पी सावन।

वाओ चल रे कावरिया, हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही डिवोशनल सा सॉन्ग सावन स्पेशल वाला कावरिया वाला हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। और कौन कौन भाई जल भरने जाने वाला है मुझे जरूर बताना, और मेरे आसपास से कौन कौन जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है। अगर मेरी भी कैपेसिटी उतनी होगी, अगर मेरी भी क्षमता उतनी होगी चलने की, तो मैं भी आपके साथ जरूर चलना चाहूंगी। कैसा रहता है एक्सपीरियंस में ऐसे घर के बाहर बैठ के, ऐसे रोड किनारे बैठ के, ऐसे छुपके से कभी कभी अगर मौका मिलता था तो स्कूटी उठा के गेड़ियां मार के इधर उधर देख लेती थी। इनफैक्ट ऐसे ऑफिस से आते जाते टाइम पे तो बहुत सारे दर्शन मिल जाते थे ऐसे कावरियों के, बड़ा आता था। लेकिन घर वालों ने कभी ऐसे जाने नहीं दिया, उनका कहना है कि तू छुई मुई सी सुखवार सी लड़की है, तू कहाँ जाएगी, पता लगे आधे रास्ते से ही पता नहीं कहाँ ऐसे ही तुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। बेटा तू इस लायक नहीं है, ठीक है, ये इन लोग को देख रही है ना, ये लोग सख्त लोग हैं, इन लोगों ने बचपन से लेके आज तक अपने शरीर से मेहनत ली है, तूने कभी मेहनत ली है, नहीं ली है ना, तू नहीं जा सकती है। तो बस यही लाचार बना दिया जाता है, मुझे पहले से डरा दिया जाता है और सख्त मना कर दिया जाता है मुझे मेरे घर से, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ। So, कैसा रहता है एक्सपीरियंस, क्या आपको लगता है कि आपकी एक हड्डी की आरजू सिंपल नॉट तो सिंपल भी जल भरने जा सकती है और फिर आके दुखरन्ना जी को जल चढ़ा सकती है? अगर ऐसा हाँ है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना, ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना अपनी जुबान से क्यों, क्योंकि तेरे नैना है जरा बेईमान से। वैसे जिसके नैना बेईमान से होते हैं वो भी एक बार को दिल के अच्छे होते हैं, तो इसलिए नैना पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नैना ही तो सबसे खतरनाक होते हैं। क्यों दोस्तों, मुझे तो नैना ही पसंद है, आई लव नैना, एवरीवन्स नैना, जिसकी आंखें पसंद आ गई मुझे वो मुझे अपने आप पसंद आ जाता है, पता नहीं क्यों।

तो ये फरमाइश थे अनुष्का की श्रावस्ती से बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले हमारे एक लिसनर का कहना है, मीन्स महेंद्र का कहना है कि ये वाला सॉन्ग ओरिजिनल अच्छा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जितने भी गाने ओरिजिनल हैं उनके रीमेक बने हैं वो सारे रीमेक मुझे 19 ही लगते हैं हमेशा ओरिजिनल से। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा, असली इज ऑलवेज असली, नो नकली इज ऑलवेज नकली, नो फिर उसमें चाहे हीरे लगा दो है, फिर चाहे उसमें सोने जड़ दो, सर्फियां जड़ दो, कुछ भी कर दो, लेकिन नकली तो नकली ही रहेगा, कॉपी इज कॉपी। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले अमीन राजपूत जी का कहना है कि आरजे सिंपल जी फरमाइशें तो सबकी प्ले करती है लेकिन चैट बॉक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अरे चैट बॉक्स पे अगर मैं ध्यान नहीं देती हूँ तो इतनी बातें मेरी निकलती कहाँ से, अगर सिर्फ मैं फरमाइशों पे ध्यान दे रही होती, गानों पे ध्यान दे रही होती नवीन राजपूत जी, सिर्फ मैं गाने सुनती और फिर गाने सुनने के बाद में गानों के बारे में ही थोड़ा सा ज्ञान देती हूँ, फिर गानों पे ज्ञान देने के बाद में फिर से अपने ज्ञान को स्टॉप लगा के फिर से हम अपने फरमाइशी गीत की तरफ चले आते और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है ना। ये जो अलग अलग से गॉसिप के पॉइंट्स आ रहे हैं, अलग अलग से गॉसिप के शब्द आ रहे हैं, ये जो इतनी सी क्यूरियोसिटी, इतना सस्पेंस, इतने सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं वो आप लोगों से ही तो मिल रहे हैं चैट बॉक्स से। और इसी के साथ में जुगल किशोर वर्मा जी का मींस जग्गू दादा का एमपी से कहना है कि 17 तारीख को है हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा और जी सिंपल मैम, तो क्या आप भी जाते हैं जग्गू दादा? अगर जग्गू दादा रहेंगे तो फिर किस बात की डर है भाई, अगर मेरे को रास्ते में हॉस्पिटैलिटी की भी जरूरत पड़ेगी ना तो जग्गू दादा अपनी एक उंगली से उठा के नचा के घुमा देंगे, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। तो सही कहा ना मैंने जग्गू दादा। सो एंजॉय कर लेते हैं फाइनली अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है नवीन राजपूत जी की एमपी से, और नवीन राजपूत जी हैं ग्रीट ऑपरेटर ग्राम बासला तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर मध्य प्रदेश के। तो एंजॉय करते हैं नवीन राजपूत जी की ये फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

बरसात हो रही है, बरसात होने दे। वैसे आज भी बहुत सारी बरसात हुई है लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं हुई है। सो एंजॉय क्या है, हमने अनुराधा कुमार सानू जी की आवाज में नवीन राजपूत जी की फरमाइश पे ये वाला नगमा एंजॉय करते हैं। हमारी आज की अगली फरमाइश, हमारे पास में है सीतापुर से राजू की, राजू को सुनना है गाना कम से कम इतना कहा होता। सो एंजॉय करते हैं दिल तेरा आशिक पिक्चर का ये वाला नगमा अलका याग्निक की आवाज में हमारे राजू की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अरमान फ्रॉम पटेल नगर गोंडा और सनी पांडे, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों आज शो का टाइम कुछ जल्दी नहीं बीत रहा है, 8:30 बजने वाला

ना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा रंगमा दिल तेरा आशिक पिक्चर का बर्थडे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना भूल गिर जा पति हूँ तुम्हारी शरण। सो एंजॉय करते हैं ये शिव भजन लखबीर सिंह लखा की आवाज में सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वैसे जैसे दलेर मेहंदी की आवाज बॉलीवुड में अच्छी लगती है, मिक्का सिंह की आवाज बॉलीवुड में अच्छी लगती है, वैसे ही डिवोशनल गानों को सुनने का अलग मजा तो लखबीर सिंह लखा की ही आवाज में आता है। हर हर महादेव।

दया की दृष्टि जरा डाल दो मुझ पर। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि दया की दृष्टि के लिए हम भोलेनाथ से कहें चाहे ना कहें तो दया की दृष्टि उनकी हमेशा हम पे रहती है। जब जब हम अटके हैं, जब जब हम लाचार हुए हैं, जब जब हमने अकेला महसूस हुआ है, महसूस किया है, जब जब हमें लगा है कि हम परेशान हैं, तब तब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके मदद तो करता है ना। उस गड्ढे में जहां हम गिरते हैं, जब अकेले नहीं निकल पाते, कोई ना कोई सहारा बनता है ना। वो खुद से थोड़ी आता है, क्योंकि ये दुनिया तो पूरी की पूरी स्वार्थी है दोस्तों, यू नो ना वेरी वेल। वैसे मेरा तजुर्बा तो बहुत कम है, लेकिन आपका तो बहुत ज्यादा है, तो आपको भी पता होगा कि ऐसे तो कोई नहीं आता। तो ये भोलेनाथ ही तो भेजते हैं, तो दया की दृष्टि उनकी हमेशा रहती है। बस हम अपने कर्म पे हमें ध्यान देना चाहिए, फल हमें मिलता रहेगा दोस्तों। से एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है रितेश साहू की, उनको सुनना है गाना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सही बात है, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश, रितेश साहू की फरमाइश।

हमने एंजॉय किया ये गाना और एंजॉय करते हैं। नाउ लेट्स गो टू अगली वाली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश है उषा कश्यप की गोंदा से, उनको सुनना है गाना हमको ना भुलाना कभी हमको ना भुलाना। तो एंजॉय करते हैं मोहम्मद अजीज और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में ये वाला नगमा उषा कश्यप की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

आवाज़ हमारी, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। दोस्तों बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश तो हमारे पास में है परी तिवारी की, और परी तिवारी को सुनना है मेला पिक्चर का गाना। मेला दिलों का आता है और एक बार आके चला जाता है। सो एंजॉय करेंगे ये वाला नगमा, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ याद आ रहा है आज ना आप लोगों ने शेरो शायरी की, ना मुझे शेरो शायरी का मन हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने इस गाने को सुना मेरे दिल के अंदर से उमड़ उमड़ की एक आवाज आने लगी। दोस्तों कहना है कि आखिर कब तक खुद को बीमार रखा जाए। आप सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं थोड़े ना थोड़े थक से गए हैं, थकान सी हो रही है उनको, है ना। सो आखिर कब तक खुद को बीमार रखा जाए, अपने आप को थोड़ा होशियार रखा जाए। हमने देखा है भरोसे का हश्र भी साहब, हमने देखा है भरोसे का हश्र भी साहब, कुछ लोगों के लिए तो अब दीवार रखी जाए। हर किसी शख्स को अपना नहीं कहते, मेरे अपनों, हर किसी शख्स को अपना नहीं कहते, बस दो चार ही रिश्तों पे एतबार रखी जाए। जो फिक्र रोज है, रोज की फिक्र ये उलझन ये थकान मार न दे। ये जो हम सोचते हैं रोज ना, इसीलिए तो शाम में सुकून ढूंढते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से कि रोज फिक्र ये उलझन ये थकान मार न दे, खुद के हिस्से में भी थोड़ा सा इतवार रखा जाए। तो इसी इतवार के लिए तो हम इस महफिल में आते हैं। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा जो कि फरमाइश आई है परी तिवारी की तरफ से, और वो है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है, लेकिन इस दिलों के मेले में दिल संभल के लगाना चाहिए, सबसे नहीं लगाना चाहिए।

0: दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। वाह। अच्छा, अलका याग्निक जी चाहे तो अपनी आवाज से हर एक शब्द में दर्द घोल सकती है ना, कितना आसान है उनके लिए। लव यू अलका याग्निक जी, लव यू सो मच। सो ये फरमाइश हमने एंजॉय किया है अलका याग्निक जी की आवाज में। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अंशु की, गोंडा से। उनको सुनना है गाना, कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पे रेल चला दूंगा। सो जय विक्रांता का ये गाना एंजॉय करते हैं। इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। इसी के साथ में नवीन राजपूत का एमपी से कहना है कि जिसके हिस्से में रात आई है यकीन जानिए उसके हिस्से में चांद भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया और एंजॉय करते हैं ये फरमाइश। सीधे 9 बजे मिलते हैं। जिन लोगों ने अपने अभी तक पेट पूजा नहीं किया है इस फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के बाद में, फटाफट से आप जाएंगे पेट पूजा करके आएंगे। पेट पूजा करके सीधे 9 बजे फिर से फरमाइशी की महफिल में एकत्रित होंगे। ढेर सारी खुशियां, ढेर सारे जज्बात, ढेर सारा प्यार बिखेरेंगे ना दोस्तों एक साथ। स्टे ट्यून्ड।
1: कोठे ऊपर कोठरी, ऊपर से उतरी छोकरी, यारो ये तूफान मेल है या आफत की टोकरी।

0: संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर MDR शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do.
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
5: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
6: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
7: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खेयांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
8: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
9: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
10: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेते निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी

प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल और सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सो दोस्तों, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सोनिया तिवारी, अनिल शास्त्री गोरखपुर से और सनी पांडे। स्टे ट्यून्ड।

0: याराना का ये गाना हमने इंजॉय किया है विनोद राठौर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर जो की है आवाज विकास गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से, और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना चन्न सितारे। सो एंजॉय करते हैं ये पंजाबी सुपर डुपर हिट हाउ रोमांटिक सॉन्ग निशा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।
1: जो मैं पिछले दिनों तो तक

की कर दे, मैनू इश्क हो गया अखियां नाल। हमने एंजॉय किया ये बहुत खूबसूरत सा नगमा, मेरे दिल के करीब रहने वाला नगमा, निशा की फरमाइश पर जो की है पटेल नगर गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी की गोंडा से, और मुमताज अंसारी जी को गोंडा से सुनना है गाना याद आ रही है तेरी याद आ रही है। सो एंजॉय करते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

याद आ रही है तेरी याद आ रही है। मुमताज अंसारी जी की थी ये फरमाइश और मुमताज अंसारी जी हैं गोंडा से। अगली फरमाइश दोस्तों हमारे पास में जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश है के द्विवेदी की माधोपुर गोंडा से। उनको सुनना है गाना सारी दुनिया जला देंगे। सो बी प्राक का जानी का और एनिमल पिक्चर का ये गाना एंजॉय करते हैं के द्विवेदी की फरमाइश पर जो की है माधोपुर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड। वाह आई लव बी प्राक।

का कुछ सारी दुनिया चला देंगे। केके द्विवेदी की थी ये फरमाइश। एंजॉय करते हैं आज की अगली फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है सैयारा पिक्चर के टाइटल ट्रैक की, और इसकी फरमाइश हमारे पास में आई हुई है शिवम सिंह की तरफ से, जो कि है गोंडा से।

हमने एंजॉय किया सैयारा का टाइटल ट्रैक। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, जिसके साथ में आपकी आज सिंपल नॉट से सिंपल लेना चाहेगी अलविदा। सो अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की। एंजॉय करेंगे आवारा अंगारा और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि कल मैं मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आज सिंपल नॉट से सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सब की तरफ से बे इंतहा बेतहाशा प्यार आपके आज सिंपल नॉट से सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल फिर से, लेकिन कल मिलेंगे हम लोग गुंडा मैसेज मसाला में, स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9761 9260 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। हम जब बात करते हैं तो बात करते हैं बुनियाद के उन पत्थरों की, उन ईंटों की जो ईंटें दबी हैं लेकिन उन पर लोगों की निगाहें शायद कम जाती हैं, या वो नींव के पत्थर, नींव की ईंट हमको दिखाई नहीं पड़ती है, और वो नींव की ईंट होती है हमारे दानिश्वर, हमारे कलमकार, जो अपनी लेखनी से दर्द पैदा करते हैं, और ऐसा दर्द जो जब उनकी लेखनी से निकलकर कागज पर आता है, संगीतकार धुन बनाते हैं, गीतकार गाने वाले गायक कलाकार गाते हैं, और हमको एक अजीब सा सुकून देता है कोई भी नगमा, या आपको जो पसंद हो कोई भी गजल, कोई भी प्यारा सा गीत। उन्हीं दानिश्वरों में, कलमकारों में एक नाम आता है, इकबाल अशर, एक बहुत ही प्यारा नाम, गजलों की दुनिया के युधिष्ठिर कहे जाते हैं वो। इल्म से लेकर के फिल्म तक का सफर तय किया, कुछ फिल्मों के संवाद भी लिखे, और अपनी एक मुख्तलिफ सी पहचान बनाई जनाब इकबाल अशर ने। उन्होंने लिखा कि ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, रवानी का मतलब बहाव आना, जो ठहर गई थी वो जरा सा फिर चल पड़ी। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। पंक्तियों को देखते चलिएगा, हर पंक्तियों के भाव आपको अलग अलग मिलते हुए चले जाएंगे। मोहब्बत से शुरू किया है कवि ने अपनी इस प्यारी सी गजल को। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद पशेमा, पशेमा मतलब शर्मसार होना, बेइज्जत हो जाना, पानी पानी हो जाना, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास बुझानी आई। दरिया ने कह दिया कि साहब जितनी प्यास आपको है उतना पानी मेरे पास नहीं है। मुद्दतों बाद, अब पंक्ति देखिएगा, मुद्दतों बाद मयस्सर, मयस्सर मतलब उपलब्ध, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। अब देखिए फिर आते हैं मोहब्बत की तरफ, आए माँ की तरफ लौटे, और अब अपनी तरफ आते हैं और कहते हैं कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। फन माने कोई भी कार्य, किसी भी कार्य को करने की निपुणता। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। जी हाँ, ढल गई उम्र, इंसान अपनी जिंदगी दे देता है किसी एक काम को करने के लिए। लता जी का कोई भी गीत हम सुनते हैं तो कहते हैं वाह क्या गाया, लेकिन साफ पर ही कितने घंटे उन्होंने रियाज किया होगा शायद उसका अंदाजा दुनिया को या हमें आपको बहुत ही कम होगा। रफी साहब ने गीत गाया, कव्वाली दे दीजिए, भजन दे दीजिए, कीर्तन दे दीजिए, कुछ भी कायनाती गला लोग कहते हैं, लेकिन वो बना कैसे होगा, उसके पीछे संघर्ष कितना होगा, इसको शायद बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि ग्रेट प्लेयर्स एंड ग्रेट पीपल वर्क व्हेन नोबडी सीज हिम। महान खिलाड़ी और महान कलाकार तब काम करते हैं जब उनको कोई देख नहीं रहा होता है। सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, लेकिन मैदान पर उन्होंने जो स्ट्रेट डाइव मारी सीधे 4 रन के लिए, उसके लिए उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी, उस समय उनको कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं, कोई भीड़ नहीं, वो अकेले में परिश्रम कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे। लता जी को जब कोई सुन नहीं रहा होता है, रफी साहब को कोई नहीं सुनता, मुकेश जी को या जितने भी हमारे गायक कलाकार हैं, वो अकेले में बैठकर रियाज करते हैं, वहां पर उन्हें कोई नहीं सुनता, और जब वो खेलने आते हैं या वो जब गाना गीत गाते हैं, गजलें गाते हैं, नगमे गाते हैं, तो दुनिया वाह वाह करती है। किसी की पंक्ति है कि मुझे ऊंचाई पर देखकर हैरान है कई लोग, मुझे ऊंचाई पर देखकर हैरान है कई लोग, पर किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। हम गाएं और आप कमियां निकाल दें ये बहुत आसान है, लेकिन हमारे जैसा आप गा लें ये शायद मुश्किल है। किसी के जैसा कोई नहीं कर सकता, हर कोई अपने ही जैसा करता है। तो ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई, मतलब जिंदगी दे दी साहब शायर ने, कलमकार ने, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कितने जब दुनिया भर सोती रही होगी तब वो तारों को देखकर, चंद्रमा को देखकर कुछ सोचते होंगे, एक पंक्ति कहीं आती होगी लिखते होंगे, दूसरी पंक्ति की कोशिश करते होंगे, उस कोशिशों को किसी ने नहीं देखा है। लेकिन हाँ, वही कामयाब होते हैं जब दुनिया सोती है, और वो तब कार्य कर रहे होते हैं जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होता है। जी हाँ, हमारे साथ अनिल शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और शुभ संध्या आपको भी। सविता जी भी हमारे साथ हैं, चरण स्पर्श आपको भी। कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। मोहम्मद मुशीफ जी बहुत दिन के बाद दिखाई पड़ रहे हैं भाई हमको। शुभ संध्या डियर राजे मनु भाई, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ, क्या बात है मनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और पंक्तियाँ अच्छी लगी भाई मुशीफ जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आपको ले चलते हैं गजलों की दुनिया में। अब सोचिए जिसने लिखा होगा उसने कितनी शिद्दत से लिखा होगा, जिसने संगीतबद्ध किया होगा उसके म्यूजिक की क्या बात, और फिर जिसने गाया होगा उसने कितना रियाज किया होगा। तो ये इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। आइए नमन करते हैं उन साहित्यकारों को, और आपकी महफिल में अब आइए पेश करते हैं एक प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।
1: छूने दो बच्चों को,

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: कुछ बातें अनकही रहे।

जी, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। वास्तव में बहुत ही प्यारी सी गजल, मखमली आवाज, और मखमली आवाज तो जगजीत सिंह साहब की है। चलते हैं भाई। मुसीब जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको गजल पसंद आई, इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं हम। चलते हैं इकबाल असर साहब की तरफ पुनः। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, गजल है, और गजल का अपना तरीका है, अपने गुफ्तगू करने का अपना एक अंदाज है। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। अब देखिए, बादल से आस लगाने का मतलब ये होता है कि सबसे मांगना नहीं चाहिए, कीमत घट जाती है आपकी। तुलसीदास ने लिखा कि तुलसी कर पर कर करे, कर पर कर न करे। अर्थात है, ऊपर वाले मुझे इस लायक बनाना कि हम किसी के हाथ पे अपना हाथ रख सकें, ऐसी नौबत ना आए जिंदगी में कि कोई मेरे हाथ पर अपना हाथ रखे। हम देने वाले बने, लेने वाले ना बने, अच्छा है। तो इंसान को कुछ ही लोगों से उम्मीदें होती हैं, सबसे नहीं होती, और पता नहीं कैसे हो जाती हैं। मतलब कि हाँ, ये मेरा अपना है। आपके भी दिल से कभी कोई निकलता होगा कि नहीं नहीं ये हमारे अपने हैं। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, दरिया का पानी नहीं पीना है, नीचे का पानी नहीं, ऊपर वाला देगा तब लेंगे। एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा, कि जिंदगी है और परेशानियां आएंगी, ये तय बात है। जिंदगी है तो दुश्वारियां हैं,

दरिया से पानी नहीं मांग रहे हैं, हाँ बादल से। शायर अपनी बात को कहने का सलीका कितना प्यारा रखता है। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है, तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, कितना दीवानापन है। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। क्यों ना आ जाए महकने का हुनर लफ्जों को, शब्दों को, क्यों ना आ जाए महकने का हुनर लफ्जों को, तेरी चिट्ठी जो किताबों में छुपा रखी है, मतलब आपकी चिट्ठी है मैंने अपनी किताब में छुपा रखी है और वो किताब महक सी रही है। एक किसी शायर की पंक्ति है कि कल किसने दिन भर मुझको महकाया था, कल किसने दिन भर मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। तो कभी कभी खुशबू बहुत देर तक रहती है। क्यों ना आए महकने का हुनर लफ्जों को, तेरी चिट्ठी जो किताबों में छुपा रखी है, तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे, तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे, तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है। मैं बोलता हूं तो लोग जान जाते हैं कि आपका ही जिक्र हो रहा है। और अंत में कहा जाता है कि जब शायर कोई बात बोलता है तो अनुभव पर बोलता है, एक्सपीरियंस, तजुर्बा। उन्होंने लिखा कि खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, अरे खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है, यानी हम भी दर दर भटक करके यहाँ पहुँचे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जिस उम्र में आज आप हैं वो उम्र हमारी नहीं होगी, या हम अपने पिता को समझाएं कुछ तो अपनी युवावस्था में तो पिताजी बोलते कुछ नहीं होंगे लेकिन सोचते होंगे कि यार ये दिन तो मैंने भी देखे हैं और अब आप मुझे समझा रहे हो। कभी भी अपने वालिद वालिदैन को, बाबा दादा दादी को, अपने से जो बड़े हैं उनको मूर्ख नहीं समझना चाहिए कि हम झूठ बोल देंगे और वो पकड़ नहीं पाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो समझ जाते हैं लेकिन फिर भी नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी में भलाई है। एक अध्यापक होने के नाते अगर मैं सड़क से निकला और मेरा कोई विद्यार्थी सिगरेट पीता हुआ है सामने दिखाई पड़ा, उसने देखा कि सर आ रहे हैं तो उसने हाथ पकड़ पीछे कर लिया या सिगरेट को नीचे छोड़ दिया, तो मेरी भलाई इसमें है कि मैं भी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊं। उसने मेरी इतनी इज्जत की कि सर ने हमको पढ़ाया था आज के 5-6-7 साल पहले, फिर इनके सामने नहीं पीनी चाहिए, छोड़ दिया। मेरी भी, मेरा भी बड़प्पन इसी में है कि उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए कि ठीक है आपने ये दिखाना चाहा कि हमने नहीं देखा और हमने देखकर अनदेखा कर दिया। दोस्तों, जिंदगी के खूबसूरत होने के दो रास्ते हैं जो मैंने महसूस किया। एक तो आपका अंदाज, वो होना चाहिए, और दूसरा नज़रअंदाज। कुछ चीज़ों को देखिए और इग्नोर कर दीजिए। अगर हर चीज़ पर आप महसूस करने लगेंगे तो शायद आप सुखी कम हो पाएंगे, दुख ज़्यादा होगा। तो ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं साहब, एक आपका अंदाज और दूसरा आपका नज़रअंदाज कर देना। जी हाँ, अब चलते हैं और एक, अभी तक तो आपने जो गज़ल सुनी वो उनसे सुनी, लिखी किसी और ने, संगीतबद्ध किसी और ने किया, गाई किसी और ने, अब आपको एक गज़ल सुनाते हैं जिन्होंने लिखा उन्होंने ही पढ़ा, महफिल में पढ़ा। मैं बात कर रहा हूँ अंजुम ज़हबर साहिबा की एक प्यारी सी गज़ल आपको सुनाते हैं। हो सकता है इस आवाज़ में आपको ये गज़ल अच्छी लगे, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, सुनकर बताइएगा कि भाई ये गज़ल आपको कैसी लगी। हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं,
मैं तो गजलों की

दुनिया में हूँ, अभी सुन रहा हूँ, अभी सर को विश भी नहीं कर पाए हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमने स्वीकार कर लिया और मुसीब लिखते हैं, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बात है भाई, नवीन राजपूत जी भी हमारे साथ, मैं सर जी राधे राधे, आपको भी राधे राधे। कौन कहता है कि सिर्फ नफरतों में ही दर्द होता है, कभी हद से ज़्यादा

मुझे लगता है कि ये जो तकलीफ देती है नवीन जी, ये मोहब्बत नहीं देती, ये मोहब्बत में जो हमारी उम्मीदें होती हैं वो देती हैं। किसी से कोई भी उम्मीद रखना छोड़कर देखो, ये रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाए। मतलब हम किसी इंसान के साथ जब रिश्ते में होते हैं तो उससे उम्मीदें बहुत होती हैं। और कल भी मैंने कहा था, सुख की इच्छा करना ही दुख है। अगर आपने सुख की इच्छा कर ली, इसका मतलब आपने दुख को न्योता दे दिया कि आओ भाई मेरे पास, आ बैल मुझे मार। लेकिन क्या करें, उम्मीद एक नेसेसरी विल है, आवश्यक बुराई है, बुराई है लेकिन आवश्यक है। अब मैं एक पंक्ति सुनाता हूं आपको, शायद मेरी बातों से आप थोड़ा सा सहमत हो पाए कि जब भी कोई ऐसी बात कहता है तो पंक्तियां हैं कि दिल तोड़कर उसने मेरा कहा मुस्कुराओ। कभी भी मेरा कोई अपना अगर मुझसे कुछ गलत काम करवा लेता है, या थोड़ा सा विश्वासघात कर लेता है, या कहीं बैक बाइटिंग कर दी, चुगली कर दी, पता चला बाद में, तो तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने उससे कुछ चाहा नहीं है। पंक्तियां ये हैं कि दिल तोड़ कर उसने मेरा कहा मुस्कुराओ। पहले उसने दिल तोड़ा, फिर हमसे कहे जरा मुस्कुराइए। अब सोचिए, कोई आपका दिल तोड़ के कहे जरा मुस्कुराओ तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि दिल तोड़कर उसने मेरा कहा मुस्कुराओ, मैं हंस पड़ा, क्योंकि सवाल उसकी खुशी का था। दिल तोड़कर उसने मेरा कहा मुस्कुराओ, मैं हंस पड़ा क्योंकि सवाल उसकी खुशी का था। अरे मैंने तो वो खोया जो मेरा था ही नहीं, लेकिन उसने तो वो खोया जो सिर्फ उसी का था। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आप किसी को अपना मानते हैं, तो वास्तव में आप उसके लिए हैं। तकलीफ आपको नहीं, तकलीफ उसको होनी चाहिए, क्योंकि उसने एक हीरे जैसा दोस्त खो दिया, एक हम सफर खो दिया, एक ऐसा व्यक्ति खो दिया जो उस पर जान लुटाता था। तो कभी भी अगर प्रेम में दर्द मिल जाए तो पछताना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, नुकसान तुम्हारा हुआ है, तुम तो हमारे थे ही नहीं, लेकिन हम तुम्हारे थे, तो जिसने गंवाया है वो दुखी होना। जी हाँ, दया दुख का कारण है। बात करेंगे, कभी खुशियों के दिल में बहार, ये जिंदगी प्यार से माला माल थी, नहीं रहा खुद पे अब यकीन, जाने किसकी महक से ये जिंदगी गुलजार थी। जी हाँ, आइए सुनाते हैं हम। जहाँ तक मेरा मानना ये है कि थोड़ी सी अच्छी बात बोलूँ मैं, तो बात ये बोलूँगा कि आपकी खुशी की वजह अगर आप स्वयं नहीं हैं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। आपकी खुशी आपके भीतर है, प्रसन्नता हमारे भीतर है, उसे हमको तलाश करने की आवश्यकता है। अंदर की चीज़ को बाहर मत तलाश कीजिए साहब, खुशी एक अंदर की चीज़ है, आनंद अंदर की चीज़ है। आप उसे बाहर तलाश करेंगे तो दुख होगा, अंदर तलाश कीजिए ना। दिले तस्वीर है यार, जब भी गर्दन झुकाई मुलाकात कर ली। राहत इंदौरी ने कहा था कभी कि अब मौत आए, खुशियां आए, गम आए या तू आए, मैंने तो बस आहट पाई और दरवाजा खोल दिया, हर आने वाले का स्वागत और हर जाने वाले को विदाई। जिंदगी की ये प्यारी सी रीति अगर हम अपनाएं तो शायद जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। फिलहाल चलते हैं आपको एक प्यारी सी गजल की ओर, जिन्होंने लिखा है वही गा रही हैं, नाम है।

0: चार पंक्तियां सुनाती हूँ
1: जी। स्वागत अंजुम जी।
0: यहाँ नेहा है और मैं हूँ
2: जी।
0: कुछ श्रोताओं में कुछ बेटियां लड़कियां नजर आती हैं, तो मैं सुनाती हूँ शेर। नेहा
2: जी
0: इस तरफ करना, शैलेश की तरफ ऐसे। जंग

0: चल है लड़कियां
1: वे क्या बात है, बहुत अच्छे।
0: और अंजुम का ये शेर, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पता नहीं औरत को इतना आसान क्यों समझा जाता है। उन

की बोतल है और अंजुम का ये शेर हमारे मुल्क में जहेज को लेकर बहुत सारी लड़कियां अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देती हैं। अंजुम तुम अपने

0: मैं बहुत सीरियस हो गई।
1: लड़कियां ही भोली नहीं होती
0: जी,
1: लड़कों के भोलेपन का भी जवाब नहीं है,
0: तो आप बताएं।
1: अब तो मेरा ख्याल है लड़कों की जिंदगी उलझा हूँ।

0: कुछ प्रेमिका ने खा लिया, कुछ बीबी खा गई, भोजन का एक थाल है लड़कों की जिंदगी।
1: वैसे विष्णु जी को देखकर ऐसा लग रहा है कहीं रोना दें। वैसे तो प्रेमिका को पत्नी भी बनाया जा सकता है। अर्ज करती हूँ, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, सोचती हूँ प्यार
2: करना चाहिए, क्या बात है,
1: सोचती हूँ प्यार करना चाहिए,
2: क्या बात,
1: जिंदगी को जिंदगी के वास्ते, जिंदगी को जिंदगी के वास्ते, रोज जीना रोज मरना चाहिए,
2: क्या बात है।
1: और अंजुम का ये शेर बतौर तोहफा
3: जी,
1: दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया,
3: दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया,
1: दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दुश्मनों से प्यार करना चाहिए।
2: वाह वाह वाह वाह।
1: और बतौर तोहफा ये शेर, प्यार का इकरार दिल में हो मगर,
3: प्यार का इकरार दिल में हो,
1: प्यार का इकरार दिल में हो मगर, कोई पूछे तो मुकरना चाहिए। अब वो वैलेंटाइन डे के लिए जो खास तौर से गजल मैंने लिखी है, मैं चाहती हूँ कि शेर आपको, आप तक मेरे शेर पहुँच जाए। दिल किसी की चाहत में बेकरार मत कर,
2: क्या बात,

0: अच्छा शेर,
1: स्वागत है, स्वागत।
0: पता नहीं मेरे जहन ने मुझे दस्तक दी, मेरे दिल ने। अगर काश हर परिवार में ऐसा हो जाए तो वहां प्रेमिका की जरूरत ही नहीं पड़ सकती है।
2: अच्छा
0: तू मुझे

0: अगर मोहब्बत होती है तो जुदाई भी होती है, और जुदाई का वो जो शेर आपने कहा है, मैं चाहूंगा वो गजल जरूर सुना।
1: जी मैं बिल्कुल सुना देती हूँ। तेरा वादा न पूरा हुआ, शाम से फिर सहर हो गई।
2: हाय हाय।

0: और जो शेर मुझे सुनाना है
1: जी,
0: दो दिलों को जुदा कर गई एक परदेश की नौकरी,
2: क्या बात है, क्या बात,
0: वो भी पागल उधर हो गया, मैं भी पागल इधर हो गई। और एक शेर मैं अपनी मर्जी का पढ़ूंगी और नेहा को नस करूंगी।

समझे है जन्नत का बदल तेरी जवानी, ईमान में डाले है खलल तेरी जवानी। है एक हसीन नज्म अगर तेरा सरापा, है एक फड़कती सी गजल तेरी जवानी। और आँखों के दरीचों में अलफ लैला का मंजर, बगदाद का है कोई महल तेरी जवानी। और आ प्यार के पनघट पे किसी रोज़ नहाले, खिल उठेगी मानिंदे कंवल तेरी जवानी।

जी हाँ, और घड़ी की सुइयां अब आज्ञा नहीं दे रही हैं। जी हाँ, अब बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम बहार गज़ल में ठीक 9:30 बजे। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गान स्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जस बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी माया जाल। सामने महेश खड़ा था, आंखों से झर झर आंसू बहाता हुआ, अपमानित सा, ठगा हुआ, पिटा हुआ सा। अपने प्रेम की ये हालत देखते हुए स्वयं को लुटा हुआ महसूस कर हिचकियों के साथ रो रहा था। सपना उसे सामने देखकर अवाक थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी वीरान जिंदगी में अब कोई आया है। सपना, रुंधे गले से महेश बमुश्किल बोल पा रहा था। किसी गहरे कुएं से आती मरियल सी आवाज आज सपना को वो सारे उद्बोधन से ज्यादा भारी और अपनी महसूस हुई जो वो पिछले 10-12 साल से सुनती आ रही थी। उसके चारों तरफ उसका अपना बनाया, अपना रचाया हुआ संसार खड़ा था। मलिन और निस्तेज पड़े हुए उसके शरीर के चारों ओर शानदार चीजों से सजा हुआ उसका बंगला अभिमान के साथ आसमान से बातें कर रहा था। उसी अभिमान के रथ पर कभी वो सवार होकर सपने संजोया करती थी। सपना, एक बार मुझे खबर तो कर दी होती अपनी बीमारी की। सपना के निस्तेज शरीर को देखते हुए महेश के गले से दबी दबी सी आवाज निकली। महेश के दिल में उसके लिए टिमटिमा कर जलता हुआ दीपक। सपना के मन के अंधेरे में एक किरण सी चमकी। अकेलापन, अवसाद और उदासी भरे मन में महेश की उपस्थिति की दस्तक से एक नई तरह की आशा का संचार हुआ। महेश ने ढूंढ कर कमरे की लाइट जलाई। कमरा एक बार फिर से रोशन हो गया। चारों तरफ गर्द ही गर्द जमा हो गई थी। महंगा महंगा आधुनिक सामान धूल से अटा पड़ा था। कमरे की सजावट जहां उसके अतीत की आली शांता बयान कर रही थी, वहीं उस पर जमी धूल की परत वर्तमान की बेजान तस्वीर पेश कर रही थी। उसकी अवसाद ग्रस्त जिंदगी की चिड़चिड़ाहट और चिल्लाहट से त्रस्त होकर नौकर नौकरानियां काम छोड़कर चली गई थीं। महीनों से साफ सफाई नहीं हुई थी। दीवार पर लगे विशाल आईने पर निगाह पड़ते ही वो चौंक गई। लेटे लेटे ही अपना प्रतिबिंब देखकर सपना को रोना आ गया। एक बार को तो वो खुद को ही नहीं पहचान पाई। सपना पर हमेशा हंसते खिलखिलाते रहने वाला विशाल आईना गंदला होकर मायूसी प्रकट कर रहा था। रोशनी से सपना की हालत का जायजा लेकर महेश और भी ज्यादा द्रवित हो गया। सपना, कम से कम एक फोन तो कर दिया होता।
इतनी बीमार पड़ी थी, एकदम पीली पड़ गई हो। महेश अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपनी ही रौ में कहे जा रहा था। सपना महेश की हालत समझ रही थी, एक एक बीती बात उसे याद आ रही थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है माया जाल। अब तक आपने सुना सपना बीमार थी, अकेली थी और उस वक्त उसके पास महेश वापस आया। सपना अवाक थी। अब आगे जब शरीर था तब विचार नहीं थे, अब शरीर नहीं रहा तो विचार डेरा डालने लगे। अकेलेपन और अवसाद से महेश की सहानुभूति उसे कुछ हद तक उबार रही थी। वो उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। महेश उसका इतना लंबा इंतजार करता रहा, उसके लिए अभी तक इंतजार या फिर यू ही अचानक। यादों के खंजर दिमाग में ठक ठक कर रहे थे। महेश सपना का सहपाठी था। कॉलेज के वो दिन हवा में उड़ने के थे, आसमान से बातें करने के। सपना तितलियों की तरह इधर उधर मंडराती रहती, हर दम सजना सवरना, इधर उधर इतराते हुए फिरते रहना। ना कोई चिंता थी ना कोई परवाह, बस उड़ते ही जाना, लोगों की निगाहों में चढ़ते जाना, उनकी काना फूसियां सुनकर उल्लासित होना। चिंता नहीं थी तो चिंतन भी नहीं था। महेश न जाने कब उससे दिल लगा बैठा था। सपना 20वीं सदी की नारी थी, उसके विचारों में खुला आसमान था, उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व था। वो भी पुरुषों की तरह एक इकाई है। प्रेम प्यार एक अलग बात है, लेकिन शादी बच्चों का बंधन उसे नागवार लगता था। कॉलेज के दिन फुर फुर कर उड़ गए। महेश की मासूम याचना उसके मस्तिष्क पर सामान्य सी ठक ठक थी। अपनी अलग पहचान बनाने की लौ मन में निरंतर जलती रहती। वो भावुकता में ना बहकर पूर्ण व्यवसायिक हो गई थी। बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी नौकरी, ऊंचा ओहदा, भरपूर पगार, सारी सुख सुविधाएं सपना के कदमों को चूम रही थीं। वो स्वतंत्र, आर्थिक रूप से मजबूत, अच्छी प्रतिष्ठा वाली, फिर क्यों किसी पुरुष के अधीन रहे? परिवार के बंधनों में क्यों बंधे? पैसे से हर चीज हासिल की जा सकती है। उसमें खुद के अहम की बू कुछ ज्यादा ही आ गई थी। ऑफिस के ही कमल से मेल मिलाप बढ़ा। हर मुद्दे पर उनकी बौद्धिक बहसें होती, राजनीतिक सामाजिक विचार विमर्श होता। हर विषय पर वो दोनों खुलकर विचार रखते, यहां तक कि प्रेम और प्यार की बातों पर भी। समान बौद्धिक स्तर वाले कमल के साथ काफी तार्किक विचार विमर्श के बाद वो दोनों एक साथ रहने लगे, बिना किसी वैवाहिक बंधन के। लिव टुगेदर।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है माया जाल। अब तक आपने सुना सपना जवानी का पड़ाव पार कर लेने के बाद उस दिन बेहद अकेली और बीमार थी जब उसका पुराना साथी महेश उसके सामने आ गया। अपने ऊंचे सपनों के नाते एक समय ऐसा था जब उसने महेश के प्यार की दरकार को किनारे कर दिया था और आज वही उसके इस हालात से दुखी उसके सामने खड़ा था। समान बौद्धिक स्तर वाले कमल के साथ काफी तार्किक विचार विमर्श के बाद वो दोनों एक साथ रहने लगे बिना किसी वैवाहिक बंधन के। अब आगे वो दो स्वतंत्र इकाई थे, एक ही छत के नीचे होकर भी उनकी साझी छत नहीं थी। पहले तो आस पड़ोस के लोग उनके साथ साथ रहने पर कानाफूसियां करते, अजीब अजीब शब्दों से संबोधन करते, लेकिन सपना तो उड़ान पर थी, इन सब बातों से वो कहां डरने वाली थी। हवा में उड़ने वाले परिंदे जमीन पर बिछे जाल से कहां डरते हैं। मोहल्ले के युवक युवतियों को उसके घर के आसपास फटकने की मनाही हो गई थी। उसके घर के चारों तरफ अघोषित एलओसी बन गई थी जिसे पार करना सफेद पोश शरीफों के बस की बात नहीं थी। जब शरीर बोलता है तो विचार चुप रहते हैं। एलओसी के घेरे से सपना कब अकेली पड़ती गई इसका उसे भान तक नहीं हुआ। कमल के साथ वक्त बिताती और जब जहां जाना होता स्वच्छंद जाती। लिव टुगेदर में पति पत्नी के बीच की लाज और लिहाज, सामाजिक दबाव और बच्चे होने का मानसिक दबाव नहीं था, बस मनचाहा व्यवहार, भरपूर मौज और मनमाना जीवन। देखते देखते कमल के साथ अच्छा खासा वक्त बीत गया। साथ रहते कमल के मन में घर बसाने की चाहत खुल रही थी। कमल बहुत भावुक हो उठा था, अलगाव से उसे बेचैनी हो रही थी। वो शादी करके घर बसाने के लिए मिन्नतें करने लगा, लेकिन सपना वो तो अपनी उड़ान पर थी। भाव तो मन में थे ही नहीं, भाव होते तो मन कमजोर पड़ जाता। वो नारी की गुलामी की पक्षधर बिल्कुल नहीं थी। शादी यानी नारी की गुलामी के दौर की शुरुआत। उसने एक झटके से कमल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसका सिद्धांत था खाओ पियो और मौज करो। माँ बाप के बीच के यदा कदा के खिंचन की पैठ उसके मन में इतनी गहरी समाई हुई थी कि पारिवारिक स्नेह का ताना बाना पकड़ने में वो कभी सफल नहीं हो पाई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है माया जाल। अब तक आपने सुना सपना के सपने बड़े थे, वो किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी और इसीलिए उसने महेश का प्यार ठुकरा दिया और फिर कमल के साथ लिव इन में रहने लगी। पर धीरे धीरे बीते वक्त के साथ मनमाना जीवन जीने के कारण वो समाज से कट गई। अब आगे फिर बदलाव के धरातल पर पैर रखकर कभी महसूस करने और समझने की कोशिश ही नहीं की। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी प्राथमिकता रही। उनकी पूर्ति के लिए उसके पास संसाधनों की किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बस पैसा फेंको, सभी सुविधाएं हाजिर। आलीशान बंगला होने के कारण कभी घर की ऊष्मा महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। आधुनिकता के जुनून में उसका स्वाही उस पर सवार था। कमल के बाद सुरेश उसकी जिंदगी में आया। उसके साथ भी उसने काफी वक्त लिव टुगेदर में गुजारा। वो दोनों साथ साथ रहते। मन की स्वतंत्र उड़ान में वो अपने आप को कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं करती। समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे उम्र ढलने लगी, मन के कोण कुछ तीखे होकर अधूरापन महसूस कराने लगे। नारी के अधूरेपन का एहसास उसे महसूस होने लगा था। मन में कचोट सी उठने लगी थी। अब पहल उसने की थी, पर इस बार सुरेश बिफर गया। उसने उसके साथ घर बसाने के प्रस्ताव को साफ साफ ठुकरा दिया। अब सपना को सामाजिक ताने बाने की कमी महसूस होने लगी। समाज में प्रतिष्ठा, पद, पैसा पाकर भी वो सामाजिक कार्यक्रमों में अछूत जैसी स्थिति में रहती। इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर और कुछ ब्लैकबेरी मैसेंजर में सारी दुनिया उसकी थी, लेकिन उसका पड़ोस उसका नहीं था। उसका अभिमान चकनाचूर होकर मिटने के लिए तैयार था, पर कोई भी उसके आगे झुककर उसको एक सुखी संसार देने के लिए तैयार नहीं था। उसके साथ एक संसार बसाने के लिए तैयार नहीं था। सामाजिक अकेलापन, अधूरा नारीत्व सपना को अवसाद ग्रस्त करने लगा था। लोगों का झूठा प्यार जो कभी उसके अहम को तसल्ली देता था, आज उसके मन को चिड़चिड़ा बना रहा था। लिव टुगेदर उसे इंद्रधनुषी माया जाल सा महसूस होने लगा था। उसका सब कुछ लूट कर भी उसका अपना कुछ नहीं था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है माया जाल। अब तक आपने सुना, जब समय था, लोग थे, सच्चे दोस्त थे, तो सपना ने अपनी उम्र और पैसे के घमंड में कभी किसी को अपनी जिंदगी में स्थान नहीं दिया। जिससे जैसा चाहा वैसा रिश्ता बनाया। और अब जब उम्र ढलने लगी और उसके मन का खालीपन उसे कचोटने लगा, तब कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं था। अब आगे सुरेश एक झटके में उसका साथ छोड़ गया। उसकी लाख मिन्नतों के बाद भी वो एक पल भी रुकने को तैयार नहीं हुआ। उसके जज्बातों से उसको कोई लगाव नहीं था। जैसे एक झटके में उसने कमल को छोड़ दिया था, वैसे ही सुरेश ने उसे छोड़ दिया। आलीशान घर, महंगा विदेशी सामान, उसके चारों तरफ अभिमान के साथ सजा हुआ था, लेकिन उसका अभिमान छट रहा था। अकेलापन भयावह हो रहा था। परिवार के आपसी ताने बाने की कमी महसूस होने लगी थी। समाज की नजरों में अपने बौद्धिक विचारों में तो वो नारी की जीत का आदर्श मॉडल बन चुकी थी, पर वास्तविकता में वो अपने अंदर जो रीतापन महसूस कर रही थी, वो उसे सालता। निराशा और अकेलापन उसे दिवा स्वप्नों में खोने लगा था। परिणामतः चिड़चिड़ापन और गुस्सा उस पर हर दम हावी रहने लगा था। ऑफिस में, घर में वो हर दम झुंझलाती चिड़चिड़ाती रहती। कभी उसे लगता उसका भी अपना परिवार हो, पति हो, छोटा सा बच्चा हो जो अपने नाजुक हाथों से उसकी उंगली पकड़ ले। कभी लगता उसका अभिमान अट्ठाहास कर रहा है, उसे चिढ़ा रहा है। वो एकदम से अकेली पड़ गई है। उसके चारों तरफ डरावनी डरावनी सूरतें घेराई हैं। घबराहट से उसकी एकदम से चीख निकल जाती। तंद्रा टूटती तो अकेला घर साए साए करता मिलता। नौकर नौकरानियां अपनी ड्यूटी निभाते, उसे खाना खाने के लिए जोर डालते तो वो उन पर चिल्ला पड़ती। कुछ दिन उसे झेलने के बाद वो भी उसे छोड़कर चले गए। अकेलापन और घिराया। घर के चारों तरफ खिली लक्ष्मण रेखा पार करने का साहस किसी में नहीं था। लिव टुगेदर के फंडे ने समाज से टुगेदरनेस होने ही नहीं दी। वो अवसादग्रस्त होती जा रही थी। मन में घोर निराशा थी तो तन भी बीमार रहने लगा। ना किसी काम में मन लगता, ना कुछ करने खाने पीने की इच्छा होती। हर दम अकेलापन सालता, काटने को दौड़ता रहता। अकेलेपन का एहसास भी उसे भयभीत करता रहता। अब वो क्या

करे, उसके विचार कुंद पड़ते जा रहे थे। नाते रिश्तेदारों की परवाह उसने कभी नहीं की थी, तो अब कौन साथ देता। अवसादग्रस्त होकर उसने नौकरी भी छोड़ दी। अकेली घर में पड़ी रहती, न खाने की सुध, न कोई बनाने वाला, न कोई मनाने वाला। मम्मी पापा के बीच भी मनुहार उसे अब बार बार याद आती। भाइयों और बहनों के बीच की तकरार, लड़ाई झगड़े याद आते। अजीब सी हालत हो गई थी, शरीर सूख कर काटा होता जा रहा था। न दिन का पता रहता, न रात का। दिवाली पर हर दम रोशन रहने वाला उसका बंगला और उसका मन अंधेरे में घिरा रहता। परिवार की अवधारणा को ताड़ कर लिव टुगेदर का माया जाल, असीम सुख अब समझ में आ रहा था। सपना, डॉक्टर को बुला लाता हूं, महेश कह रहा था। वो बेसुध सी पड़ी, उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी।

मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी माया जाल। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
6: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9216-9976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
6: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र नीरो हॉस्पिटल सुधा नीरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

पसीना बिक जाता है, मौत और जीना बिक जाता है। पूछ रहा हूँ तुमसे बोलो।